अगर आप मुस्कुराते हुए अपनी भोर में उठते हैं तो सुहानी तो अपने आप हो जाएगी, क्योंकि आधा काम तो आपका हो चुका। अपना बिस्तर ठीक कीजिए और यूं समझिए कि एक बेहतर दिन की शुरुआत बड़े आराम से हो गई। और हाँ, मुस्कुराना तो बिल्कुल आप भूलिएगा ही नहीं। कभी कभी हो सकता है कि ये प्रेशर जैसा लगे कि भाई ये क्या जबरदस्ती है, लेकिन जब आपको इसकी आदत पड़ जाएगी तब अच्छा लगेगा। बहुत सारे ऐसी टेंशन्स हैं जो दूर हो जाएंगी, और कम से कम 8 घंटे की नींद लेने के बाद हम हंसी खुशी बहुत खुशनुमा तरीके से उस सुबह का वेलकम तो कर ही सकते हैं ना।

सबसे अपना वाला, सबसे प्यारा वाला मी टाइम होता है ये। जो भी हमें अच्छा लगता है, चाय, कॉफी, गर्म पानी या फिर सिर्फ ऐसे ही आपने जो गमले में पौधा लगाया है उसको देखते देखते कब समय बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। पर ये सारी की सारी चीज़ों का ना थोड़ी सा एहसास ज़रूर करिएगा जो हम बता रहे हैं, क्योंकि कई बार जो सुबह की नींद होती है वो इतनी पक्की होती है कि उठने का मन ही नहीं करता, लगता है कि बस थोड़ा सा और, थोड़ा सा और ये सारी की सारी चीज़ें आप मिस कर देंगे। अगर भोर सुहानी बनानी है तो आपको थोड़ा सा टाइम इस भोर को देना होगा, उठ के देखिए तो सही, अच्छा लगेगा आपको। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे भोर सुहानी है ये। हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 5:37 और ठीक 4 सेकंड। अलार्म बजा आपका, अगर आपने उसको बंद कर दिया है तो शायद फिर से बजने वाला है।

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर समय मोहतरम 6:15 समेत पेश खदमत जो प्रोग्राम सुबह है।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। प्रोग्राम च पेश सुबुगाही वलियो प्रोग्राम दस्तलो तिलावत कलाम पाक तो अम के तर्जुमे सहित।
2: औज़ु बिल्लाहि मिनश

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों का हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। इसमें 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल अबुधाबी में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। बैठक में संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशमी और फ्रांस के विदेश कार्य महासचिव मार्टिन ब्रायंस शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तीनों देशों ने स्पष्ट समय सीमा में भागीदारी मजबूत करने की कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार

0: रखा गया है, लेकिन आप बेहतर जानते हैं कि दुनिया भर में बहुत से मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले हजरात हैं, तो रेड क्रेसेंट वजूद में आया। और 1876 में जब रूसो टर्किश वॉर हुआ था, उसके दौरान सल्तनत उस्मानिया, जिसको ऑटोमन एम्पायर भी कहते हैं, उन्हें महसूस हुआ कि सुर्ख क्रॉस का जो निशान है मुसलमानों की मजहबी अलामत समझा जा सकता है, तो इसलिए उन्होंने जो है सुर्ख हलाल का जो है रेड क्रॉस का, रेड क्रेसेंट का जो है निशान इस्तेमाल किया। एग्जैक्टली, हकीकत आपकी बात बिल्कुल वजह है। तो बाद में ये जो निशान है ये आलमी सतह पर तस्लीम किया गया, और आज बहुत से ममालिक में रेड क्रेसेंट इस्तेमाल होता है, जैसे टर्की, सऊदी अरबिया वगैरह वगैरह। खैर, निशान या क्रॉस जो भी हो, क्रेसेंट हो, क्रॉस हो, मकसद सिर्फ एक है कि इंसानियत की खदमत करना बगैर किसी मजहब, नस्ल या सरहद के फर्क के।
1: बिल्कुल, इसमें और एक बात भी है कि इब्तदाई तौर पर अगर देखें तो इस तंजीम की जो बुनियाद है उसमें एक बुनियादी मकसद ये था कि जो तशद्दुद और जंग के मुतासरीन हैं
0: जी,
1: और जंगी कैदियों की देखभाल और उनकी बहाली का जो पहला इब्तदाई जो मकसद इसका था, इस पूरे रेड क्रॉस का था। लेकिन हमने साथ साथ देखा कि ये दिन जो है लोगों की हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत और शिफा की अहमियत को हमें आज भी याद दिलाता है। क्योंकि ये तंजीम जो है इसके ऐसे उसूल हैं जो हमें किसी भी नस्ल या किसी भी आप जगह की बात करें या इस तरह का कोई तासुर इस तंजीम से नहीं मिलता है। तो यूं कहें कि रेड क्रॉस जो है आज पूरी दुनिया में जो काम कर रही हैं वो खालिस इंसानियत के लिए काम।
0: बिल्कुल, जब हमारे रेड क्रॉस के दोस्त कहीं पहुंचते हैं तो वो कभी भी ये सवाल नहीं पूछते कि आपका ताल्लुक किस मजहब से है, आप किस जेंडर के हैं, आपका कलर कौन सा है, आपका फैमिली बैकग्राउंड कौन सा है। बस गर्ज इतना होता है कि जो भी मुस्तहिक हो, जो भी किसी मुश्किल में हो, किसी मसले में पड़ा हुआ हो, उसकी मदद की जाए। खैर, वो तो रजाकाराना तौर पर जो है इसमें शामिल होते हैं, लेकिन हम अगर इस जज्बे के साथ देखें कि रेड क्रॉस को हम इस वक्त पर ज्वाइन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो अलग सवाल है, क्योंकि हमारे स्कूल में अक्सर इस दिन पे चंदा जमा करते थे, आपको भी याद होगा फुरकान। लेकिन बात ऐसी है कि हम हर दिन बहुत काम कर सकते हैं, चाहे कोई भी शख्स क्यों ना हो, आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल में, आपके पड़ोसियों के हाल अहवाल देख सकते हैं, आपके रिश्ते में कोई शख्स अगर ऐसा हो जिसको किसी मदद की जरूरत हो तो हम जाती तौर पर उनकी मदद कर सकते हैं। आप बड़े पैमाने पर छोड़ दें, आप खुद पहले खड़े हो सकते हैं, और आप देखें कि इंसान का किरदार इन्हीं चीजों से बनता भी है और मजबूत भी बनता है। तो आगाज हम अपने घर से ही करें, चैरिटी बिगिंस एट होम, वहां से शुरू करें। दाएं बाएं नजर घुमाएं, देखें कोई मुस्तहिक तो नहीं, कोई ऐसा शख्स तो नहीं जिसकी हम मदद कर सकते हैं। छोटी लेवल पे ही सही, आप किसी का हाथ बढ़ा सकते हैं, आप किसी की मुश्किल कम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही, जब आपके नज़र में इंसानियत हो, इंसाफ पसंदी हो या गैर जानबदारी हो, तो ऐसे काम यकीनन वजूद में आते हैं, और हम सबको चाहिए कि ऐसे कामों में दूसरों का जो है हाथ बटाएं।

0: और देखिए, हालांकि रेड क्रॉस का ताल्लुक किसी मजहब से तो नहीं है, लेकिन ज़मनन मेरे जहन में ये चीज़ ज़रूर आई कि जब आप अल्लाह ताला के नाम गिनवाते हैं ना, 99 नाम है, तो सबसे पहला नाम जो है रहमान और रहीम है, द मोस्ट कम्पैशनेट, द मोस्ट मर्सीफुल। और अल्लाह ताला के ये जितने भी नाम है ना, ये जो औसाफ़ है, उन्होंने ये औसाफ़ इंसानों में ज़रूर डाले हैं। तो इंसान में ये कम्पैशन होना, एक दूसरे की हमदर्दी दिल में रखना, ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात है। और रेड क्रॉस की ये खास चीज कि इस दौर में बिलखसूस जब इंसान चाहता है कि मैं ही सबसे आगे रहूं और सबसे ठीक रहूं, बाकियों का बाद में देखते हैं, सबसे पहले अपना आप। लेकिन रेड क्रॉस की ये बात है कि आप सिर्फ खुद को लेके नहीं चलते, बल्कि आप दूसरों के लिए जीते हैं और दूसरों के लिए ही अपनी जिंदगी वक्फ करते हैं, अपनी जिंदगी सर्व करते हैं। आप खुद को किसी मुश्किल में डालते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि दूसरा जो मुश्किल में है उसको आप निकाल सकें। तो ये अच्छी चीज है। और इस बात की, मुझे लगता है, इस चीज की, इस जज्बे की इस दुनिया में इस वक्त पे सबसे ज्यादा जरूरत है और अवलीन तरजीह है।
1: बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। और इसी से जुड़ा एक एक ये मसला हमारे यहाँ अक्सर हम देखते हैं कि खून का अतिया देना,
0: बिल्कुल,
1: कितनी जो है बिलोस खिदमत है।
0: हकीकत।
1: अभी तक आपने देखे होंगे हमारे यहाँ भी माशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कह सकते हैं कि ला तादाद उन्होंने खून के अतिये जो हैं वो पेश किए होंगे लोगों के लिए, और मकसद सिर्फ ये होता है कि लोगों की जो जिंदगियां हैं वो जिंदगियां बच जाएं। देखिए, किसी ने क्या खूब कहा है कि इंसान को जो पैदा ही किया गया है एक हमदर्दी के जज्बे के तहत, इसको कहते हैं ना, वो दर्द दिल के वास्ते
0: पैदा किया इंसान को, सही।
1: तो ये जो दर्द दिल है, रेड क्रॉस जैसी तहरीकें जो दुनिया में चल रही हैं, तो इनसे मालूम होता है कि एक इंसान को अपने माशरे में किस तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहिए।
0: जी जी, चाहे वो कंट्रीब्यूशन आपका छोटा से छोटा ही क्यों ना हो, बट कंट्रीब्यूशन का एक जज्बा इंसान के अंदर हो तो बहुत बड़ी बात है। आपने खून के अतिये की बात की है, ये बहुत बेहतरीन हमने देखा है कि कश्मीर में बिलखसूस अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, हमने यहाँ से बहुत से ऐसे हजरात देखे हैं जो मर्द भी हैं, खवातीन भी हैं, जो खून का अतिया पेश करते हैं। और जब आप ये बात कर रहे थे, मेरे जहन में ये चीज आ रही थी कि जब वो खून अपना दे रहे होते हैं, उन्हें ये नहीं अंदाजा होता कि ये खून किसके जिस्म में जाएगा, किसके काम आएगा, चाहे वो किसी भी मजहब से क्यों ना ताल्लुक रखता हो, किसी रंग से, किसी भी जेंडर से, किसी भी नस्ल से हो, बस गर्ज ये होता है कि आपके बदन से निकलने वाला खून किसी के काम आ जाए। तो ये एक है तो शायद देखने के लिए छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन, लेकिन ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। और जरूरी नहीं कि हमारी जेब में पहले करोड़ों हो तब जाके हम किसी की मदद कर सके। ये छोटी छोटी खदमात सोसाइटी में बहुत बड़ी चेंज ला सकते हैं।
1: इसी तरह का एक असलूब जो है रेड क्रॉस ने भी अपनाया कि इनके साथ जो काम कर रहे हैं वो कोई पेड मुलाजिम नहीं है।
0: जी,
1: जो काम कर रहे हैं इंसानी हमदर्दी के तहत, और उसमें ये है कि वो रजाकाराना तौर पर काम करते हैं।
0: जी जी,
1: तो इससे हमें मालूम होता है कि रजाकाराना तौर पर काम करना कोई आसान काम नहीं होता,
0: बिल्कुल नहीं।
1: तो हम यूजुअली देखते हैं अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है कि हम चाहे नौकरी कर रहे हों या कोई भी काम कर रहे हों तो उसका मुआवजा जो है हम तलब करते हैं। लेकिन यहाँ जब रेड क्रॉस ने जो कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस किया, तो इसका मकसद, बुनियादी मकसद ये था कि रजाकाराना तौर पर आप काम करें। तो इसीलिए हम देखते हैं कि मुख्तलिफ आफात समावी हों या किसी भी तरह की कोई भी कलेमिटी हो, तो उसमें अगर कोई मदद के लिए आगे आ जाता है तो हमने अक्सर देखा होगा कि रेड क्रॉस जो है वहाँ पहुँचता है। और इसमें जैसे कि फंडिंग की हम बात करते हैं, वो भी रजाकाराना तौर पर, यानी किसी पर कोई आप ये कंपेल नहीं करते हैं कि आपने जो है ये करना है। तो इस तरह से जो हमदर्दी का जो जज्बा है वो इस तंजीम से उभरता है।
0: बिल्कुल सही बात। दिन तो आज रेड क्रॉस का है, लेकिन मकसद और जो हमारा आज की टॉपिक का जो क्रक्स है, हम इतना कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी ही है, इंसानियत ही है, क्योंकि इंसान को इंसानियत के साथ ही पैदा किया गया है। और अगर हमारी ज़िंदगी में ऐसे मकाम आ जाएँ जहाँ हम किसी की मदद कर सकते हैं, तो हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी शायद वही हो सकती है। फुरकान,
1: बिल्कुल सही, आपने दुरुस्त बात कही। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे सामीन जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं और जो इस वक्त सुन भी नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी उन तक हमें ये बात पहुंचानी है जो इस वक्त हमारे सामीन ये बात सुन रहे हैं, ये ट्रांसमिशन सुन रहे हैं, कि हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि इंसानी हमदर्दी के तहत जो है लोगों के काम आए, ताकि हमें किसी भी सूरत हाल का अगर सामना हो तो उस वक्त हम अवेलेबल रहें, हम लोगों हमदर्दी के जज्बे के तहत اپنے آپ کو پیش کریں,
0: اور
1: چاہے وہ کسی بھی صورت میں جو ہے کام کرنا ہو.
0: آخری لمحات ہیں ہمارے.

0: ईके स्टूडियोज समाचार प्रभात के लिए रले का बस जरा सा इंतजार कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसी के सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नव निर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप अंदाज गुप्ता, कोलकाता।
1: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वित्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
3: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन के चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा

0: बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्ताव

0: संयुक्त ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। यह देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमेक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा, टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है, राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा चुनाव में। तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है, पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है, इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का ये बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है, तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, अमर उजाला में है, कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
1: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र

0: जरूरत पर जोर दिया है। मुजवजा फ्रेमवर्क में लड़ाई रोकने और हतमी मुजाकरात के लिए 30 दिन की मुद्दत की बात कही गई है, जबकि ईरान के एटमी प्रोग्राम समेत बुनियादी मामलात पर बाद में बातचीत की जाएगी। सिफारती मंजरनामा अब भी गैर वाजे है, क्योंकि ईरान ने किसी भी तरह की शराइत कबूल करने की तस्दीक नहीं की है और ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने भी इस बारे में कुछ मीडिया इत्तलात को फर्जी करार देकर इन्हें मुस्तरद कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: रूस ने यूक्रेन के साथ लड़ाई में आज से जंग बंदी का ऐलान किया है, जो दूसरी आलमी जंग में साबिका सोवियत यूनियन की फतह के 81 साल पूरे होने के जश्न के दौरान 10 मई तक जारी रहेगी। सदर व्लादिमीर पुतिन के फैसले के तनाजुर में रूस की वजारत दिफा ने यह ऐलान किया है। इससे कबल यूक्रेन के सदर जेलेंस्की ने येरेवन में एक सरबराह मीटिंग में यह कहा था कि हो सकता है कि रूस मॉस्को के रेड स्क्वायर पर मुमकिन ड्रोन हमलों के अंदेशे से 9 मई की यौमे फतह परेड के दौरान फौजी साजो सामान की नुमाइश करने से गुरेज करे। अमेरिका की तिजारती उमूर से मुतालिक एक विफाकी अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए 10% आलमी महसूलात गैर कानूनी हैं। न्यूयॉर्क में बैनुल अक्वामी तिजारत से मुतालिक अदालत के 3 जजों के पैनल ने यह फैसला सुनाया कि सदर ट्रंप ने तिजारत से मुतालिक कानून के तहत सदर को दिए गए कांग्रेस के इख्तियारात से तजावुज करके इकदाम किए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने केरलम, माहे, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, मशरकी राजस्थान, साहिली कर्नाटक और रायलसीमा में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। IPL क्रिकेट में कल रात लखनऊ के ईकाना स्टेडियम में बारिश से मुतासिरा मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने DLS तरीकाकार के तहत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स को जीत के लिए 213 रन का निशाना मिला था और उसने 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन बनाए। आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
2: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी अखबारों ने मगरबी बंगाल असेंबली तहलील होने से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की इस हवाले से सुर्खी है, ममता बनर्जी हुकूमत का 15 साल दौर खत्म, गवर्नर RN रवि ने आईनी अख्तियारात इस्तेमाल किए। बिहार काबीना में तौसी से मुतालिक खबर भी सभी अखबारों में नुमाया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, सम्राट काबीना की तौसी, 32 वज़रा को गवर्नर ने ओहदे का हलफ दिलाया। ऑपरेशन सिंदूर का एक साल मुकम्मल होने की खबर को भी सभी अखबारों ने अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि ऑपरेशन सिंदूर दहशत गर्दी के खिलाफ भारत का सख्त रद्द अमल और आवाम की यकजहती की अलामत।
1: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मगरबी बंगाल के लिए BJP के मरकजी मुशाहिद अमित शाह कोलकाता में नए मुंतखब पार्टी अरकानी असेंबली के साथ मीटिंग करेंगे, ताकि कानून साज पार्टी के लीडर का इंतखाब किया जा सके। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के मामले पर तातुल बरकरार है। VCK, CPI और CPIM के अरकानी असेंबली हिमायत देने या न देने के मामले पर आज मीटिंग करेंगे। वियतनाम के सदर तोलैम ने मुंबई में एक कारोबारी फोरम के दौरान आलमी सप्लाई निजाम में भारत वियतनाम रोल पर जोर दिया है। सऊदी अरब ने अपने फौजी अड्डों और फजाई हदूद तक अमरीकी फौज की रिसाई को मुअत्तल कर दिया है। और IPL क्रिकेट में ईकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने DLS साबते के तहत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
3: یہ چھے آکاشوانی سری نگر سمین محترم 8:55 سپت پیش خدمت چھو سپانسرڈ پروگرام ہم سفر
4: سمین پیش خدمت چھو پروگرام ہم سفر یہ پروگرام چھو تہتاں واتناوان ہم سفر میرج کاؤنسلنگ سیل واقع دارالعلوم روڈ باغ سندربالا ٹچ بل سری نگر برانچ آفس شیخ العالم روڈ کرن نگر سری نگر

0: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। समीन सुबह के 9 बज चुके हैं।
1: पेश की जा रही है आज की सुर्खियां। सुर्खियां सुर्खियां
2: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं होंडा, पियाजो, एक्साइड, इशर, निसान और टीवीएस कंपनियों के बा इख्तियार डीलर कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।

0: चीज़ ये होता है कि अवामी जो ज़िम्मेदारी है, सिविल जो सोसाइटी है, उसकी भी जो जिम्मेदारियां हैं कुछ।
1: जी, हमने रिसेंटली देखा कि टीआरसी से 3 मई को जो है एक मेगा रैली का,
0: पदयात्रा,
1: जी,
0: बिल्कुल।
1: पद यात्रा जो है वो उसका इनेकाद हुआ था। और जब हमने एलजी मनोज सिन्हा साहब का एक स्पीच सुना, उसमें एक वादा लिया गया, और वादा यही था कि ये जो जिम्मेदारी है, इज्तिमाई जिम्मेदारी है, एक शख्स की जिम्मेदारी नहीं है, ये सबको साथ मिलकर काम करना है। और जो आपने बहुत वजह फरमाया कि एक शिकंजा जो है कसा गया है इन पे, और बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए, हमने हर एक तरफ से देखा कि किस तरह से कोशिश की जा रही है कि जो सप्लाई चेन है उसको ब्रेक किया जाए, ये जो फाइनेंशियल बैकबोन है इनकी, इकोनॉमिक बैकबोन है, उसको तोड़ा जाए। और हमने जिस हिसाब से देखा कि पासपोर्ट्स, लाइसेंस और उनका आधार जो ड्रग स्मगलर्स हैं या पेडलर्स हैं उनका जो है वो सीज कर रहे हैं और वो मनसूख कर रहे हैं, इसके अलावा उनकी प्रॉपर्टीज को सीज कर रहे हैं, कुर्क किया जा रहा है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि उनकी जो बैंक अकाउंट्स हैं उन्हें भी फ्रीज किया जा रहा है, यानी कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी भी है फुरकान साहब।
0: बिल्कुल, ये इसलिए है क्योंकि जो ये जो चेन है इसको तोड़ दिया जाए और माशरे में पर जो इसके बुरे असरात पड़ रहे हैं
1: जी
0: वो खत्म हो।
1: जी, सबसे अहम चीज़ ये कि आप अपने बच्चों को जरा आगाह करें कि ये मामला है क्या और हमने इस चीज़ से बचना कैसे है।
0: बिल्कुल सही। और यहाँ समीन के लिए एक प्यारी सी गजल
1: बिल्कुल जरूर।

0: समीन आप ये दिल फरेब गजल समाप्त कर रहे थे, ये आकाशवाणी श्रीनगर है।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
0: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं मीडियम 268.8 मीटर के अलावा FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय इसके अलावा ये नशरियात आप सुन रहे हैं DTH पर और आकाशवाणी की लाइव मोबाइल ऐप पर। सुबह के 9:20 हो रहे हैं, आइए खबरें सुनते हैं, पहले कश्मीरी में उसके फौरन बाद उर्दू में।
2: आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर सुबह 9:20 सपित कशरन खबरन हंद बुलेटिन हेत छस सारा। मध्य प्रदेश कानून साज असम्बली हिंद सरकारी यकीन दहनियन मतलब कमेटी हिंद एक वफदन कोर श्रीनगर असम्बली हिंद स्पीकर अब्दुलरहीम रथर सत मुलाकात। वफदिश क्यादत इस कमेटी हिंद चेयरमैन हरी शंकर खौत करान। अत मौक पे दुशी दरव कानून सजी हिंद कामि हिंद तौर तरीकन तो मुतल कमेटी हजन मखसूस कामन नस्बत अकस नी जानकारी हासिल करने बापत इलमिक बाहमी तबादल पे जोन अब्दुलरहीम रथरन दुन।

आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं एजाजा अख्तर। मध्य प्रदेश कानून साज असेंबली में सरकारी यकीन दहानियों से मुतलक कमेटी के एक वफद ने श्रीनगर में असेंबली के स्पीकर अब्दुलरहीम रातिर के साथ मुलाकात की। वफद की कयादत कमेटी के चेयरमैन हरीशंकर खट्टी कर रहे थे। इस मौके पर तरफेन ने कानून साजी के काम के तौर तरीकों और मुतलक कमेटियों के मखसूस कामों की नस्बत से एक दूसरे से जानकारी हासिल करने के लिए इल्म के बाहमी तबादले पर तवज्जो मरकूज रही। अब्दुलरहीम रातिर ने कानून साजी के इदारों में बैन रियासी तालमेल पर जोर दिया। साइंस और टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्ट के वजीर सतीश शर्मा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर सरकार यूटी में सयाहों की आमद और उनके महफूज कयाम के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है और इस सिलसिले में तमाम मुतलक महकमे आपसी तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। श्रीनगर में कई सैलानियों से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि सयाह हमारे मुअज्ज़ज़ मेहमान हैं जो जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी और

0: हर दिन की तरह जो थीम रहता है आज मोरल वैल्यूज़ पे हम बात करें,
1: जी
0: तो
1: जी
0: अखलाकियात पर जब हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि अक्सर हमने देखा होगा कि आजकल लोग शिकायत करते हैं कि बाहमी रिश्तों में वो जो है दूरी सी पैदा हो गई है इस
1: जी
0: कदर, क्योंकि हम अखलाकी कदरें जो हैं वो घट रही हैं।
1: बिल्कुल हकीकत जी। हम जब भी इखलाकियात की बात करते हैं तो इखलाकियात एक ऐसी बुनियाद है या ऐसी जड़ है, वो हम कह सकते हैं एक दरख्त की जिस तरह से रूट्स रहते हैं वैसे ही एक फाउंडेशन रहती है हर एक चीज़ की इखलाकियात, चाहे वो आप फिर आगे जाके आपकी शख्सियत को तरतीब देती है, हमारे घरों को तरतीब देती है,
0: बिल्कुल सही।
1: जो रिश्ते हैं हमारी उसकी खूबसूरती में एक झलक पाई जाती है इखलाकियात की। ओवरऑल हम अगर बात करें जो भी इंसान करता है उसमें इखलाकियात होते हैं, उसमें मॉरल एजुकेशन आपने
0: बिल्कुल सही।
1: कितनी हासिल की है वो सब कुछ रहता है। मैं ऐसा कह सकते हैं कि एक प्लिंथ का काम करती है
0: देखिए,
1: इखलाकियात।
0: जब हम बात करते हैं ना कि इखलाकियात जो है जिंदगी के हर शोबे में हमें
1: जी
0: नजर आती है।
1: जी
0: अब देखिए, आज के दिन की अगर हम बात करते हैं, आज से एक खास हफ्ता भी मनाया जा रहा है,
1: जी जी जी
0: जैसे आलमी रोड सेफ्टी हफ्ता आज से जो है वो मनाया जा रहा
1: हम
0: है।
1: ऐसा कह सकते हैं कि आज का ये दिन जो है ये पूरा पैकेज लेके आया है।
0: बिल्कुल सही।
1: इखलाकियात की भी आज हम बात कर रहे हैं, जुमतुल मुबारक का भी खास दिन है, रेड क्रॉस का भी दिन है, और आज हम बात कर रहे हैं कैसे मसले की जो हर घर हर शहर और हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, और ये है रोड सेफ्टी। अक्वामे मुत्तहदा की जानिब से मनाया जाने वाला UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक, और आज से उसका आगाज हुआ है, और ये हमें एहसास दिलाता है कि सड़क पर एहतियात सिर्फ कानून नहीं बल्कि इंसानी जानों का तहफ्फुज़ है, यानी सोन सेंस कॉमन सेंस या तस्वानों सैन्य जिम्मेदारी, हमारी जो जिम्मेदारियाँ टूवर्ड सोसाइटी है वो ओवरऑल जितना भी हम देखें आत्मज हर कुंजा मॉरलिटी तो मॉरल एजुकेशन रजीवान।
0: देखिए, हम बात करते हैं अखलाकियात का जो जो शोभा है
1: जी
0: ये सिर्फ किसी एक चीज़ पर महदूद नहीं है। जहाँ हम रिश्तों में अखलाकियात की बात करते हैं, वहाँ हम बात करते हैं कि रोज़मर्रा की जिंदगी की जो हमारे मसाइल हैं
1: जी
0: उन पर भी बात करते हैं। यानी कि अगर हम सड़क पर चल रहे हैं तो वहाँ अखलाक का जो है बड़ा अहम किरदार होता है, कि अखलाक जो है वो वहाँ पर हमें पता चलता है कि सड़क पर चलते हुए भी हमारा जो अखलाक है वो किस कदर जो है पता चलता है इंसान का जब वो सड़क पर चलता है।
1: हम जब इखलाकियात की बात करते हैं फुरकान साहब, हमारे जहन में ये चीज जरूर आती है कि कमन कमन चीजों पर ऐसे ख्याल था उन सड़की पे, और ये इस ट्रैफिक कच्चे करा अच्छे यूत अच्छा दिमाग जहन के अच्छे सीट बेल्ट लागुन अच्छे हेलमेट थवन अच्छे स्पीड हूँ ख्याल था उन, ये सारी चीजें तो है, ये हमारे रूल्स भी है, आपने ट्रैफिक कवानीन का जो है मिन उन पर अमल तो करना है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे कभी बारिश हो गई सड़की पर चु रूल आसान और कह शख्स बाई क्या गिरती चाहती है पकना साइड पकान बाई स्टैंडर्ड होता है या चल रहा होता है उनके कपड़े खराब हो जाते हैं, ये अखलाक किस दौरस मजान या सड़की पर वो कंस लोग मौत क्या कंस मदद जरूरत तम सदद कर रुकवन लिफ्ट तवान लिफ्ट त्यादा कॉन्सेप्ट और उससे भी बहुत मदद हो जाती थी। खैर वो चीजें कम हो रही है वजूहत तो वो शख्स ही बेहतर जाता है, लेकिन ये ओवरऑल सारी लॉकट लॉकट चीज सारी अखलाकियात मजान चूंकि वह आज अस सो दो मजद मे गो फरमो आगाजस मज तर्ज कोर कि आज ते दो तमाम चीज यह पूरा अख पैकेज रेड क्रॉस तुम्हें रोड सेफ्टी हूं वीक तुम्हें चुना सलाह करो कह हालांकि अस फुरकान सबन कत रात ही कर्म खास अख शख्स असिस्टेंट प्रोफेसर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर पन फरज अंजाम दिवान डॉक्टर नजीर अहमद जरगर सब तम से फुरकान सबन कत कर दुश्मनी मौजूद पे
0: इन सत में कत कर क्योंकि अखलाकियात पे बड़ कंट्रीब्यूशन कर मैं कह तो मे प्रे रिश्तन बाहमी दूरत दूर तो तम पत् करो रोड सेफ्टी हंद अखलाकियात मुतलिक तस करो पे सामीन खतर यह पेश ताकि तम तुरन अमन कथन हम थान तम तान। डॉक्टर नजीर अहमद जरगर साहब, पैम सो प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं।
2: शुक्रिया
0: डॉक्टर साहब, आज अखलाकियात पर बात कर रहे हैं तो आपसे मेरा एक सवाल है कि अक्सर हम सुनते हैं कि अखलाकी कदरों में जो गिरावट आई है इससे बाहमी रिश्तों में दूरियां पैदा हुई हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि हमारा किरदार आजकल के रिश्तों को निभाने के लिए कैसा होना चाहिए।
2: रिश्तों को मुतवाजन और पायदार रखने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है, एक ये कि तवक्कोआत कम रखी जाए और दूसरा ये कि ये सोच लिया जाए कि एक तरफा जो है किरदार और अखलाक और मुरव्वत का मामला हमेशा ताल्लुकात को बेहतर। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे अखलाक और میری اچھائی کوئی دنیا کی نظر میں جس طرح کا لین دین وہ چیز نہیں ہے. یک طرفہ اچھائی کرے آدمی, اسی کو اصل میں اخلاق عظیمہ کہتے ہیں. ورنہ جو مجھ سے اچھا

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तस्वीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सूफी सदा

0: पयामी सुप।
1: ये आकाशवाणी श्रीनगर है मीडियम 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर, जी सभी आप समाप्त कर रहे हैं लाइव मॉर्निंग रेडियो शो पयाम सुख की नशरियात। वक्त हो रहा है इंटरैक्टिव प्रोग्राम ऑफ यूथ में। हमारी आज की मेहमान स्टूडियो में आ चुकी है डॉक्टर नीलोफर जी, जो एक सोशल एक्टिविस्ट है। इनके साथ हम कलाम हो रही है प्रोग्राम की होस्ट नाजिमा।

फिर एक मरतबा इस्तकबाल, आप सुन रहे हैं पयाम सुबह, मैं हूं नाजिमा और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर नीलोफर अली साहिबा। सोशल एक्टिविस्ट हैं और सोसाइटी को बहुत करीब से देख रही हैं, बहुत से मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश कर रही हैं और आज हम बात कर रहे हैं मॉरालिटी की और रिश्तों में इस वक्त पे जो थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि कड़वाहट आ चुकी है या फिर दूरियाँ आ चुकी हैं, उसको किस तरह से हम बेहतर बना सकते हैं। इस कथ करान खानदरिच इस कथ करान पानवे खूबसूरत रिश्त।

0: सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन TARA हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने TARA हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग को बधाई दी है। उन्होंने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण विकास बताया। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात दो

0: की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्य प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तोलाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। उन्होंने बताया कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार को लेकर भी बातचीत हुई। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार 15 मार्च के बाद से देश में 57 लोगों की मौत खसरे से और 279 लोगों की मौत खसरा जैसे संक्रमण से हुई है। महानिदेशालय ने बताया कि परीक्षण किट की कमी से संकट और गहरा गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 427 अंक गिरकर 77,418 पर, जबकि निफ्टी 121 अंक की गिरावट के साथ 24,205 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi will visit Somnath Temple in Gujarat on the 11th of May to mark 75 years since the restored temple was inaugurated by India's first President Rajendra Prasad in 1951. The Prime Minister today wrote an article in a national daily paper and shared this information. In his article, he said it was a privilege for him to attend two important events related to Somnath within a few months. Earlier this year, Prime Minister Modi attended the Somnath Swabhiman Parv, which marked 1,000 years since the first attack on the temple. The Prime Minister called Somnath a symbol of India's civilizational strength and resilience. He said the temple's journey represents a movement from destruction to creation and shows how faith and culture can survive even after repeated attacks and hardships. The Prime Minister remembered the role of the Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel, in rebuilding the temple after independence. Mr. Modi said Patel had strongly believed that the reconstruction of Somnath was a national duty. The West Bengal BJP Legislature Party will meet in Kolkata this afternoon to elect its leader. The party's central observer and Union Home Minister Amit Shah will be present in the meeting. The BJP registered a historic victory in the just-held assembly elections, ending the TMC's 15-year rule in the state. The swearing-in ceremony of West Bengal's first BJP government will be held at Brigade Parade Ground in Kolkata tomorrow. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, BJP President Nitin Naveen and chief ministers of all NDA-ruled states are expected to attend the swearing-in ceremony. Defence Research and Development Organisation DRDO and the Indian Air Force have successfully conducted the maiden flight trial of the Tactical Advanced Range Augmentation Tara weapon off the coast of Odisha yesterday. In a statement, the Defence Ministry said the modular range extension kit Tara is the country's first indigenous glide weapon system that converts unguided warheads into precision-guided weapons. Defence Minister Rajnath Singh has congratulated DRDO, IAF, DCPP and the industry for the maiden flight trial. The Enforcement Directorate has registered a case against Games Craft Technology.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। श्री शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तारा हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग जगत को बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम

की स्थिति पर चर्चा की। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रिम अल हाशमी के साथ अबू धाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्तीय प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। श्री मिश्री ने भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अबुधाबी में हुई त्रिपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि तीनों देशों ने परस्पर साझेदारी मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात दो दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तो लाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार, निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। महानिदेशालय ने बताया है कि परीक्षण किट की कमी से यह संकट और गहरा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियाँ बांटो।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल
3: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: अरे वह फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
2: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
3: जी विमलेश जी, तो साथियों, समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर
2: जी,
3: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
2: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
3: श्रोताओं, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं
2: जी,
3: यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओं, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
2: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे

0: से गहरा समुद्र स्थल कहाँ है? जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
1: जी श्रोताओ, मरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है, जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
0: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
1: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
0: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
1: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा
0: जी
1: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा।
0: जी
1: अच्छा, चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की, सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
0: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहां बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है, नाम है माउना केया।
1: जी श्रोताओ, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है,
0: जी
1: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये यानी माउना केया।
0: जी
1: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है।
0: जी
1: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4,000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
0: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया, आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
1: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें।
0: जी
1: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। और मालूम है, इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है।
0: जी समुद्र की गहराई के 3 भाग हैं, सतही क्षेत्र, ये वो भाग हैं जहां अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहां सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है।
1: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहाँ समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहाँ पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं।
0: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, यहाँ पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है। सामान्य स्थिति में हम वहाँ कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है?
1: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओ, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
1: 8800-440-5559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@cieet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
1: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है, रविन्द्रनाथ टैगोर।
0: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविन्द्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
1: विश्व शिक्षक रविन्द्रनाथ टैगोर।

रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

0: ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर्चित्त पुण्यतीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसे भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ युष्कल भंगा विंध हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
2: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश, गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
0: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांको की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हों,

पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है, कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते।

0: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया, मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
1: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखीं।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजादपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों, सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेहयुक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905 अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: आमार सोनार बांगला आमी तोमाए भालोबाशी, चिरोदिन तोमार आकाश तोमार बाताश आमार प्राणे बाजाए बाशी।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूं, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
3: আমাদের শান্তিনিকেতন আমাদের
2: শান্তি। সন 1901 में শান্তিনিকেতন आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
1: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह

0: वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
1: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
0: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
2: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
1: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
0: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
2: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं एक कवि हूं, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा।
0: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
1: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं, गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे

अभागे, खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले, रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले, तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले, तड़त ज्योति पीड़ा की बलने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले।

0: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग, उमंग, उमंग, उमंग,
2: उमंग। जी दोस्तों, आप समाप्त कर रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम NCERT उमंग।
3: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

जी समीन, आप सुन रहे थे नातिया कवाली, ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियो भी 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। ठीक 1:50 हो रहे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू और अंग्रेजी खबरों का बुलेटिन अब से थोड़ी देर के बाद रिले होगा।

0: आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं हबीब रहमान। आज कोलकाता में मगरबी बंगाल की बीजेपी कानून साज पार्टी अपना रहनुमा मुंतखब करने के लिए मीटिंग मुनाकिद करेगी। डीआरडीओ और भारतीय फजाइया ने मुल्की में तैयार किए गए तारा ग्लाइड हथियार की पहली आजमाइशी परवाज कामयाबी के साथ मुकम्मल की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत के इस्तेहकाम, इत्तेहाद और तहजीबी ताकत की एक लाजवाल अलामत करार दिया है। बैनुल अक्वामी तजारत की अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया की तरफ से भारत से लेकर दीगर मुल्कों तक आयद किए गए 10% महसूल को गैर कानूनी करार दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और यूरोपीय यूनियन इस बात की यकीन दहानी में मुत्तहिद हैं कि ईरान कभी न्यूक्लियाई हथियारों का हामिल ना हो। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल बीजेपी कानून साज पार्टी आज सहपहर अपना लीडर मुंतखब करने के लिए कोलकाता में मीटिंग करेगी। पार्टी के मरकजी मुशाहिद और मरकजी वजीर दाखला अमित शाह इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। बीजेपी ने रियासत के हालिया असेंबली इंतखाबात में तारीखी जीत दर्ज की है, जिसके बाद रियासत में टीएमसी का 15 साल दौर हुकूमत खत्म हो गया। मगरबी बंगाल की पहली बीजेपी हुकूमत की हलफ बरदारी तकरीब कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनाकिद होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी सदर नितिन नबीन और बीजेपी के जेर इकतदार तमाम रियासतों के उजराए आला हलफ बरदारी की इस तकरीब में शिरकत करेंगे। दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम डीआरडीओ और भारतीय फजाइया ने मजीद फासले तक मार करने वाले छोटे हथियार तारा की पहली आदमाइशी परवाज कामयाबी के साथ मुकम्मल की। यह तजर्बा कल उड़ीसा के साहिल से कुछ दूर किया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस पहली आदमाइशी परवाज पर डीआरडीओ, भारतीय फजाइया, डीसीपीपी और सनत को मुबारकबाद दी है। उन्होंने इस कामयाबी को मुल्क ही में तैयार किए गए दिफाई हथियारों की तरक्की के मैदान में एक अहम पेशरफ्त करार दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वजारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि मार करने की दूरी में इजाफे वाला यह हथियार तारा मुल्क में ही तैयार किया गया ऐसा पहला ग्लाइड हथियार निजाम है, जो बगैर रहनुमाई वाले हथियार को बारीक निशाने वाले हथियार में बदल देता है। वजारत ने बताया कि तारा को हैदराबाद के तहकीकी मरकज इमारत प्लस और डीआरडीओ की दीगर लेबोरेटरीज ने मिलकर तैयार किया है। इसका मकसद कम कीमत वाले हथियार की बिल्कुल सही निशाने पर पहुंचकर दुश्मन को हलाक करने की सलाहियत में इजाफा करना है। यह हथियार तरक्की और इसके बड़े पैमाने पर तैयारी से मुतालिक शराकत दारों और दीगर भारतीय सनतों ने तैयार किया है और इसे बड़ी तादाद में तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। न्यूज डेस्क से सौम्य शरण की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी 11 मई को गुजरात में सोमनाथ मंदिर जाएंगे। 1951 में मंदिर का अहया किए जाने के बाद भारत के पहले सदर जमहूरिया राजेंद्र प्रसाद के हाथों इफ्तिताह किए जाने के बाद से 75 साल पूरे होने के मौके पर जनाब मोदी वहां जाएंगे। वजीर आजम ने आज एक कौमी रोजनामे में एक मजमून तहरीर किया है और इसमें ये जानकारी दी गई है। अपने मजमून में जनाब मोदी ने कहा है कि उन्हें चंद माह के

0: इधर ही सोमनाथ से वाबस्ता दो अहम तकरीबात में शिरकत करने का शर्फ हासिल हो रहा है। इससे कबल इस साल के शुरू में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शिरकत की थी, जिसका अहतमाम मंदिर पर पहले हमले को 1000 पूरे होने के सिलसिले में किया गया था। वजीर आजम ने सोमनाथ को भारत की तहजीबी कुव्वत और मजबूती की अलामत करार दिया। जनाब मोदी ने कहा कि मंदिर के सफर से तबाही से लेकर तखलीक तक की एक तहरीक की अक्कासी होती है और इससे यह जाहिर होता है कि बार बार के हमलों और मुश्किलात के बाद भी किस तरह अकीदा और सकाफत बरकरार रह सकते हैं। वजीर आजम ने आज़ादी के बाद मंदिर की तामीर नौ में भारत के मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल के रोल को याद किया। जनाब मोदी ने कहा कि सरदार पटेल का ये मानना था कि सोमनाथ की तामीर नौ एक कौमी फर्ज है। वजीर आजम ने सोमनाथ की दास्तान को सरकार के विकास भी विरासत भी नज़रिए के साथ मुंसलिक किया, जिसमें विरासत को महफूज रखते हुए तरक्की पर तवज्जो मरकूज की जाती है। जनाब मोदी ने कहा कि मंदिर की तारीख से वाबस्ता दिलेरी और कुर्बानी के एजाज के सिलसिले में अगले 1000 दिन के लिए सोमनाथ में खुसूसी पूजा अर्चना की जाएगी। जनाब मोदी ने हमवतनों पर भी जोर दिया कि वो सोमनाथ जाएं और बकौल उनके मुल्क की तहजीब के अटूट जज्बे को महसूस करें। आकाशवाणी ने आज अपने क्याम को 90 साल मुकम्मल होने के मौके पर कौमी राजधानी में एक मैराथन का अहतमाम किया। तकरीबन 3.5 किलोमीटर की यह मैराथन आकाशवाणी भवन से शुरू हुई और कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक की इमारत के रास्ते से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर इख्तिताम पजीर हुई। इसमें आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के मुलाजमीन के साथ साथ उनके अरकान खानदान ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन भी मौजूद थे।
1: इसी तरह की मैराथन और वॉकाथॉन का इनेकाद आकाशवाणी के मुल्कगीर नेटवर्क ने भी किया था, जिसके तहत 90 साल पूरे होने के मौके पर मुनक़िदा इन तकरीबात में अवामी सरगर्मी और लोगों तक पहुंचने को यकीनी बनाया गया है। इस मौके पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि इस मैराथन से लोगों तक चुस्त दुरुस्त रहने की तहरीक का पैगाम पहुँचेगा।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशंस हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था कि आकाशवाणी से जैसे आपका लगाव पिछले 9 दशकों से बना हुआ है, आने वाले समय में भी वैसे ही बना रहे।
1: आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम इस महीने मुल्क भर में 232 आकाशवाणी मरकजों पर मुनाकिद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तकरीबात मुल्क की खिदमत में अवामी नशरियात के तौर पर आकाशवाणी के तआवुन के हिस्से के तौर पर मनाई जा रही है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक इस पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा और ये उत्सव है। हम देश की सेवा में जो आकाशवाणी का योगदान रहा है, उस योगदान को सेलिब्रेट कर रहे हैं।
1: नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीका की तिजारती उमूर से मुतालिक एक वफाकी अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए 10% आलमी महसूलात गैर कानूनी हैं। न्यूयॉर्क में बैनुल अक्वामी तजारत से मुतालिक अदालत के 3 जजों के पैनल ने यह फैसला सुनाया कि सदर ट्रंप ने तजारत से मुतालिक कानून के तहत सदर को दिए गए कांग्रेस के इख्तियारात से तजावज करके इकदामात किए हैं। छोटे कारोबारी घरानों की जानिब से अदालत ने इन महसूलात को चैलेंज किए जाने के बाद ये फैसला सामने आया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और यूरोपीय यूनियन इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुत्तहिद हैं कि ईरान कभी भी न्यूक्लियाई हथियार हासिल न कर पाए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वोन देर लेन के साथ टेलीफोन पर उनकी बातचीत बहुत अच्छी रही और उन्होंने मगरबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सदर ट्रंप ने कहा कि तरफैन के दरमियान इस बात पर इत्तफाक है कि एक ऐसे निज़ाम को लाखों लोगों की जानों को खतरे में डालने वाला हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती जो अपने ही लोगों की जान लेता हो। IPL क्रिकेट में आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात लखनऊ के एकाना स्टेडियम में बारिश से मुतासर मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। रायल

जी दोस्तों, आए अब सुनते हैं आखिर में फिल्म प्रिंस से ये प्यारा सा गीत। सुरूंगी देवी लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जय की।

जी दोस्तों, आए अब सुनते हैं आखिर में फिल्म प्रिंस से ये प्यारा सा गीत, सुरंगी देवी लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

जी दोस्तों, आप समाप्त कर रहे थे चंद फिल्मी नक में। दिन के 2:30 बज चुके हैं, हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। इच्छा आकाशवाणी श्रीनगर मीडिया व्यू जहत 8.8 मीटर तो FM 3.5 MHz पर समीन वंश पे छकर तुरो फनकार बशीर अहमद चर तो हम नवाई मनीष बूझ तु कलाम शाह कलंदर।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

ये आकाशवाणी श्रीनगर है। मीडियम 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर सफर के 3 बज चुके हैं। लीजिए आप पेश है फौजी भाई उनके लिए फिल्म संगीत का प्रोग्राम।

जय हिंद। फौजीबाई फिल्म संगीत का प्रोग्राम लेके मैं हूं आपके रेडियो सखी सूफी फातिमा आपके खिदमत में हाजिर। प्रोग्राम का पहला नजराना आपकी नजर फिल्म प्यासा सावन से प्यारा संगीत सुरेश वाडीकर और लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाजों में संतोष आनंद के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का मधुर संगीत।

जी दोस्तों, अगला नगमा हमने चुना है फिल्म मिशन कश्मीर से उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाजें, समीर के बोल, शंकर एहसान लॉय का मधुर संगीत।

जी दोस्तों, आपने सही पहचाना। आप समाप्त कर रहे हैं फिल्म मोहब्बतें से प्यारा सा गीत उदित नारायण, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में अनुरक्षी के बोल, जितिन ललित का संगीत।

0: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
2: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
1: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
2: पर बेटा हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
1: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
2: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
1: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
2: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
1: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल कर।

0: करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
1: शुक्र है अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
0: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
2: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

जी दोस्तों, वक्फे के बाद आपका स्वागत करते हैं फिल्म संगीत के प्रोग्राम में घर घर की आवाज, ऑल इंडिया रेडियो की आवाज, मीडिया भी 268.1 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। फिल्म संगीत का प्रोग्राम आप डीडीएस सर्विस और अपने स्मार्ट मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। अगला गीत हमने चुना है फिल्म चमत्कार से प्यारा सा गीत कुमार सानू और अलगया याग्निक की आवाजों में।

जी, दूसरे प्रोग्राम का आखिरी नजराना आपकी नजर फिल्म अंदाज से प्यारा सा गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सपहर के 3:50 हुए हैं। खबरनामा लेकर मैं सईद मुशाहिद हुसैन। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। मगरबी बंगाल में पहली बीजेपी हुकूमत की हलफबरदारी होगी कल। अनंतनाग में कल होगा मंशियात मुखालिफ पद यात्रा का इनेकाद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की शिरकत मुतवक्के। श्रीनगर में राबता मुहिम के तहत कई आवामी वफूद ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला से की मुलाकात। और रेड क्रॉस का आलमी दिन आज। अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर दाखला अमित शाह मगरबी बंगाल पहुंच गए हैं, जहां वो बीजेपी कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब करने के लिए मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। बीजेपी ने रियासत के हालिया असेंबली इंतखाबात में तारीखी जीत दर्ज की है, जिसके बाद रियासत में टीएमसी का 15 साल दौर हुकूमत खत्म हो गया है। मगरबी बंगाल की पहली बीजेपी हुकूमत की हलफबरदारी कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी, जिसमें वजीर अजम नरेंद्र मोदी भी

0: शिरकत करेंगे। अनंतनाग में कल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत एक पदयात्रा का अहतमाम हो रहा है, जिसके लिए जामिया इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। हमारे नुमाइंदे तसदुक रशीद के मुताबिक पदयात्रा में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की शिरकत भी मुतवक्के है। जिला इंतजामिया ने पदयात्रा के अहसन इनेकाद के लिए आवाम से ताउन तलब किया है, जबकि इस हवाले से गाड़ियों की नकल हमल के लिए खुद से रूट प्लान भी तरतीब दिया गया है। पदयात्रा में स्कूली तलबा के साथ साथ रजाकारों और समाजी अंजुमनों की शिरकत भी मुतवक्के है। जम्मू कश्मीर को मंशियात की बिद्दत से पाक करने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शदो मद से जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: नौजवानों को इस बुरी आदत से दूर रखने के लिए दरकार इकदामात के बारे में एक अदाकार नौनैन अख्तर हुसैनी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: आने वाला मुस्तकबल तब जाके आपके बेटे का वैसा रोशनास होगा जैसे आपके दिल की चाहत होगी। उसके लिए इम्पोर्टेंट है आप शाम को आके घर में चेक करें और अपने बच्चों को रूहानियत के साथ वापिस तक करें, और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट बात बनती है स्कूल्स में चेक करें, असेंबलियों में से क्लासरूम में से एक लिस्ट बनाएं। अगर उनको लग रहा है सेहत के लिहाज से बच्चा कमजोर होता जा रहा है, वो यूटिलाइज करें अपने एक्सपीरियंस, और हम जम्मू कश्मीर पुलिस के जबरदस्त शुक्रगुजार है और बहुत कुछ करना बाकी है क्योंकि ये कौम के बच्चे हमारे खुद के बच्चे हैं।
0: सेहत व तबी तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने कहा कि उनकी सरकार जम्मू कश्मीर को मंशियात के कारोबार और इस्तेमाल से नजात दिलाने के लिए मुनासिब इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस लत के आदि अफराद की बाजाबदकारी पर खुसी तवज्जो दी जा रही है। अपने ख्याल का इजहार करते हुए उन्होंने कहा,
3: जहाँ तक नशा मुक्त की बात हो या ड्रग एडिक्शन पे जो काम करना हो सरकार तो कर रही है, उसमें LG साहब भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, ऑनरेबल LG साहब, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो होम डिपार्टमेंट को इसको रोकना है। हमारा काम है ट्रीटमेंट करना, हमारा काम है काउंसलिंग करना, जो हमारे सेंटर्स चल रहे हैं हॉस्पिटल्स में वहाँ पे ट्रीट करना, वहाँ पे काउंसलिंग करना, वहाँ पे उनको रिहैबिलिटेट करना, उनको इस वबा से बचाना, उनको वापस लाना है ताकि वो आगे बढ़ें अपनी लाइफ में, इस मुसीबत से वो दूर हो जाए।
0: नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत पुलिस ने कुलगाम में महकमे माल के हुकाम के ताउन से कुंड इलाके में 5 कनाल के रकबे पर फैली काश्तराई को बाजियाब किया है। ये जमीन जिसकी मालियत 60 लाख रुपए बताई जाती है, NDPS एक्ट के तहत मुलजिम करार दिए गए 2 ड्रग स्मगलरों के कब्जे में थी। मंशियात के कारोबार के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने बारामूला जिले के फेरोजपुर टंगमर्ग इलाके में बदनामी जमाना ड्रग स्मगलर इम्तियाज अहमद मीर की एक दुकान सर्वे मोहर कर दी। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आउटसोर्स किया गया नॉर्थविंड कैफे सील किया। बताया जाता है कि ये कैफे NDPS के एक मामले में मुलजिम यासीन खांडे के नाम पर लीज किया गया था। पुलिस ने अनंतनाग के खुड़पुरा नौगांव में अब्दुलरहमान राथर नामी एक शख्स की जमीन पर काश्त की गई बंग की फसल को तबाह कर दिया। जम्मू सूबे के कठुआ जिले में रंजा नामी ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया गया। उधमपुर में पुलिस ने मोहम्मद फारूक, सवायम शर्मा, विशाल जमवाल, वंश जमवाल और एक खातून ड्रग स्मगलर की गिरफ्तारी अमल में लाई। रियासी जिले में पुलिस ने कटरा में एक कार्रवाई के दौरान विकी कुमार नामी एक शख्स से नशीली अद्वियात के 300 कैप्सूल जब्त किए। रियासी पुलिस ने पुष्पिंदर सिंह नामी एक और ड्रग स्मगलर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। सांबा जिले के बड़ी ब्रह्मणा इलाके में मोनू कुमार नामी ड्रग स्मगलर को हिरासत में लिया गया। जिले के विजयपुर इलाके में मंशियात मुखालिफ बेदारी प्रोग्राम मुनक़द किए गए। राजौरी पुलिस के अहतमाम से जिले के कई मकाम पर बेदारी प्रोग्राम मुनक़द हुए। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर काबीना की एक मीटिंग अब से कुछ देर बाद सुबह 4 बजे श्रीनगर में मुनक्द हो रही है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में मुनक्द होने वाली इस मीटिंग में

आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर थी आज दा पहाड़ी प्रोग्राम किनके मैं तुस्ता मेजबान जहांगीर अहमद खान अपने तमाम सुनने वालों को प्यार खलूस तताजीम नाल अस्सलामु अलैकुम अर्ज करदा ता अज दी इस महफिल भी तुसा सारिया दा खैर मकदम करदा। सामीन अज जुमातुल मुबारक है। हसब दस्तूर ते हसब रिवायत अपनी अज दी महफिल दी शुरुआत नाते बहुजूर सरवर कौनैन सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल तनात ख्वाइन सैयद मुर्तजा बुखारी।

0: AIR और DTH होता भी सुन सकते हो। सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर बिच इस वेले जम्मू व कश्मीर काबीना दी एक मीटिंग जारी है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला दी सदारत बिच हो रही इस मीटिंग बिच कई अहम इंतजामी और तरक्याती उमूर उतै गलबात कीती जुर रही है। इस मीटिंग बिच काबीना वजरा दे अलावा इंतजामिया दे सीनियर ओहदेदार भी शिरकत कर रहे हैं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला सुन अपनी अवामी राबता मुहिम दे तहत अज श्रीनगर बिच मुख्तलिफ लोकां दे वफूद और नुमाइंदे दे नाल मुलाकात कीती और उन्हां नाल जम्मू व कश्मीर बिच लोकां दी बहबूद थे मुतलिक सरकार दी मुख्तलिफ तरक्याती सरगर्मियां दे बारे बिच गलबात कीती। मुलाकात करन वालियां बिच हलका इंतखाब जड़ीबल और बानहाल दे मेंबरान असम्बली तनवीर सादिक ते सजाद शाहीन दे अलावा साबिक वजीर जावेद मुस्तफा मीर, मुफ्ती आजम जम्मू व कश्मीर, मुफ्ती नासिर उल इस्लाम और माहिर तालीम जी अनवार शामिल हैं। आकाशवाणी सुन अज अपने कयाम दे 90 साल मुकम्मल होने दे मौके उत्ते कौमी राजधानी दिल्ली बिच एक मैराथन दा इहतमाम कीता जिस बिच आकाशवाणी दूरदर्शन ते प्रसार भारती दे मुलाजमा सुन हिस्सा कीता। इस मौके उत्ते प्रसार भारती दे सीईओ गौरव द्विवेदी सुन आखे जे मैराथन थी लोकां तोणी चुस्त रहने दी तहरीक दा सुनिया पहुंच सी।
1: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशंस हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था कि आकाशवाणी से जैसे आपका लगाव पिछले 9 दशकों से बना हुआ है, आने वाले समय में भी वैसे ही बना रहे।
0: आकाशवाणी दे डायरेक्टर जनरल राजू कुमार जैन सुन आखे जे इस तरह दे प्रोग्राम पूरे मुल्क बिच आकाशवाणी दे 232 मरकजां उते मुनक्कद कीते जुलसन।
2: देवकासो होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक सुदूर प्रदेश तक इस पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
3: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा और ये उत्सव है। हम देश की सेवा में जो आकाशवाणी का योगदान रहा है उस योगदान को सेलिब्रेट कर रहे हैं।
0: अज रेड क्रॉस दा आलमी त्याड़ा है। ए त्याड़ा इंसानियत, गैर जानबदारी, रजाकाराना खिदमात, अवाकियत और आमदर्दी जैसे अकदार की पासदारी को यकीनी बनाने वास्ते मनाया जुलता है। रेड क्रॉस दे आलमी त्याड़े दे सिलसिले बिच अज वादी बिच भी कई तकरीबा मनाईया गईया। इस साल इस त्याड़े दा मौजू कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाय रखे गया है। साहितिया अकैडमी दी तरफों गौरमेंट डिग्री कॉलेज पांपोर बिच कश्मीर दी मारूफ शायरा हबा खातून थी मुतलिक एक सेमिनार मुनक्कद कीते गया। सेमिनार बिच जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड दी चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शां अंद्राबी सुन मेहमान खसूसी दी हैसियत नाल शिरकत कीती। अपने ख्यालां दा इजहार करदे होए उन्हां सुन आखे जे हबा खातून सुन अपनी शायरी बिच सिर्फ अपने दिल दी गल नहीं कीती बल्कि उन्हां सुन वादी दी कालसीरियां दी कुवत दा भी वाज़ह ऐलान कीता।
4: हबा खातून की हयात जिंदगी पे आज सब बात कर रहे हैं। ये बड़ी बात है कि हम अपने जो हमारे कश्मीरी जुबान के अदीब हैं उनको याद करें और जो उन्होंने रोल अदा किया है, खासकर निस्वानियत जो आवाज थी हबा खातून की, वो आज नए जनरेशन को बोली जाए, बताई जाए, उनके सिलेबस में शामिल हो ताकि हम ये लेगेसी आगे बढ़ाएं। तभी तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को अपने जो रूट्स हैं, जैसे खासकर हमारी हबा खातून, लला आरिफ, ये हमारे ऐसे लीजेंड हैं, अगर हमारी आज की जनरेशन इससे नावाकिफ रही तो बहुत नुकसान होगा।
0: अपने ख्यालों का इजहार करते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर गजाला अजहर सुन आखिया,
5: हमारा ये मकसद था कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनको पता चल जाए कि ये पांपोर की सरजमीन जो है ये कोई आम सरजमीन नहीं है। यहाँ पर सबसे जो कदावर शायरा पैदा हुई है हबा खातून, तो वो इसी सरजमीन की पैदावार। और मैं चाहूंगी कि मैं अपने सरकारी जो हमारे यहाँ पर डॉक्टर डायरेक्टर अंद्राबी मैम आई है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, इंतजार करूंगी कि इस कॉलेज को सी हबा खातून सीट बनाए ताकि यहाँ पर लोग दूर दूर से आए और हबा खातून पर रिसर्च।
0: इस दिन एक खबरनामा मुक गया। आकाशवाणी दे श्रीनगर स्टेशन थी अगला खबरनामा 5:50 तक गोजरी जबान भी नशर कीता गया सी। देव इजाजत, अल्लाह बेली।
6: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम 268.8 और FM 103.5 MHz पर। ठीक है, सफर के 4:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं पंजाबी प्रोग्राम।

मैं तुहाड़ी मेज़बान रमेश कौर हाजिर हाँ। साथियों सारियों नूं मेरा प्यार भरे आदाब ते सति श्री अकाल। साथियों आओ प्रोग्राम की शुरुआत करते हाँ एक प्यारे जिहे गीत दे नाल।

अभी आप पंजाबी प्रोग्राम सुन रहे थे, ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर 5 बज चुके हैं। पेशे खिदमत है आज का गोजरी प्रोग्राम।

जी सामीन, तम नगमो सुन रहा था तो गल हो रही थी आकाशवाणी की। सामीन, 10वां प्रोग्राम जुड़ो बहुत मशहूर हो उर्दू सर्विस तो। आल इंडिया रेडियो की नशरियात जब शुरू हुई तो इस वक्त पूरा बरसगीर माँ उर्दू राबता की एक जबान थी। हिंदुस्तान माँ सबसे ज़्यादा बोली और समझी जाने वाली जबान उर्दू ही थी। उर्दू की मकबूलियत बिला मजहब व तफरीक सारा के सिर चढ़ के बोल रही थी। ऐसा माँ अलग थे आल इंडिया रेडियो ने उर्दू सर्विस का नाते एक नशरियाती शाह कायम की। 1939 में नई दिल्ली रेडियो स्टेशन दे पहली उर्दू सर्विस के तहत अदबी प्रोग्राम को आगाज़ हुआ, जिनमें मुशायरा, अफसाना, ड्रामा, खबर और तबसरा शामिल था। फिल्मी और गैर फिल्मी नगमा के नाना खसूसी तौर पर गज़ल भी पेश की जाएं थी। इस प्रोग्राम ने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर पाकिस्तान और

अंग्रेजी ममालिक में भी उर्दू का परचम लहराया, उर्दू नाल इश्क करने वाला पैदा किया। समी ने तमने आकाशवाणी का सिर्फ 10 अहम प्रोग्रामों की तफसीलात को जिक्र कियो, इसके बाद कुछ और भी ऐसा प्रोग्राम था जिड़ा बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। दरअसल रेडियो ग्रां वालों के वास्ते हमेशा से लाइफ लाइन रही है, जिसमें खेती, घर गृहस्थी, किसान वाणी, चौपाल, ग्राम सभा जैसा प्रोग्रामा ने किसानों की किस्मत में बदलन में अपना अहम रोल निभाया है। नाट्या मंजरी, संगीत सरिता, राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसा प्रोग्रामा के जरिए खास मौजू पर डॉक्यूमेंट्रीज और ड्रामा पेश किया गया था। नाल ही नाल मौसीकी, फिल्म और आर्ट से ताल्लुक रखने वाला क्लासिकल आर्टिस्टों का इंटरव्यूज और इनकी जिंदगी ना जुड़िया अहम किस्सों के जरिए दरअसल नई नस्ल की रहबरी की जाती रही है। आर्ट एंड कल्चर ना बढ़ावा देते जा रही है। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम और सेहत आमा ना जुड़िया मसाइल पर प्रोग्राम हो रहे हैं। इसी तरीका पर परिवार कल्याण, सेहत आफियत ऐसा जड़ा प्रोग्राम है, इन्होंने नशर करके मैसेज जुड़ा है सारा तक पहुँचाया जा रहा है। इंसानी हकूक और इसका तहफ़ की खातिर कानून की बात जागरूकता प्रोग्राम नशर किया जाते रहे है। ऑल इंडिया रेडियो ऐसा नशरियाती इदारों है जो सरकारी मनसूबा ना आवाम तक आसान जबान में पहुँचाने को काम करते रहे है, ताकि इस ना सरकारी मनसूबा को फायदा हो सके। समीन आगे नगमो सुन लिया।

सामीन इसी तरीका पर सेहत बीमा नाल नाल मनरेगा प्रधानमंत्री आवास योजना उज्ज्वला योजना पर भी गल वै नाल ही नाल सरकारी मनसूबा ना कारामद बनाने के वास्ते रेडियो ड्रामा और फीचर भी पेश किया जाए जिसमें नया सवेरा के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम पर ड्रामा नाटक स्वच्छ भारत मारी जिम्मेदारी के तहत सफाई मुहिम पर फीचर पेश किया जाता रहा है। गीत और जिंगल के तहत फैमिली प्लानिंग पर नारो जिस तरह हम दो हमारे दो पोलियो के वास्ते दो बूंद जिंदगी के और दूजा कई सरकारी मनसूबा जिस तरह की किसान क्रेडिट कार्ड एजुकेशनल क्रेडिट कार्ड भारत की बात जन सेवा आओ समझाएं योजना वगैरह आकाशवाणी पर पेश किया जाता रहा है। आकाशवाणी ने गांधी जी ना जुड़िया बेशुमार प्रोग्राम पेश किया है। गांधी जी की जिंदगी और इनकी हमजहत शख्सियत का रंग दर्शन वास्ते रेडियो पर गांधी दर्शन गांधी के विचार सत्य और अहिंसा ग्राम स्वराज्य डांडी यात्रा भारत छोड़ो आंदोलन सत्याग्रह जैसा मौजू पर बेशुमार मजाकरा नाटक और फीचर भी पेश किया जाता रहा है। इनका सूलों की रोशनी में बैसो मुबाशा भी कराया गया। 3 अक्टूबर 2014 ते मारा वजीर अजम जनाब नरेंद्र मोदी साहब की जबानी मन की बात प्रोग्राम दूरदर्शन के नाना आकाशवाणी पर भी हर महीना की आखिरी इतवार में पेश की जाए। इसके जरिए आवाम बेदार करन इनकी हौसला अफजाई करन और इनकी कारगुजारियां सामने लिया जाए। डिजास्टर और कुदरती आफात जैसे तरह के सैलाब जलजलो साइक्लोन सुनामी वबाई अमराज के दौरान आकाशवाणी फौरी तौर पर खबर नशर करे और नाल ही नाल इसका तदारक और रोकथाम के वास्ते सरकारी ऐलान रेडियो के जरिए घर घर पहुँचाने को फराइज अंजाम देते रहो है। हेल्पलाइन नंबर जारी करते रहो है। अफवाह से बचन और फौरी तौर पर अमदाद दी अशिया की फराहमी की खबर भी नशर करते रहो है। इत तक कि सरकारी और NGOs का मनसूबा ना लोगों तक पहुँचाया हुआ है। मिसाल के तौर पर 1999 का उड़ीसा साइक्लोन 2004 का सुनामी में आकाशवाणी ने राहत बचाव से मुंसल खबर आम लोगों तक पहुँचाई और लखा लोगों की जान बचाने में अपनों अहम किरदार अदा कियो। इसी तरह 2014 में जो कश्मीर में सैलाब आया था उस हवाला ने भी रेडियो ने बहुत मुतासर को काम कियो। आकाशवाणी ने खेड़ा न लेके भी दही और शहरी आवाम में बेदारी पैदा करने की कोशिश की है। क्रिकेट हॉकी फुटबॉल कुश्ती वगैरह का नेशनल और इंटरनेशनल प्रोग्राम इत तक के ओलंपिक्स एशियन गेम्स और दीगर बड़ा टूर्नामेंट और वर्ल्ड कप की कमेंट्री सुनाने को लाइव एहतमाम बरसों से आकाशवाणी करते आया हुआ है। इस तरह तैलीमी बेदारी मुहिम के तहत भी आकाशवाणी एजुकेशन बेस्ड प्रोग्राम नशर करे जिसका मकसद बच्चों की बुनियादी तालीम उसातिज़ा और तलबा की रहनुमाई समाजी व सकाफती तालीम जबान व अदब की तरवीज शामिल हैं। कौमी यकजहती को फरोग इत बिला तफरीक और बिला इम्तियाज मज़हब ज़ात और इलाका की मुख्तलिफ ज़बाना का प्रोग्राम कौमी त्यौहारों की कवरेज मौसीकी और फ़नून लतीफ़ा का नशरियात में भी आकाशवाणी का रोल बहुत अहम रहा है। कौमी इतिहाद ना फ़रोग देन और एक दूजा ना करीब लियान हिंदुस्तानी तहजीब विरासत ना सांझो करने की जिम्मेदारी भी आकाशवाणी ने बखूबी

निभाई है, चाहे वो अदब व ज़बान को फ़रोग़ है या फिर क्लासिकल मौसीकी और लोकगीत में, या फिर हमारा त्यौहार या रसूमात में, या फिर समाजी व सकाफती बेदारी। इस तरह का तमाम प्रोग्राम ना तरजीही बुनियाद पर हमेशा दी आकाशवाणी ने अपने जगह दीती है। आदिवासी समाज की तहजीब व सकाफत ना बढ़ावा देने के वास्ते आकाशवाणी ने हमेशा नुमाया रोल अदा किया है, चाहे वे आदिवासियों की शनाख्त को मसलो, मुकामी जबान को फ़रोग को मामलो है, लोक संगीत और फनूनी लतीफाना अहमियत देने की गल है, इसमें कदे आकाशवाणी पीछे नहीं रही। समीन आगे हमने नगमो सुन लिया।

जी समीन तुम नगमो सुन रहा था तो गल हो रही थी आकाश समीन आल इंडिया रेडियो की तरफ से जनवरी 1936 में एक 15 रोज़ा रिसाला उर्दू और हिंदी जबान में जारी किया गया था जिसमें आने वाला 15 दिन की तफसीलात दर्ज हुई थी। ये बेहद मकबूल रिसाला था। इन तफसीलात ना पढ़ के लोग अपना पसंदीदा प्रोग्राम के वास्ते वक्त कड़िया करें था। जुलाई 1938 में यह रिसालो दो हिस्सों में मुनकसम हो गया। हिंदी पत्रिका का नाम सारंग प्यो ता उर्दू रिसाला को ना आवाज़ रखियो गयो। इस रिसाला को शुमार इस वक्त उर्दू का म्यारी रिसाला में वह थो। वजह यह थी कि उर्दू का बड़ा बड़ा फनकार अपनी कहानियाँ ना अपनी गजलों ना अपना ड्रामा ना अपना समाजी सियासी और दीगर शोभा जात ना जुड़िया मौजूद पर लिखिया मजामीन ना आकाशवाणी ते नशर करवानो अपनी शान समझता और इनकी यही तख्लीकत एक पॉलिसी के तहत रिसाला आवाज़ की जीनत बनी थी। जिस टेलीकास्ट के वक्त किसी वजह से सुन नहीं पाया था वह रिसाला आवाज़ ना खरीद कर पढ़े था और बेहतरीन तख्लीकात थे महफूज हुए था। हिंदुस्तानी क्रिकेट और रेडियो कमेंट्री कदे लाजम व मलजूम समझा जाए था। आल इंडिया रेडियो पर क्रिकेट कमेंट्री की बाकायदा

शुरुआत 1936 में हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दरमियान कलकत्ता में खेड़िया जाने वाला टेस्ट मैच में हुई थी। उस तरह 1934 में आजमाइशी नशरियात का तौर पर मुंबई में खेड़िया गया हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला ही हो चुकी थी। 1983 में जब हिंदुस्तान ने वर्ल्ड कप जीतियो तो आधी रात ना लोगों का कनम आकाशवाणी की सदा गूंज रही थी। हूँ आकाशवाणी को रेंज और भी ज़्यादा बढ़ गया है। FM, सैटेलाइट, डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के जरिए आकाशवाणी ना पूरी दुनिया में सुनो और पसंद किया जाए था। इसके अंदर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का जज्बात भी हैं और भारतीय की आवाज़ भी। अपना 90 वर्ष का शानदार सफ़र में आकाशवाणी ने कई अहम पड़ाव देखे हैं और हर पड़ाव में अपने ना मुझ सारी यादा ना समेटियो है। आकाशवाणी आज सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं बल्कि एक जीतो जागतो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तानी तहजीब सकाफत मौसीकी जबान अदब को एक गहवारो है। इसमें 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की रूह बस है, लेकिन साइबर स्पेस इंटरनेट की दौर में बका की जंग को भी मामलो है। जिसना इसना लड़नो है, अपना मुस्तकबिल ना सजानो है, संवारनो है। जी सामी, आगे एक नगमो सुन लिया।

जी सामीन, तमने नगमा सुनियो। इस नगमा का नाल ही आज का प्रोग्राम को वक्त मुकरना है। प्रोग्राम का प्रोड्यूसर वसीम फारूक वानी ते अपना मेज़बान शबीर अहमद पसवाल ना। दियो इजाज़त। अच्छा जी, रब राखो।

आकाशवाणी का यह श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफ एम 103.5 MHz पर 5:50 हो रहे हैं। समय थोड़ी देर में आप गोजरी में खबरें सुनेंगे।

0: स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा, NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: नौजवाना ना इस बुरी आदत से दूर रखने के वास्ते दरकार इकदाम का बारा में एक अदाकार नौनैन अख्तर हुसैनी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के नाल गल करते हुए कहा,
2: आने वाला मुस्तकबल तब जाके आपके बेटे का वैसा रोशनास होगा जैसे आपके दिल की चाहत होगी। उसके लिए इम्पोर्टेंट है आप शाम को आके घर में चेक करें और अपने बच्चों को रूहानियत के साथ वाबस्ता करें, और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट बात बनती है स्कूल्स में चेक करें, असेंबलियों में से, क्लासरूम में से एक लिस्ट बनाएं। अगर उनको लग रहा है सेहत के लिहाज से बच्चा कमजोर होता जा रहा है, वो यूटिलाइज करें अपने एक्सपीरियंसेस। और हम जम्मू कश्मीर पुलिस के जबरदस्त शुक्रगुजार हैं, और बहुत कुछ करना बाकी है क्योंकि ये कौम के बच्चे हमारे खुद के बच्चे हैं।
1: सेहत तबी तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने कहा कि इनकी सरकार जम्मू कश्मीर ना मनशियात का कारोबार का इस्तेमाल से निजात दिलान के वास्ते मुनासिब इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस लत का आदि अफराद की बाजाबादकारी व खसूसी तवज्जो दी जा रही है। अपना ख्याल को इजहार करता हूँ उन्होंने क्यों,
3: जहाँ तक नशा मुक्त की बात हो या ड्रग एडिक्शन पे जो काम करना हो सरकार तो कर रही है, उसमें हमारा काम है ट्रीटमेंट करना, हमारा काम है काउंसलिंग करना, जो हमारे सेंटर्स चल रहे हैं हॉस्पिटल्स में वहाँ पे ट्रीट करना, वहाँ पे काउंसलिंग करना, वहाँ पे उनको रिहैबिलिटेट करना, उनको इस वबा से बचाना, उनको वापस लाना है ताकि वो आगे बढ़े अपनी लाइफ में। जो बिदत है ड्रग्स की इसको हम निकाल पाए यहाँ से, हमारी कोशिश यही है, लेकिन जितना हम सारे मिलजुल के कर सकते हैं इस वबा को निकाल सकते हैं यहाँ, इसमें जो भी करे काम मैं तो उसको अप्रिशिएट ही करूँगी।
1: नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत पुलिस ने कुलगाम में महकमा माल का हकाम का तावन नाल कुंड इलाका में पांच कनाल गो रकबा वर फैली काचराई ना बाजियाब की है, या जा जिसकी मालियत 60 लाख रुपया दसी जाए। NDPS एक्ट के तहत मुलजम करा देता गया दुआ ड्रग स्मगलरों का कब्जा में थी। मंशात का कारोबार के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखता हुआ पुलिस ने बारामूला जिला का फिरोजपुर टांगमार्ग इलाका में बदनाम जमाना ड्रग स्मगलर इम्तियाज अहमद मीर की एक दुकान सजबर कर दी गई। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आउटसोर्स किया गया नॉर्थ विंड कैफो सील की हो। दस्यो जाए कि यू कैफो NDPS का एक मामला में मुलजम यासीन खांडे के नाम पर लीज कियो गयो थो। पुलिस ने अंतनाग का खाटपुरा नोगाम में अब्दुल रहमान राथर नामी एक शख्स की जावर काश्त की गई बंग की फसल तबाह कर दी। जम्मू सूबा का कठुआ जिला में रंजा नामी ड्रग स्मगलर ने गिरफ्तार कियो। उधमपुर में पुलिस ने मोहम्मद फारूक, सव्याम शर्मा, विशाल जमवाल ते एकन कालसरी ड्रग स्मगलर की गिरफ्तारी अमल में लाई। रियासी जिला में पुलिस ने कटरा में एकन कार्रवाई के दौरान विक्की कुमार नामी एकन शख्स ते नशीली दवाइयों का 300 कैप्सूल जब्त किया। रियासी पुलिस ने पुष्पिंदर सिंह नामी एकन और ड्रग स्मगलर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। सांबा जिला का बड़ी ब्राह्मणा इलाका में मोनू कुमार नामी ड्रग स्मगलर ने गिरफ्तारास्त में लियो गयो। जिला का विजयपुर इलाका में मनशियात बेदारी प्रोग्राम मनकद किया गया। राजौरी पुलिस का एहतमाम ते जिला की कई जावर बेदारी प्रोग्राम मनकद हुआ। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपना अवामी राबता मुहिम के तहत आज श्रीनगर में कनी कनी अवामी वफद के नुमाइंदा के नाल मुलाकात की ते उना के नाल जम्मू कश्मीर में अवामी भलाई बेहतरी ते मतलक सरकार का कनी कनी तरक्याती सरगर्मियों का बारा में तबादलो ख्याल कियो। मुलाकात करन आला में हल्का इंतखाब जड्डी बल ते बनाल का मेम्बरान असम्बली तनवीर सादक ते सजाद शाहीन ते अलावा साबक वजीर जावेद मुस्तफ़ा अमीर, मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिर अल इस्लाम ते मायर तालीम GN वार शामिल था। आकाशवाणी ने आज अपना क्याम का 90 साल मुकम्मल होने का मौका पर कौमी राजधानी दिल्ली में एक मैराथन को एहतमाम कियो, जिसमें आकाशवाणी दूरदर्शन ते प्रसार भारती का मुलाजमा ने हिस्सो लियो। इस मौका पर प्रसार भारती का CEO गुरु द्विवेदी ने कहा कि मैराथन ते लोगों तक चुस्त रहन की तारीख को पैगाम पुजेगो।
4: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट

0: माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था कि आकाशवाणी से जैसे आपका लगाव पिछले 9 दशकों से बना हुआ है, आने वाले समय में भी वैसे ही बना रहे।
1: आकाशवाणी का डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जी ने कहे कि इस तरह का प्रोग्राम पूरा मुल्क में आकाशवाणी का 232 मरकजों पर मुनक्कद किया जाएगा।
2: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक सुदूर प्रदेश तक इस पहुंचता है और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
3: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा और ये उत्सव है। हम देश की सेवा में जो आकाशवाणी का योगदान रहा है उस योगदान को सेलिब्रेट कर रहे हैं।
1: ये खबर तम आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। ये खबर तम आकाशवाणी का मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR से DTH पर भी सुन सके। साथ ही अकेडमी की बखीते गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपुर में कश्मीर की मारूफ शायरा हबा खातून ते मतलब एक सेमिनार मुनक्कद कियो गयो। सेमिनार में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा इंद्राबी ने मेहमान खसूसी की हैसियत नाल शिरकत की। अपना ख्यालात को इजहार करते हुए उन्होंने कहे कि हबा खातून ने अपनी शायरी में सिर्फ अपना दिल की गल नहीं की है, जबकि उन्होंने वादी की कालसरिया का तबका की कवत को भी वाजह ऐलान किया है।
4: हबा खातून की हयात जिंदगी पे आज सब बात कर रहे हैं। ये बड़ी बात है कि हम अपने जो हमारे कश्मीरी जुबान के अदीब हैं उनको याद करें और जो उन्होंने रोल अदा किया है, खासकर निस्वानियत जो आवाज थी हबा खातून की, वो आज नए जनरेशन को बोली जाए, बताई जाए, उनके सिलेबस में शामिल हो, ताकि हम ये लेगेसी आगे बढ़ाएं। तभी तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को अपने जो रूट्स हैं, जैसे खासकर हमारी हबा खातून, लला आरिफ, ये हमारे ऐसे लीजेंड हैं। अगर हमारी आज की जनरेशन इससे नावाकिफ रही तो बहुत नुकसान होगा।
1: अपना ख्यालात को इजहार करतम कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर गजाला अजर ने क्यों।
5: हमारा ये मकसद था कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनको पता चल जाए कि ये पामपुर की सरजमीन जो है ये कोई आम सरजमीन नहीं है। यहाँ पर सबसे जो कदावर शायरा पैदा हुई है हबा खातून, तो वो इसी सरजमीन की पैदावार। और मैं चाहूंगी कि मैं अपने सरकारी जो हमारे यहाँ पर डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी मैम आई है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, इंतजा करूंगी कि इस कॉलेज को सी हबा खातून सीट बनाए, ताकि यहाँ पर लोग दूर दूर से आए और हबा खातून पर रिसर्च।
1: सेमिनार में नामवर कलमकार मोहम्मद यूसुफ टेंग, प्रोफेसर मोहम्मद जमान अजरदा ते अदबी मरकज कमराज का सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने भी शिरकत की। आज रेड क्रॉस को आलमी त्याड़ो है। यो त्याड़ो इंसानियत, गैर जमदारी, रजाकाराना खिदमत, यकजेती, अफाकियत, हमदर्दी जैसा इकदार की पासदारी न यकीनी बनान के वास्ते मनायो जाए। रेड क्रॉस का आलमी त्याड़ा का सिलसिला में आज वादी ममी कई तकारीब को एहतमाम है। इस साल इस त्याड़ा को मौजू कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव रखियो गयो है। इसके नाल ही यो खबरनामो मुक्यो। अगलो खबरनामो आकाशवाणी श्रीनगर ते शाम 6:05 पर कश्मीरी में नशर वैगो। देव सामेन इजाजत, खुदा हाफिज।
6: आकाशवाणी का ये श्रीनगर स्टेशन है। शाम के 6:00 थोड़ी देर में हम आकाशवाणी दिल्ली से खबरें रिले करेंगे।
7: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने बताया कि बैठक में श्री अधिकारी के निर्विरोध चुना गया।
8: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
7: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड

0: परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिलगा वितरिक कड़गम टीवीके को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली वीसीके पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डाटा दिया गया है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 941 अंक बढ़कर 77,959 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 298 अंक की बढ़त के साथ 24,331 पर दर्ज हुआ। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर महिला रिकव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। कल भारतीय महिला रिकव टीम ने फाइनल में प्रवेश किया। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली अंक तालिका में 7वें और कोलकाता 8वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: इसे आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव ज्यादा 8.8 मीटर से एफएम 77.5 मेगाहर्ट्ज़ पर 5 मिनट बीत शब्द जी पेश छु गर्मी बानी खतरे जो प्रोग्राम

0: Gummy Boys Pun Program Bozan. I'm a programming producer, Wasim Farooq. This is Akashwani Srinagar, Samin Sainz, Doimi Salanis Pradio.
1: Akashwani Srinagar. अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है।
2: प्रोग्राम शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
3: शेरबीन के सामईन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौसुआत हैं, बीजेपी रियासत का दर्जा बहाल कराने में ब्लैक मेलिंग से काम ले रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम मेंबरान यकजुट हैं, वजीर आला उमर अब्दुल्ला। 100 रोजा मनुष्यात मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम जोरों से जारी, एलजी मनोज सिन्हा कल अनंतनाग में पद यात्रा में करेंगे शमूलियत। हाजन में 3 नौजवान दरियाए जहली में गिर कर अजा, इलाके में सफे मातम, और शुमाली कश्मीर में गैर कानूनी कानकनी पर रोकथाम में हुकाम नाकाम। और भी मौजूद थे आज के शेरबीन में एक वक्फे के बाद।
4: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा

0: दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
1: होली का ना अलग ही मजा है। लोरी ना मिठाई खाओ।
2: वाह, इसका स्वाद तो बड़ा ही अच्छा है।
3: नहीं, मैं जो मिठाई लेके आई उसमें ऐसा स्वाद क्यों नहीं आ रहा?
1: सावधान रहना रीना, त्योहारों के समय मिठाइयों में मिलावट की संभावना बहुत अधिक होती है। इससे हमारी और हमारी फैमिली की सेहत खराब हो सकती है।
3: अच्छा भाभी।
1: और हाँ, मिठाई खरीदने से पहले ये जरूर जांच ले कि दुकानदार के पास फूड लाइसेंस हो। अगर किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट की शंका हो तो राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त के कार्यालय में शिकायत कर सकती हो। और अधिक जानकारी के लिए www.fssai.gov.in पे लॉगिन कर सकती हो। और हाँ, अगर आप चाहती हो तो वेबसाइट पर खाद्य मिलावट की जांच के आसान तरीकों की जानकारी भी ले सकती हो।
3: थैंक यू भाभी, आपने तो मेरी आँखें ही खोल दी।
4: याद रहे, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार।
5: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
6: बस एक बार, सिर्फ एक बार, और हर बार लगता है क्या ही तो हो जाएगा, सेफ है यार। लेकिन ड्रग्स सिर्फ एक बार का मजा नहीं देता, धीरे धीरे सेहत, दोस्ती, सपने और जिंदगी पर असर डालता है। किडनी और लिवर खराब होने लगते हैं, बेचैनी और तन्हाई बढ़ने लगती है, दिल तेज धड़कने लगता है और सोच धुंधली पड़ती है और रिश्तों में दूरी आने लगती है।
7: पर क्या कर सकते हैं?
6: गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेकर आए हैं नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान। बस अभी टेलीमानस हेल्पलाइन 14416 पर कॉल करो। यहां सुनते हैं बिना जज किए, समझते हैं और मदद भी करते हैं। अगर कोई और भी इस दौर से गुजर रहा है तो समय रहते रिपोर्ट करने से एक जिंदगी बच सकती है।
8: आओ चले और एक नया रास्ता चुने, जिंदगी की असली पहचान बचाए और बनाए नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर। से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
9: अरे माँ देखो, एक्सीडेंट। रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
10: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
9: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ। अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
10: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
9: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
10: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
9: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट। मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं। पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
10: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
9: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा। हमें बस इंसानियत दिखानी है।
10: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
9: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें, जिंदगी बचाएं।
5: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
11: शर्वीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने BJP पर इल्जाम आयद किया है कि वह जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा बहाल करने के मामले में ब्लैकमेल की सियासत कर रही है। श्रीनगर में नामा निगारों से गुफ्तगु करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में मुकम्मल इतिहाद है और काबीना में तौसी में ताखीर किसी अंदरूनी इख्तलाफ या खौफ की वजह से नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर को ताहाल मुकम्मल रियासती दर्जा न मिलने के बायस हो रही है। उन्होंने अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा के बयान पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई शिंदे नहीं है, हमारे तमाम अराकीन मुतहिद हैं। वजीर आला ने तंज अंदाज में कहा कि अपोजिशन लीडर को वजीर आला की कुर्सी पर बैठने की जल्दी है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में हदबंदी यानी डिलिमिटेशन का अमल सिर्फ BJP और उसके दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था।
12: मैं LOP साहब को सिर्फ इतना ही कहूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई एकनाथ शिंदे नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA तट के नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। फिलहाल तो सिर्फ बंगाल में हुआ है, अभी तो 2029 तक हमारे इलेक्शन होने नहीं है। आप जम्मू कश्मीर के बारे में क्यों घबरा रहे हो? पहले तो देखें बाकी मुल्क में इसका क्या असर होगा। हमें जो भुगतना था हमने भुगत लिया, हमने इनका डिलिमिटेशन भुगता, और डिलिमिटेशन हमें मालूम है वो सिर्फ BJP और BJP के दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है, इसी से आपको BJP के इरादों का पता चलता है। जाहिर सी बात है कि LOP साहब बेसब्र हैं जम्मू कश्मीर के वजीर आला की कुर्सी को पकड़ने के लिए। कैबिनेट की एक्सपेंशन रुका इसलिए है क्योंकि हमें रियासत का दर्जा नहीं दिया गया। कैबिनेट की एक्सपेंशन डर के वजह से रुका नहीं है, और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, LOP साहब अपने इन बयानों से साबित करते हैं कि जब तक BJP को हुकूमत नहीं मिलती तब तक वो हमें ठीक तरह से काम करने नहीं देंगे,

0: और जम्मू कश्मीर को वो रियासत नहीं बनाएंगे। जम्मू कश्मीर के आवाम को और बिलखसूस उन लोगों को जिन्होंने बीजेपी को पिछले इलेक्शन में वोट दिए, उनको इस बात का जो है अब इस चीज को याद रखना चाहिए कि ये एलओपी साहब और उनकी पार्टी जो है ब्लैकमेल की सियासत करती है और यहाँ के लोगों को स्टेटहुड के नाम पे जो है डराया और धमकाया जा रहा है।
1: वजीर आला का बीजेपी पर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम। अब एक और मौसम। सामिन, हाजिन बांडीपोरा में आज एक दिल खराश वाकये में 3 अफराद की मौत हुई है। बताया जाता है कि तीनों नौजवान दरिया जहलिम के किनारे पर अपने टेंट धो रहे थे कि एक का पांव फिसल गया और वो जहलिम में जा गिरा। उसके दो साथी उसे बचाने के मकसद से जहलिम में कूद पड़े मगर तेज बहाव का सामना न कर सके। मुकम्मल जानकारी अंजुम फिरदौस की जबानी।
2: हाजन इलाके से एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया जहां दरियाए जहलम में डूबने से 3 नौजवान जहां बाग हो गए। ये अफसोसनाक वाकया आज हाजन के चक चंद्रगिर इलाके में उस वक्त पेश आया जब 3 नौजवान दरियाए जहलम में टेंट का सामान धो रहे थे। इतलात के मुताबिक अचानक उनका तवाजुन बिगड़ गया और वो दरिया के तेज बहाव में बह गए। डूबने वाले नौजवानों की शिनाख्त सुहेल अहमद डार, आदिल अहमद डार और समीर अहमद डार के तौर पर हुई है, जो तमाम चंद्रगिर हाजन के रिहायशी बताए जा रहे हैं। हादसे की इतला मिलने ही मकामी लोग बड़ी तादाद में मौके पर पहुंच गए और फौरी तौर पर बचाव कार्रवाइयां शुरू की। मकामी नौजवानों ने अपनी जान खतरे में डालकर दरियाई जहलिम में उतरकर तलाश का अमल जारी रखा। बाद में रेस्क्यू टीमें और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू एहलकारों ने इब्तदाई तौर पर 2 नौजवानों की लाशें दरिया से निकाल ली और जबकि तीसरे नौजवान की तलाश कई घंटों तक जारी रही। बाद हजार रेस्क्यू टीमों ने तीसरे नौजवान की लाश भी दरिया से बरामद कर ली, जिसके बाद तीनों नौजवानों की लाशें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हाजन मुंतकिल कर दी गई। मकानी लोगों ने इल्जाम लगाया कि सरकारी रेस्क्यू टीमें तादीर से पहुंची, जिसके बाद इब्तदाई इमदादी कार्रवाइयां मकामी नौजवानों ने खुद अंजाम दी। हादसे के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। फिजा सोगवार है और हर आंख अश्कबार है। बड़ी तादाद में लोग इलाके में जमा हुए हैं जबकि जाम बहक नौजवानों के घरों में गम का माहौल है।
1: ये थे बांडीपुरा से अंजुम फिरदौस। इस दौरान गांधरबल में सर्च ऑपरेशन 14 दिन तक जारी रहने के बाद आज लापता नौजवान की लाश नालसिन से बरामद की गई है। हुकाम के मुताबिक मुतवफी की शिनाख्त मुनीर अहमद शाह वालद महबूब शाह साकिन वसान बेला गांधरबल के तौर हुई है। अब एक और मौसम। समी जम्मू कश्मीर में सौरोजा नशा मुक्त मुहिम जोरों शोर से जारी है और गुजश्ता एक माह से जिला सब जिला तहसील और ब्लॉक सतह पर रोजाना प्रोग्राम मुनक्कद किए जा रहे हैं जबकि सरकारी तालीमी इदारों में भी इस हवाले से आए रोज प्रोग्राम और बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस मुहिम की आज सर खुद रहनुमाई कर रहे हैं और जिला सतह पर मुनक्कद होने वाले प्रोग्रामों और पद यात्राओं में जाती तौर शमूलियत कर रहे हैं। मुहिम के सिलसिले में अनंतनाग में एक पद यात्रा का एहतमाम किया गया जिसमें तमाम महकमे सिविल सोसाइटी और तालीमी इदारे शिरकत कर रहे हैं। बताया जाता है कि रैली शहीद हुमायूं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खनबल में सुबह 7 बजे शुरू होगी। इस दौरान जिला पुलवामा में मनुष्यात फरोशों और मनुष्यात की काश में मुलवस अफराद के खिलाफ कार्रवाई सूरत से जारी है और जिले के बाज इलाकों की तरफ खास तवज्जो दी जा रही है जहां बाज मनुष्यात उगाने की ज्यादा शिकायत सामने आ रही हैं। एक रिपोर्ट के साथ शब्बीर भट्ट।
3: वाजिए कश्मीर में मनुष्यात की वबा पर कदम लगाने के लिए एलजी इंतजामिया की जानिब से चलाई जा रही नशा मुक्त अभियान के तहत आगाही प्रोग्राम और कार्रवाइयां जारी है। वह जिला पुलवामा में भी नशा मुक्त अभियान को सरकारी सतह के साथ साथ अवामी सपोर्ट भी मिल रहा है और खुशाइन बात है कि मनुष्यात की बढ़ती वबा पर पूरी तरह कदगन लगाने के लिए अब मसाजिद खानकाहों और गुरुद्वारों से भी आवाजें बुलंद हो रही है, जिसकी वजह से मनुष्यात मुखालिफ प्रोग्राम का एजेंडा घर घर पहुंच रहा है। वहीं मनुष्यात मुखालिफ मुहिम के तहत पूरे जिला के चारों हल्के इंतखाबात पुलवामा राजपुरा पांपोर और त्राल में पुलिस की जानिब से पे दर पे कार्रवाइयां जारी है और मनुष्यात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाई जा रही है। तफसीलात फराहम करते हुए SSP अवंतीपुरा सज्जाद अहमद शाहनी शेरवीन को बताया कि मनुष्यात के खिलाफ जारी जंग को जारी रखते हुए अवंतीपुरा पुलिस ने त्राल अवंतीपुरा पापोर खिलू इलाका जात में अब तक 44 मुलजिमान के खिलाफ 32 केस रजिस्टर किए हैं जबकि कई मनुष्यात फरोशों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ बाजाब्ता FIR भी दर्ज किया गया है। इसी तरह फुटकी के कारोबार को रोकने के लिए अवंतीपुरा पुलिस डिस्ट्रिक्ट के तहत आने वाले एरिया में करीबन 15 कनालों पर खशखाश की काश्त को तबाह कर दिया गया है और इस जमन में 10 अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई है। अवामी हलकों ने सिविल और

0: पुलिस इंतजामिया की इन काविशों की सराहना करते हुए कहा है कि अब की बार इंसदादी मंशियात मुखालिफ मुहिम में अवाम की बड़े पैमाने पर शिरकत इस बात का बयान सबूत है कि अवाम माशरे में फैल रही इस बिदत पर काबू करने के लिए पूरी तरह इंतजामिया के शाना बशाना खड़ी है। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशर कयूम ने आज शाम शहरबीन को बताया कि नशा मुक्त अभियान के तहत सप्लाई चेन में खलल डालने, डिमांड कम करने के अलावा जिला के कुर्ब जवार में बेदारी प्रोग्राम मुनक़द किए जा रहे हैं जिनमें भारी आवाम की शिरकत इस बात का कमाल है कि आवाम इंतजामिया के साथ इस जंग में बराबर की शरीक है। उन्होंने मजीद बताया कि मंशियात की वबा को खत्म करने के लिए नशे के कारोबार में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त इकदाम किए जा रहे हैं जबकि समाज में मंशियात के मुजर असरात के बारे में भी आगाही फैलाई जा रही है ताकि जिला पुलवामा भी दीगर अजला की तरह नशे से मुक्त जिला बन जाए।
1: आपने शबीर भट्ट की रिपोर्ट सुनी। इस दौरान शोपियान से फयाज वानी ने इत्तला दी कि जिले में मनुष्यात के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान एक बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए ड्रग कंट्रोल महकमा शोपियान और पुलवामा की मुश्तरका टीमों ने शोपियान पुलिस के तावन से प्रिगैबिलिन 300 मिलीग्राम के 6000 कैप्सूल जब्त किए हैं जिनकी मालियत तकरीबन 2,53,000 रूपये बताई गई है। ये कार्रवाई हाल ही में बटपुरा शोपियान इलाके में अंजाम दी गई और इस कार्रवाई को मकामी सतह पर सराहा गया है। इस दौरान डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने कहा कि कश्मीर में मनुष्यात मुखालिफ मुहिम में अवामी शिरकत कलीदी किरदार अदा कर रही है और वादी भर की हजारों मसाजिद और मजहबी इदारों में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के बारे में जानकारी दी जा रही है और उलमा इन सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि 11 अप्रैल से शुरू की गई इंसदाद मनुष्यात मुहिम के तहत कश्मीर की 4000 से जायद मसाजिद और मजहबी इदारों में बेदारी प्रोग्राम मुनक़द किए गए जबकि 955 मजहबी रहनुमाओं ने मनुष्यात के नुकसान से मुतल्लिक अवाम में शोर बेदार करने में हिस्सा लिया। शर्बीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
4: एक बार ट्राई करके तो देख, तू डरता है? कुछ नहीं होता, किसी को पता नहीं चलेगा।
5: नशा किसी भी तरह का हो, एक बार इसकी लत लग जाए तो इतनी आसानी से नहीं छूटती। नशा सिर्फ आपका जीवन ही बर्बाद नहीं करता बल्कि ये आपके परिवार, आपके पूरे फ्रेंड सर्कल, आपके फ्यूचर को अंधकार में ले जाएगा।
6: क्यों? सुन के डर लगा ना? अभी भी देर नहीं हुई है, आप अब भी नशे को छोड़ सकते हैं और जिंदगी से फिर से अपना नाता जोड़ सकते हैं। से बाय बाय टू ड्रग्स एंड हाय टू गुड लाइफ।
7: तो आइए आज से हम सब मिलकर खुद को, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स को, अपने जिले, अपनी यूटी को नशा मुक्त बनाने का प्रण ले और इस नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान में अपना योगदान दे।
8: नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, खुशहाल जम्मू कश्मीर। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
9: इंजीनियरिंग में फ्यूचर बनाना है तो एनरोल योरसेल्फ इनटू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जुगुरा कैंपस। जुगुरा कैंपस के ओपन डे पर ऑन 11th of May 2026 एक्सप्लोर कीजिए मॉडर्न लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, इनोवेशन स्पेसेस और इंटरैक्ट कीजिए एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ। एडमिशन्स ओपन है बीटेक और एमटेक प्रोग्राम्स के लिए इन सिविल, मैकेनिकल, एआई, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेनी अदर कोर्सेज। एनएएसी A++ यूनिवर्सिटी के ट्रस्टेड एकेडमिक एनवायरनमेंट में पाइए क्वालिटी एजुकेशन, प्लेसमेंट्स और फ्यूचर रेडी लर्निंग्स। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 13th May 2026। तो इंतजार किस बात का, विजिट कीजिए iot.uok.edu.in इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, वेयर इनोवेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी।
1: शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। फारूक राथर के मुताबिक जिला मदनियात दफ्तर कुलगाम और पुलिस के बाहमी इश्तराक से गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ एक कार्रवाई अंजाम देते हुए शब्बर हसास इलाकों में ऑपरेशन जारी रखा गया जिसकी निगरानी डिप्टी कमिश्नर कुलगाम कर रहे थे जबकि कार्रवाई की कयादत जिला मिनरल ऑफिसर डॉक्टर खुर्शीद अहमद कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी तौर मदनियात निकालने और उनकी नकल हमल में मुलवस 3 JCB मशीनें और 5 डंपर गाड़ियां जब्त की गयी। हुकाम ने

0: नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान में अपना योगदान दे।
1: नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, खुशहाल जम्मू कश्मीर। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
2: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
3: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
2: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ। अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
3: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
2: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
3: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
2: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट। मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं। पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
3: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
2: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो। पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
3: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
2: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें, जिंदगी बचाएं।
1: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।

0: हमारे सेंटर्स चल रहे हैं हॉस्पिटल्स में, वहां पे ट्रीट करना, वहां पे काउंसलिंग करना, वहां पे उनको रिहैबिलिटेट करना, उनको इस वबा से बचाना, उनको वापस लाना है ताकि वो आगे बढ़े अपनी लाइफ में। जो बिदत है ड्रग्स की, इसको हम निकाल पाए यहाँ से, हमारी कोशिश यही है। लेकिन जितना हम सारे मिलजुल के कर सकते हैं इस वबा को निकाल सकते हैं यहाँ, इसमें जो भी करे काम, मैं तो उसको अप्रिशिएट ही करूंगी।
1: मनशात के खिलाफ जारी कार्रवाई के तहत पुलिस ने अनंतनाग में डोनीपुरा संगम के रहने वाले बशीर अहमद मीर नामी एक शख्स के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया। इस कार्रवाई में मजकूरा ड्रग स्मगलर की 6.5 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद जब्त की गई है। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत पुलिस ने कुलगांव में महकमे माल के हुक्काम के ताउन से कुंड इलाके में 5 कनाल के रुकबे पर फैली काचराई को बाजियाब किया है। ये जमीन, जिसकी मालियत 60 लाख रुपए बताई जाती है, एनडीपीएस एक्ट के तहत मुलजिम करार दिए गए 2 ड्रग स्मगलरों के कब्जे में थी। मनशात के कारोबार के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने बारामूला जिले के फैरोजपुरा टंगमर्ग इलाके में बदनाम जमाना ड्रग स्मगलर इम्तियाज अहमद मीर की एक दुकान सरबमोहर कर दी। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आउटसोर्स किया गया नॉर्थ विंड कैफे सील किया। बताया जाता है कि यह कैफे एनडीपीएस के एक मामले में मुलजिम यासीन खांडे के नाम पर लीज किया गया था। पुलिस ने अनंतनाग के खडपुरा नौगांव में अब्दुलरहमान राथर नामी एक शख्स की जमीन पर काश्त की गई भंग की फसल को तबाह कर दिया। जम्मू सूबे के कुठवा जिले में रंजा नामी ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अहतमाम से हंदवाड़ा में इस अभियान के तहत कई बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। उधमपुर में पुलिस ने मोहम्मद फारूक, स्वयं शर्मा, विशाल जमवाल, वंश जमवाल और एक खातून ड्रग स्मगलर की गिरफ्तारी अमल में लाई। रियासी जिले में पुलिस ने कटरा में एक कार्रवाई के दौरान विक्की कुमार नामी एक शख्स से नशीली अद्वियात के 300 कैप्सूल बरामद किए। रियासी पुलिस ने पुष्पंदर सिंह नामी एक और ड्रग स्मगलर की गिरफ्तारी अमल में लाई। सांबा जिले के बड़ी ब्रह्मणा इलाके में मोनू कुमार नामी ड्रग स्मगलर को हिरासत में लिया गया। जिले के विजयपुर इलाके में मनशात मुखारे बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। राजौरी पुलिस के अहतमाम से जिले के कई मकाम पर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपनी अवामी राबता मुहिम के तहत आज श्रीनगर में मुख्तलिफ अवामी वफूद और नुमाइंदों के साथ मुलाकात की और उनके साथ जम्मू कश्मीर में अवामी बहबूद से मुतलिक सरकार की मुख्तलिफ तरक्याती सरगर्मियों के बारे में तबादले ख्याल किया। मुलाकात करने वालों में हल्के इंतखाब जड़ीबल और बानिहाल के मेंबरान असम्बली तनवीर सादिक और सजाद शाहीन के अलावा साबिक वजीर जावेद मुस्तफ़ा मीर, मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम और माहिर तालीम जी अनवार शामिल थे। सेहत और तिबी तालीम के वजीर सकीन आयतू ने आज अफसरान की एक मीटिंग में तालीम, सेहत और समाजी बहबूद महकमों की जानब से अमलाए जा रहे मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। वजीर मौसूफा ने देही और दूरदराज इलाकों में तालीमी मंजरनामे को जदीदत से हमकिनार कराने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर की मुतवाजन तरक्की के लिए वादाबंद है। आकाशवाणी ने आज अपने क़याम के 90 वर्ष मुकम्मल होने के मौके पर कौमी राजधानी दिल्ली में एक मैराथन का अहतमाम किया, जिसमें आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के मुलाज़मीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन से लोगों तक चुस्त रहने की तहरीक का पैगाम पहुँचेगा।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशंस हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था कि आकाशवाणी से जैसे आपका लगाव पिछले 9 दशकों से बना हुआ है, आने वाले समय में भी वैसे ही बना रहे।
1: आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम मुल्क भर में आकाशवाणी के 232 मराकज पर मुनक्किद किए जाएंगे।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक इस पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा और ये उत्सव है। हम देश की सेवा में जो आकाशवाणी का योगदान रहा है, उस योगदान को सेलिब्रेट कर रहे हैं।
1: ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर बैंक ने गुज़श्ता माली साल में रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया है, जबकि बैंक के असासों में भी मजीद बेहतरी आई है। इस बारे में बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अमिताभ चटर्जी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ एक खसूसी बातचीत के दौरान कहा।
5: پچھلے سال ہم نے جو مشکلات دیکھی یہاں جموں اینڈ کشمیر میں, تو وہ اس کے مد نظر اگر آپ ہمارے پروفٹ کو یا ہمارے بزنس گروتھ کو دیکھتے ہیں تو

0: डेफिनेटली बहुत ही रिमार्केबल है. आप फ्लड्स को ले लें, जो हाईवे बंद था, इन सभी चीजों की वजह से बिजनेस काफी अफेक्टेड था. तो हमने इसी वजह से कुछ अपने स्ट्रेटेजी में चेंजेस लाए थे. हमने एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस किया, एमएसएमई पे फोकस किया लास्ट क्वार्टर में, और इसके साथ में एक बिजनेस मिक्स हमने किया रेस्ट ऑफ इंडिया के जो हमारे ब्रांचेस हैं. तो इसकी वजह से हमारा बिजनेस ग्रोथ बहुत अच्छा रहा, इंडस्ट्री से बेटर डिपॉजिट ग्रोथ भी रहा, इंडस्ट्री से बेटर एडवांसेस ग्रोथ भी रहा, और करीब करीब इंडस्ट्री से मैचिंग हमारा कासा का भी ग्रोथ रहा. तो इन सभी फैक्टर्स को अगर हम एक साथ देखें तो ये साल रिकॉर्ड प्रॉफिट्स हुआ है, इन स्पाइट ऑफ इतना सारा डिफिकल्टीज रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में.
1: शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सौरा में आज से थर्नोस्टिक्स इन न्यूक्लियर मेडिसिन ए वे फॉरवर्ड के मौजू पर दो रोज़ा CME का आगाज हुआ. इस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम के दौरान माहरीन मुख्तलिफ अमराज की तशखीस और इलाज में न्यूक्लियर मेडिसिन की अहमियत उजागर करेंगे. इस बारे में सिकिम्स के न्यूक्लियर मेडिसिन शोबे के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर अहमद राथर ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया.
2: इसका मकसद ये है कि जो हम इस वक्त कुछ टेस्ट या कुछ इन्वेस्टिगेशन या कुछ थेरेपीज जो हम इस वक्त नहीं कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर में करने का इरादा है, अपने आप को हम एड्रेस कर लें कि इसका फायदा क्या है, उसके टेक्निक्स क्या है. इसलिए हमने मुल्क के बेशतर बड़े लीडिंग इंस्टीट्यूट से लाइक AIIMS, PGI, जसलोक हॉस्पिटल, RMC से एक्सपर्ट्स को लाया जिनको अब ये एक्सपीरियंस थी कि ये ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और ये स्कैनिंग कैसे करते हैं. हमने क्योंकि हमारा इरादा है आगे जाके हम भी ये कर लेंगे, तो हमने चाहा कि इस पे एक CME किया जाए ताकि अपने आप को एब्रेस्ट किया जाए.
1: साहित्य एकेडमी की तरफ से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपुर में कश्मीर की मारूफ शायरा हबा खातून से मुतालिक एक सेमिनार मुनक्किद किया गया. सेमिनार में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शां अंद्राबी ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की. अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि हबा खातून ने अपनी शायरी में सिर्फ अपने दिल की ही बात नहीं कही है बल्कि उन्होंने वादी के खवातीन तबके की कुव्वत का भी वाज ऐलान किया है.
3: हबा खातून की हयात जिंदगी पे आज सब बात कर रहे हैं. ये बड़ी बात है कि हम अपने जो हमारे कश्मीरी जुबान के अदीब हैं उनको याद करें और जो उन्होंने रोल अदा किया है, खासकर निस्वानियत जो आवाज थी हबा खातून की, वो आज नए जनरेशन को बोली जाए, बताई जाए, उनके सिलेबस में शामिल हो ताकि हम ये लेगेसी आगे बढ़ाएं. तभी तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को अपने जो रूट्स हैं, जैसे खासकर हमारी हबा खातून, लला आरिफ, ये हमारे ऐसे लीजेंड हैं, अगर हमारी आज की जनरेशन इससे नावाकिफ रही तो बहुत नुकसान होगा.
1: अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर गजहरा अजहर ने कहा,
4: हमारा ये मकसद था कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनको पता चल जाए कि ये पामपुर की सरजमीन जो है ये कोई आम सरजमीन नहीं है. यहाँ पर सबसे जो कदावर शायरा पैदा हुई है हबा खातून, तो वो इसी सरजमीन की पैदावार. और मैं चाहूंगी कि जो हमारे यहाँ पर डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी मैम आई हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, इल्तिजा करूंगी कि इस कॉलेज को सी हबा खातून सीट बनाए ताकि यहाँ पर लोग दूर दूर से आए और हबा खातून पर रिसर्च.
1: सेमिनार में नामवर कलमकार मोहम्मद यूसुफ टेंग, प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुर्दा और अदबी मरकज़ कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने भी शिरकत की. बांडीपुरा ज़िले के हाजिन इलाके में आज 3 नौजवान घर के आब होने के नतीजे में जहां भाग हो गए. हमारे नुमाइंदे आदिल इस्माइल ने खबर दी है कि दरियाए जहलम के किनारे पर टेंट धोने के दौरान एक नौजवान अपना तवाज़ुन खो बैठा, जिसको बचाने के लिए दीगर 2 नौजवान दरिया में कूद पड़े. घर के आब होने हुए इन 3 नौजवानों की शिनाख्त 22 साल सुहेल अहमद डार, 18 साल आदिल अहमद डार और समीर अहमद डार के बतौर हुई है. लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस वाक्य पर सख्त सदमे और अफसोस का इजहार किया है. अपने एक ताज़ियती पैगाम में उन्होंने सोगवार कुंभों के साथ ज़ाती हमदर्दी का इजहार किया है. वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हाजिन में पेश आए इस दिलदोज सानहे पर सख्त अफसोस का इजहार किया है. उन्होंने इस वाक्य को बदकिस्मती से ताबीर करते हुए सोगवार कुंभों के साथ ताज़ियत की है. MLA सोनावारी हिलाल अकबर लोन ने भी हाजिन में 3 नौजवानों के घर का होने पर अफसोस का इजहार किया है. नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी हाजिन में पेश आए वाक्य पर अफसोस का इजहार करते हुए गमजदा कुंबों के साथ हमदर्दी जाहिर की है. आज रेड क्रॉस का आलमी दिन है. ये दिन इंसानियत, गैर जानबदारी, रजाकाराना खिदमात, यकजहती, आफाकियत और हमदर्दी जैसे अकदार की पासदारी को यकीनी बनाने के लिए मनाया जाता है. रेड क्रॉस के आलमी दिन के मौके पर आर्मी

0: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: वादी की आवाज। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश होता है।

को मजीद नहीं बढ़ाएंगे और जामिया हल तलाश करेंगे। गुज़श्त हफ्ते किए गए हमले इन मुज़ाकरात के बाद पहले बड़े हमले थे, जो इस बात को जाहिर करते हैं कि आलमी बरादरी की सालसी में होने वाली पाक अफगान अमन कोशें कितनी नाजुक हैं। चीन के अलावा तुर्की, कतर, मुत्तहिद अरब अमारात और सऊदी अरब भी मुख्तलिफ औकात में दोनों ममालिक के दरमियान सालसी में शामिल रहे हैं। अफगान और पाकिस्तानी हुकाम ने अप्रैल के अवाइल में इस बात पर इत्तेफाक किया था कि वह अपने तनाज़े को मजीद नहीं बढ़ाएंगे और जामिया हल तलाश करेंगे, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। सभी दोनों ममालिक के माबैन लड़ाई बड़ी हद तक मार्च में कम हो गई थी, जब दोनों हमसायों ने ईद उल फितर के मौके पर आर्जी फायरबंदी का ऐलान किया था। यह फायरबंदी 17 मार्च को काबुल में मंशियात के मरीजों के इलाज के एक मरकज पर होने वाले फजाई हमले के बाद हुई थी, जिसके बारे में अफगानिस्तान का कहना था कि इसमें 400 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। पाकिस्तान ने तहम तब भी शहरी तनसीबात को निशाना बनाने की तरदीद की थी और इन हलाकतों की तादाद से शदीद इख्तलाफ किया था। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता है कि वह अपने यहाँ जंगजुओं और ख़ास तौर पर तहरीकी तालिबान पाकिस्तान TTP के अस्करियत पसंदों को पना देता है, जो पाकिस्तान के अंदर मुहलिक हमले करते हैं। पाकिस्तानी तालिबान का ये कलदम ग्रुप उस अफगान तालिबान तहरीक से अलग लेकिन इसका इत्तेहादी है, जिसने 2021 में अमरीकी क़यादत में खैर मुल्क अफवाज के इनखला के बाद अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाल लिया था। काबुल इन इल्ज़ामात की तरदीद करता है कि वो पाकिस्तान दुश्मन अस्करियत पसंदों को अपने यहाँ पना देता है। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मत्तकी ने वज़ारत ख़ारजा के इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमेसी में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा था कि दोनों मालिक के दरमियान मसाइल बहुत हसास नवियत के हैं। इस माह के अवाइल में अफगानिस्तान में अक़्वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी अमूर के मुताबिक इस तनाज़े के बाइस मजमूई तौर पर 94,000 अफराद बेघर हो चुके हैं। समीन प्रोग्राम में आपसे करेंगे और भी बातें। आज जुमतुल मुबारक है, पहले फैज़ याब होते हैं इस नाते शरीफ से।

वादी की आवाज़ इस वक्त आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। समीन, पाकिस्तान की तालीमी कहानी गफलत की नहीं बल्कि अधूरे मंसूबों और टूटे हुए ख्वाबों की एक तवील दास्तान है। क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक जितने मॉडल तालीमी मंसूबे शुरू किए गए और जितनी इस्लाहत का शोर मचाया गया, शायद ही दूसरे किसी मुल्क में इसकी मिसाल मिले। मगर तलख हकीकत यह है कि 7 दहाइयों बाद भी पाकिस्तानी वही खड़े हैं जहां से चले थे। आज भी करोड़ों बच्चे वहां स्कूलों से बाहर हैं और जो स्कूलों में हैं उनमें से 5वीं जमात के तकरीबन निसफ तलबा 2री जमात का सादा मतन भी रवानी से नहीं पढ़ सकते। पाकिस्तान की तालीमी तारीख एक वाजिया और मायूस कुन पैटर्न दिखाती है। वो लोग बड़े जोश व खरोश से इदारे कायम करते हैं, बैनुल अक्वामी इमदाद से इमारतें और सहूलियात फराहम करते हैं, मगर चंद साल बाद उन्हें अपनी ही बेतवज्जुही के हवाले कर देते हैं। कुछ अरसे बाद इन्हीं इदारों को नई इस्लाहत के नाम पर दोबारा जिंदा करने की नाकाम कोशिश की जाती है। यही वजह है कि मॉडल स्कूल रफ्ता रफ्ता आम और खस्ताहाल सरकारी स्कूलों में बदल जाते हैं। ये महज इंतजामी नाकामी नहीं बल्कि एक कौमी अलमिया है। समीन, 1950 की दहाई में वहाँ टेक्निकल हाई स्कूलों का तज्जिया उसी विजन के तहत किया गया था कि नौ आबादियाती बाबू कल्चर को खत्म करके हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत तैयार की जाए। प्लान के तहत कायम उन इदारों में जदीद वर्कशॉप्स, तरबियत याफ्ता असातिज़ा और अमली तालीम का मजबूत निज़ाम मौजूद था, मगर 2 दहाइयों में ये मॉडल दम तोड़ गया। इसकी बुनियादी वजह वहाँ माशरती रवैया था, जहाँ फनी तालीम को रिवायती तालीम से कमतर समझा गया। मुतवस्त तबका सफेद पोशी की अलामत डिग्रियों के पीछे भागता रहा, जबकि सन्नत से अदम दिलचस्पी के बाइस तलबा बेरोजगार होते गए। जैसे ही बिरूनी इमदाद खत्म हुई, ये इदारे भी जवाल का शिकार हो गए। इस तजुर्बे ने वहाँ वाजिया किया कि तालीमी निज़ाम सिर्फ इमारतों से नहीं बल्कि मार्केट और माशरती अकदार से जुड़ा होता है। 1960 की दहाई में शरीफ कमीशन की सिफारिशात पर कॉम्प्रहेंसिव हाई स्कूल्स का तस्वीर पेश किया गया, जहां साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स को एक ही छत तले लाया गया। ये एक जदीद और हमजुहत तस्वीर था, मगर रिवायती इम्तिहानी निज़ाम और रट्टा कल्चर ने वहां इसे नाकाम बना दिया। जब कामयाबी का मियार महज यादाश्त रह जाए तो अमली और तख्लीकी तालीम भोज बन जाती है। नतीजतन कॉम्प्रहेंसिव का तस्वीर सिर्फ नाम तक महदूद होकर रह गया। इसी तरह लाहौर

वादी की आवाज़ इस वक्त आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। समीन, मशरक़ी वस्ता के बहरान के सबब तेल की मुसलसल बढ़ती आलमी कीमतें पाकिस्तानी ज़र मुबादला पर भारी बोझ साबित हो रही हैं। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त ऐसे दौराहे पर खड़ी है जहां आलमी हालात का मुकाबला करते हुए मालियाती तवाजुन और अवामी फलाह का तहफ़ एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। इन हालात में बढ़ता टैक्स का सारा हुकूमत के लिए दोहरा इम्तिहान साबित हो रहा है। रवा माली साल के 10 माह के दौरान फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को तकरीबन 700 अरब रुपए के टैक्स खसारे का सामना है, जो माशी हिकमत अमली और टैक्स वसूली के निज़ाम पर बड़ा सवालिया निशान है। समीन, ये सूरत हाल उस गहरे स्ट्रक्चरल बहरान को मजीद नुमाया करती है जिसमें पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम दहाइयों से जुड़ा हुआ है। रवा माली साल के बजट में FBR महसूलात का मजमूई हदफ 14,131 अरब रुपये मुकर्रर किया गया था। गुज़श्त बरस दिसंबर में इस हदफ को कम करके 13,979 अरब रुपये मुकर्रर किया गया, जबकि इमसाल मार्च में IMF के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात में इस हदफ को दोबारा कम करते हुए 13,450 अरब रुपये रखा गया, मगर ये भी पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। जुलाई से अप्रैल 10 माह के दौरान 10,910 अरब रुपये का टैक्स हदफ मुकर्रर था, मगर अब तक तकरीबन 10,200 अरब रुपये ही जमा हो सका है। समीन, ये एक तलख हकीकत है कि पाकिस्तान में टैक्स वसूली का निज़ाम मुनसिफाना नहीं। जब हुकूमती अखराजात और टैक्स अहदाफ पूरे करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी और दीगर टैक्सों में इजाफा किया जाता है तो उसका बराह रास्त असर आम आदमी पर पड़ता है, जबकि महंगाई की ऐसी लहर उठती है जिसमें सबसे ज़्यादा वही तबका पिसता है जो कि सबसे कम हैसियत का हामिल हो। यह बिलवास्ते टैक्सों का ही नतीजा है कि आज पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें तारीखी बुलंदतरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं, जिसने महंगाई का तूफान खड़ा किया है। पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम पर मुसलसल तशवीश का इजहार करते हुए IMF का ये मौकिफ रिकॉर्ड पर है कि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम इंतहाई पेचीदा, गैर मुनसिफाना और मुराद याफ्ता तबके को ज़्यादा तहफ़ देने वाला है। आलमी इदारों की जानिब से बारहा ये तजवीज़ दी गई है कि पेट्रोल और बिजली पर बिलवास्ता टैक्स बढ़ाने के बजाय हुकूमत वहाँ के दौलतमंद तबके को टैक्स नेट में लाए और टैक्स चोरी को रोकने के लिए सख्त इंतजामी इकदाम किए जाएँ। मुसलसल बढ़ता टैक्स खसारा इस बात का भी इशारा है कि आवाम और कारोबारी तबके की क़ुव्वत खरीद अब जवाब दे चुकी है। अगर अब भी वहाँ बिलवास्ता टैक्सों और लेवी जैसे सहारों से मईशत को चलाने की कोशिश की गई तो न सिर्फ पाकिस्तान में माशी बहरान बढ़ेगा बल्कि बिलवास्ता टैक्सों का बोझ भी अवामी गुस्से और समाजी इज़्तिराब को भी हवा देगा। समझिए चंद बातें पाकिस्तान में माशी बहरान के हवाले से। आइए प्रोग्राम के आखिर पर इस नातिया कलाम से फैज़याब हो जाते हैं।

0: समीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का जो वक्त है अपने अख्ताम को पहुंचता है। मेज़बान को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। आप खुश रहिए, सलामत रहिए, खुदा हाफिज़।
1: वादी की आवाज़। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश होता है।

0: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: आकाशवाणी का ये श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर रात के 8:30 हुए हैं। पेश खिदमत है खेलों से मुतलिक प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम।
2: स्पोर्ट्स टाइम लेकर हम हाजिर। आगाज में अहम खेल खबरों पर एक नज़र। आईपीएल, सनराइजर्स हैदराबाद से हारने के बाद पंजाब किंग्स को बिलाखिर पॉइंट्स टेबल की पहली पोजीशन से हटना पड़ा। पंजाब किंग्स पिछले 25 दिन से पॉइंट्स टेबल पर मुसलसल पहली पोजीशन पर कायम थी, तहम पिछले बुधवार को खेले गए एक अहम मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को हरा कर मौजूदा सीजन में ये पोजीशन पहली बार हासिल की। इस मुकाबले में दरअसल सनराइजर्स हैदराबाद ने बेहद शानदार बल्लेबाजी के बायस पंजाब किंग्स को हरा दिया। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासन और ईशान किशन की बेहद एक्सप्लोजिव बल्लेबाजी के बायस सनराइजर्स हैदराबाद ने महज 4 विकेटों के नुकसान पर 235 रनों का एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया। अगरचे किसी भी टीम के लिए इतना बड़ा टारगेट हासिल करना बेहद मुश्किल होता है, तहम पंजाब किंग्स के पास एक ऐसी बैटिंग लाइन अब जरूर मौजूद है जो इस टारगेट को हुसूल कर सकती है। लेकिन ये मुसलसल तीसरा मौका था जब पंजाब किंग्स को एक और क्लब से 2-4 होना पड़ा। महज 23 रन के मजमूई स्कोर पर इसने अपने इब्तदाई 3 इनफॉर्म बल्लेबाज गंवा दिए। हालांकि ऑस्ट्रेलियन सेंसेशन कूपर कॉनले ने महज 69 गेंदों पर 107 रन बनाकर टीम को मैच में बनाए रखा, तहम उनकी इनिंग्स पंजाब किंग्स को कोलैप्स से बाहर निकालने और 200 रनों का हिंसा अबूर करने के लिए ही मावन साबित हुई। इब्तदाई 7 मुकाबलों में नाकाम रहने के बाद पिछले 3 मुकाबलों में पंजाब किंग्स की ये मुसलसल तीसरी हार थी। पंजाब किंग्स का बल्लेबाजी में कोलैप्स से 2-4 होना और नाकस फील्डिंग का सिलसिला इस मुकाबले में भी देखने को मिला। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कप्तान पैट कमिंस ने एक मरतबा फिर जीत में कलीदी रोल अदा किया। उन्होंने इस हाई स्कोरिंग मुकाबले में महज 34 रन के एवज 2 खिलाड़ियों को आउट किया। दरअसल पैट कमिंस की क्यादत और उनकी गेंदबाजी ने सनराइजर्स हैदराबाद को एक उम्दा बैलेंस फराहम किया है। इंजरी के बायस पैट कमिंस इब्तदाई 6 मुकाबले नहीं खेल पाए थे। इस दौरान इब्तदाई 4 मुकाबलों में सनराइजर्स हैदराबाद को महज 1 कामयाबी मिली, तहम अगले 5 मुकाबलों में इसने मोमेंटम कायम करके मुसलसल कामयाबियां हासिल की, जिसमें पैट कमिंस की क्यादत और गेंदबाजी का एक अहम किरदार रहा, जिसके बायस अब सनराइजर्स हैदराबाद पॉइंट्स टेबल की पहली पोजिशन पर पहुँचने में कामयाब हुई। आईपीएल में पॉइंट्स टेबल के तनाजुर में देखा जाए तो कल एक अहम नतीजा सामने आया जब आखिरी नंबर की टीम ने टेबल पर विराजमान एक टॉप टीम को हरा दिया। ये मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के माबैन खेला गया। इस मैच से कबल लखनऊ सुपर जायंट्स ने 9 में से महज 2 मुकाबले जीते थे और वो आखिरी पोजिशन पर थी, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ये मुकाबला जीतकर पहली पोजिशन हासिल कर सकती थी, तहम इसके लिए वो लखनऊ सुपर

0: सर्जेंट्स को जेर न कर सकी। इस बेहद सनसनीखेज मुकाबले में लखनऊ सुपरजेंट्स ने डकवर्थ लुईस मेथड के जरिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रनों से हरा दिया। दरअसल ये मुकाबला भी एक और ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी मिच मार्च के नाम रहा, जिन्होंने 56 गेंदों पर 111 रन स्कोर किए। लखनऊ सुपरजेंट्स के लिए दूसरा बड़ा इनफरादी स्कोर महज 38 रनों का था। मिच मार्च की सेंचुरी के बायस लखनऊ सुपरजेंट्स ने 19 ओवरों में 209 रन स्कोर किए। महज 9 रनों के मजमूई स्कोर पर जैकॉब बैटल और विराट कोहली की विकेटें गंवाने के बाद आरसीबी के लिए ये टारगेट और भी मुश्किल हो गया। इस हार के बाद आरसीबी बदस्तूर तीसरी पोजीशन पर कायम रही, जबकि लखनऊ सुपरजेंट्स ने तीसरी जीत तो हासिल की, लेकिन वो अपनी पोजीशन पर बदस्तूर कायम है। दीगर चंद एक खेल खबरों पर आगे नजर डालेंगे। पहले बात वर्ल्ड कप फुटबॉल 2026 के तनाजुर में, जो कि अब से करीबन एक महीने के बाद जून की 12 तारीख से शुरू हो रहा है। इस हवाले से हमने चंद एक ऐसे फुटबॉलर्स को याद करने की कोशिश की है जिन्हें वर्ल्ड कप फुटबॉल ने एक अलग मकाम और हैसियत अता की, और जो वर्ल्ड कप फुटबॉल में अपनी एक अलग तारीख लिखने में कामयाब हुए। आज के प्रोग्राम में हमारे साथी जावेद परे बात कर रहे हैं दुनियाई फुटबॉल के एक अजीम या शायद सबसे अजीम खिलाड़ी पेले के बारे में, वर्ल्ड कप के तनाजुर में।
1: मेरे वालिद मुझे हमेशा कहा करते थे कि फुटबॉल कुदरत का दिया हुआ एक तोहफा है, आपको हमेशा चुस्त चौबन रहना है, अपने हरीफों की इज्जत करनी है, और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप एक अजीम फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ये उस अजीम फुटबॉलर की बात है जिन्हें आप, हम और पूरी दुनिया एडिसन एरेंटस डो नेसिमेंटो या पेले के नाम से जानती है। पेले सिर्फ एक फुटबॉलर ही नहीं बल्कि इससे बढ़कर भी और बहुत कुछ हैं। उनके बारे में माइकल प्लेटिनी कहते हैं, टू प्ले लाइक पेले इज टू प्ले लाइक गॉड। इंग्लिश फुटबॉलर बॉबी चार्ल्टन इस अजीम सुपरस्टार के बारे में कहते हैं, समटाइम्स आई फील एज दो फुटबॉल वॉज इन्वेंटेड फॉर दिस मैजिकल प्लेयर। आज से तकरीबन 70 साल पहले पेले के फुटबॉल की एक लंबी दास्तान शुरू होती है। इसी सेंटोस शहर से पेले ने फुटबॉल में अरूज हासिल करना शुरू किया और रफ्ता रफ्ता उनकी शोहरत के चर्चे ब्राज़ील से बहुत दूर यूरोप, एशिया और अफ्रीका में होने लगे। सेंटोस में आप आज भी जाएंगे तो ऐसा नामुमकिन है कि पेले के नकूश और उनके असरात नहीं पाएंगे। उस दौर में पेले ब्राज़ील की कामयाबी की अलामत समझे जाते थे, उन्हें वहां के सदर की तरफ से कौमी असासा करार दिया गया, लिहाजा वो सिर्फ और सिर्फ ब्राज़ील की तरफ से खेल सकते थे। यूरोप के सारे बड़े क्लब्स की ख्वाहिश और हसरत थी कि काश उनकी टीम में पेले खेलते, लेकिन ब्राज़ीलियन हुकूमत ने सरकारी हुक्मनामा जारी करके इन सब क्लब्स की इस तमन्ना को मिट्टी में मिला दिया। फुटबॉल पेले की रग रग और नस नस में बसी थी, उनकी माँ भी उन्हें डॉक्टर या उस्ताद के रूप में देखना चाहती थी, लेकिन पेले को फुटबॉल के अलावा कहाँ कुछ रास आता था। 1950 के आलमी कप फुटबॉल फाइनल में ब्राज़ील को अपने ही मुल्क में यूरुग्वे के हाथों शिकस्त हुई तो पूरे ब्राज़ील में मातम छा गया। पेले 10 साल के थे, उन्होंने देखा कि उनके वालिद जार जार रो रहे थे। मासूम अंदाज में उन्होंने अपने वालिद से रोने की वजह पूछी तो उनके वालिद ने उन्हें बताया कि ब्राज़ील की टीम वर्ल्ड कप हार गई है। पेले ने मजाकिया अंदाज में अपने वालिद से कहा कि वो उनके लिए वर्ल्ड कप जीत कर लाएंगे। 10 साल के पेले तब खुद भी नहीं जानते थे कि महज 8 साल बाद वो ये काम करके दिखाएंगे। 1958 के स्वीडन में मुनक़दा वर्ल्ड कप के लिए जब 17 साल के पेले को ब्राज़ीलियन टीम के लिए चुना गया तब खुद पेले टीम में उनकी सिलेक्शन पर हसरत ज़दा थे, क्योंकि अभी तो वो सेंटोस क्लब के भी मुस्तकिल रुकन ना थे। स्वीडन पहुंचे तो इब्तदा में ही 17 साल के खिलाड़ी जख्मी हो गए और इब्तदाई दोनों मैच न खेल सके, लेकिन सोवियत यूनियन के खिलाफ मैच में पेले ने जो खेल दिखाया उसकी लेवल कुछ और ही थी। जूं जूं 1958 का वो वर्ल्ड कप आगे बढ़ता गया, पेले का मकाम और मर्तबा और ज्यादा बुलंद होता गया। क्वार्टर फाइनल में पेले ने वेल्स के खिलाफ जो गोल स्कोर किया

0: वो उस सदी के बेहतरीन गोलों में एक था। उसके बाद फ्रांस के खिलाफ सेमीफाइनल में 17 साल के इस खिलाड़ी ने गोल्स की हैट्रिक बना दी। फिर फाइनल में मेजबान स्वीडन को 5-2 से हराकर वो सबसे छोटी उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बने। ब्राजील के 5 गोलों में 2 इसी खिलाड़ी ने स्कोर किए। वर्ल्ड कप खेलने के लिए जब पेले ने स्वीडन की राह ली थी तब उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन वर्ल्ड कप मुकम्मल होने के बाद महज 1 माह के अंदर अंदर वो पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गए। 4 साल बाद ब्राजीलियन टीम वर्ल्ड कप के लिए जब चिली पहुंची तो इस टीम के मरकजी किरदार पेले ही थे। मैक्सिको के खिलाफ पहले ही मैच में उन्होंने दिखा दिया कि वो सबके चहेते और सबके दिलों की धड़कन क्यों हैं, लेकिन दूसरे ही मैच में जख्मी होकर पहले पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए। तमाम उनकी छत्र छाया में रहकर ब्राजीलियन टीम ने इस वर्ल्ड कप में भी खिताब अपने नाम कर दिया। अब पुर्तगाल के खिलाफ मैच ब्राजील के लिए डू और डाई वाला मुकाबला था। मैच में पुर्तगाल ने ब्राजील को 3-1 से हरा दिया और 1958 और 1962 की चैंपियन ब्राजीलियन टीम पहले ही राउंड में वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। उन्होंने फैसला किया कि वो ब्राजीलियन टीम को हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कह देंगे, लेकिन 1969 में उन्हें फिर से ब्राजीलियन टीम के लिए चुना गया। 1970 का मेक्सिको में मुनाकदा आलमी कप, उस वर्ल्ड कप में ब्राजीलियन टीम के कायद कार्लोस एल्बोटो पेले के बारे में कहते हैं, और मुझे लगता है कि वो जानते थे कि ये उनका आखिरी आलमी कप है। खुद पहले उस वर्ल्ड कप के हवाले से कहते हैं, वी हैड अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड टीम, वी प्लेड विद सेम टीम थ्रू आउट दी क्वालिफाइंग गेम्स। ब्राजील ने पहले के उम्दा खेल के सबब पहले ही मैच में चेकोस्लोवाकिया को 4-1 से हराया। फिर इंग्लैंड, रोमानिया, पेरू सबको मात देकर टीम सेमीफाइनल में पहुंची। यहां टीम ने यूरुग्वे को 3-1 से हराकर 1950 के फाइनल की हार का बदला चुका दिया। अब फाइनल में ब्राजील के सामने इटली की टीम थी। खेल शुरू हुआ तो पहला गोल हेडर के जरिए पेले ने ही किया। पेले कहते हैं कि उनके पहले वर्ल्ड कप फाइनल में स्वीडन के खिलाफ उन्होंने पहला गोल हेडर के जरिए किया था, और अब आखिरी वर्ल्ड कप में भी पहला गोल मैंने हेडर के जरिए ही दागा। कार्लोस एल्बोटो ने ब्राजील के लिए जो चौथा गोल किया वो भी पेले के ही खूबसूरत पास पर स्कोर किया। यूं पहले की ब्राजीलियन टीम ने तीसरी मर्तबा वर्ल्ड कप हासिल किया। पहले उस कामयाबी को याद करते हुए कहते हैं, देयर इज नो डाउट इट वाज द वर्ल्ड कप ऑफ माय लाइफ। आई हैड माय सेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर इट वेरी वेल। इट वाज माय बेस्ट वर्ल्ड कप अनडाउटली। इट वाज माय फेयरवेल एंड आई थैंक गॉड फॉर इट। इस कामयाबी के 1 साल बाद पहले ने इंटरनेशनल फुटबॉल को खैरबाद कह दिया, और यूं उस खिलाड़ी का करियर इख्तिताम पजीर हुआ जिसने ब्राजील को 3 वर्ल्ड कप दिला दिए।
1: इधर बांग्लादेश और पाकिस्तान के माबेन टेस्ट सीरीज का आगाज आज से हो गया। बांग्लादेश में मुनक्द सीरीज में 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। पहले टेस्ट में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। बांग्लादेश की शुरुआत बेहतर न रही, इसने महज 31 रन के मजमूई स्कोर पर अपने दोनों इब्तदाई बल्लेबाज गंवा दिए। जख्मी होने के बाद पाकिस्तानी टीम में बाबर आजम मौजूद नहीं है, जबकि पाकिस्तान ने 2 लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजों को इस मुकाबले में डेब्यू कराया है। ये 2 खिलाड़ी हैं ओपनिंग बल्लेबाज आजान उवैस और मिडल ऑर्डर बल्लेबाज अब्दुल्ला फजल, जबकि एक लंबे अरसे के बाद गेंदबाज मोहम्मद अब्बास की टीम में वापसी हुई है। वाज़ह रहे कि दोनों टीमों के माबैन इससे कबल 2024 में टेस्ट सीरीज खेली गई थी। 2 मैचों पर मुश्तमिल ये सीरीज पाकिस्तान में मुनक़िद हुई थी, जिसमें पाकिस्तान को 0-0 में 2 मैचों से वाइट वॉश का सामना करना पड़ा था। भारत की खवातीन आर्चरी टीम ने पावर हाउस तस्वूर की जाने वाली जनूबी कोरिया की टीम को आर्चरी वर्ल्ड कप में हराकर फाइनल में रसाई हासिल की है। भारत की रिकर्व आर्चरी टीम में दीपिका कामनी, अंकिता बख्त और कुमकुम महूत शामिल हैं। चीन के शहर शंघाई में मुनक़िद इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत ने जनूबी कोरिया की टीम को 5-1 से हरा दिया। वाज़ह रहे कि जनूबी कोरिया की आर्चरी खवातीन टीमें ओलंपिक खेलों में मुतअद्दिद बार गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी हैं। फाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला इतवार के रोज चीन की टीम के खिलाफ होगा। और अब चंद एक मकामी खेल सरगर्मियों पर एक नज़र। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स J&K की जानिब से।

0: आर्चरी एंड फेंसिंग की कॉम्पिटिशन्स और सिलेक्शन ट्रायल्स का अफ्ताह किया गया। यूथ हॉस्टल वजीरबाग श्रीनगर में मुनक़द इस इवेंट में अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 कैटेगरीज में तुलबा शिरकत करेंगे। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के बयान के मुताबिक इस इवेंट का अफ्ताह डायरेक्टर जनरल अनुराधा गुप्ता ने किया। बयान के मुताबिक नशा मुक्त जैंड के अभियान के तहत ये इवेंट मुनक़द किया गया। जम्मू कश्मीर के रजौरी जिले से ताल्लुक रखने वाले बॉक्सर मोहम्मद यासिर अंडर 14 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। कजाकिस्तान के बॉक्सर के खिलाफ कामयाबी हासिल करने के बाद मोहम्मद यासिर सेमीफाइनल में रसाई हासिल करने में कामयाब हुए, जिसका मतलब यह है कि वो कम से कम ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। सेमीफाइनल में मोहम्मद यासिर का मुकाबला ईरान के बॉक्सर के साथ होगा। ये मुकाबला इस महीने की 10 तारीख को खेला जा रहा है। आज की स्पोर्ट्स टाइम से हमें यहीं पे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। स्पोर्ट्स टाइम।
1: अभी आप खेलों से मुतल्लिक प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे, स्पोर्ट्स टाइम। मेजबान थे एजाज नाज़की। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं वसीम फारूक।

0: आकाशवाणी का ये श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में रात के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले करेंगे। रिले का थोड़ा सा इंतजार कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय

0: के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहां राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही काल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहां तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी।
1: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
2: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला

0: ग्लाइड हथियार है, एक रिपोर्ट।
1: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
2: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट था, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
3: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को LPG सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल LPG की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिडाड टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिडाड टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
4: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू के चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ

0: जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकार ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर ₹94.48 के स्तर पर बंद हुआ।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC Under-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, VCK, IUML और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव 268.1 मीटर और FM 103.5 MHz पर। रात के 9 बज चुके हैं। समय ये वक्त है आपको चंद फिल्मी नगमे सुनवाने का, तो आइए आगाज में सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में सदा बंद किया गया नगमा। फिल्म है दिल ने फिर याद किया, गीतकार हैं जी एस रावल और मौसीकार सोनिक ओमी।

आपने प्रेम पुजारी फिल्म से नगमा सुना किशोर कुमार की आवाज में। आकाशवाणी का ये श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव 268.1 मीटर और FM 103.5 MHz पर। सभी मोहतरम 9:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हम आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू में खबरें रिले करेंगे। खबरों का थोड़ा सा इंतजार कीजिए।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। शुभेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी के वजीर आला होंगे। हलफ बरदारी की तकरीब कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी। टीवीके के सरबरा सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत हासिल हो गई है। वो कल तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मुनशियात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। उसने रियासत की पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली और गैर कानूनी मुनशियात की तिजारत करने वाले बड़े ताजिरों को गिरफ्तार करने पर जोर दिया। भारत और सिंगापुर ने दहशतगर्दी से मुकाबला करने में मालूमात शेयरिंग को बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। और तीरंदाजी में सिमरनजीत कौर शंघाई में आलमी कप स्टेज टू में खवातीन के रिकर्व मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। सीनियर बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के नए वजीर आला होंगे। रियासत में बीजेपी कानून साज पार्टी में आज कोलकाता में मुनाकिदा एक मीटिंग में उन्हें लीडर मुंतखब किया गया, जिसके साथ ही रियासत के पहले बीजेपी के वजीर आला बनने के लिए उनकी राह हमवार हो गई है। मीडिया से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मीटिंग में जनाब अधिकारी के नाम की तजवीज रखी गई और चूंकि कोई दूसरा नाम सामने नहीं आया, इसलिए उनके नाम को हतमी तौर पर मंजूर कर लिया गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: कल सुबह सरकार की हलफबरदारी की तकरीब ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनाकिद की जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ साथ मरकजी वज़रा और बीजेपी के ज़ेर इक़्तदार रियासतों से बहुत से वजीर आला इस तकरीब में शिरकत करेंगे। चूंकि ये तकरीब रविंद्र जयंती के मौके पर मुनाकिद की जा रही है, इसलिए सकाफती परफॉर्मेंसेस भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आज शुभेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी का कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया है। वो मगरबी बंगाल के अगले वजीर आला होंगे। अधिकारी ने ममता बनर्जी को भवनीपुर में शिकस्त दी है। आज मरकजी वजीर दाखला अमित शाह की सदारत में कोलकाता में हुई

0: एक मीटिंग में जिसमें बीजेपी के सभी मुंतखब अराकीन असेंबली ने शिरकत की, अधिकारी को लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मगरबी बंगाल की आवाम ने तृणमूल कांग्रेस के जरिए पैदा करदा डर और खौफ के माहौल के खिलाफ अपना मैंडेट दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हुकूमत तश्कील देने के बाद कमेटियां तश्कील दी जाएंगी जो आरजी कर और संदेश खली मामलात की छानबीन करेंगी। उन्होंने मजीद कहा कि दराजाती बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ भी छानबीन की जाएगी। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
1: तमिलनाडु में तमिज़गा वेतरी कज़गम टीवी के सी जोसेफ विजय को कल सुबह 11 बजे तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। इससे कबल आज टीवी के चीफ ने गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर से मुलाकात की और इत्तेहादी पार्टियों की हिमायत के दस्तावेजात पेश करके सरकार तश्कील देने का दावा पेश किया। 4 मई को असेंबली इंतखाबात के नतीजे आने के बाद सी उनकी गवर्नर के साथ तीसरी मीटिंग थी। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके और आईयूएमएल ने टीवीके को अपनी हिमायत दी है। इसके साथ ही इत्तेहाद अब असेंबली में मतलूबा तादाद की हिमायत रखता है जो अक्सरियत से ज्यादा है। टीवीके के 107 अरकान कानून साज असेंबली हैं, अरकान कानून साज असेंबली हैं कांग्रेस के 5 जबकि वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम नेज आईयूएमएल के 2-2 अरकान कानून साज असेंबली हैं। टीवीके के सरबराह ने दावा किया कि अब उन्हें 120 अरकान कानून साज असेंबली की हिमायत हासिल है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आज टीवी के पार्टी के लिए एक बहुत अहम दिन था। हालांकि वो अक्सरियत के साथ सरकार तश्कील देने के लिए मतलूबा तादाद हासिल करने में कामयाब रही। टीवीके की हिमायत करने वाले अफराद सड़कों के दोनों अतराफ बड़ी तादाद में ढोल ताशे बजाकर अपने मनपसंद लीडर को देखने के लिए मौजूद थे। फिल्म सरकार ब्लॉकबस्टर के हीरो हलफ लेने के बाद रियासत के वजीर आला बन जाएंगे। नामजद वजीर आला सी जोसेफ विजय लाल तिलक लगाए हुए थे, नीले रंग की जीन्स पहने हुए थे और उन्होंने बाएं हाथ पर लाल धागा बांधा हुआ था। उनका यह रूप इससे कबल के वजीर आला के मुकाबले में कतई मुख्तलिफ है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
1: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मनशियात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। रियासत के जरिए मनशियात की रोकथाम कैसे की जाए, इस सिलसिले में अदालत ने बुनियादी तब्दीली लाने पर जोर दिया और कहा कि इंसानी अमवात की सूरत हाल तशवीशनाक है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची ने एक हालिया वाकये का हवाला दिया जिसमें एक मां ने अपने सभी 5 बच्चों को मनशियात की लत का शिकार होने के सबब खो दिया। बेंच ने कहा कि मनशियात की लानत इस हद पर पहुंच गई है कि जहां मरकजी हुकूमत की मदाखलत जरूरी हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रियासत और मरकजी एजेंसियों से मनशियात की लानत के मुकम्मल खात्मे के वाहिद मकसद के साथ काम करने के लिए कहा। बेंच ने पंजाब पुलिस की ये कहते हुए नुक्ताचीनी की कि वो शोहरत के लिए छोटे जराइम के मुर्तकिब अफराद को पकड़ने पर तवज्जो मरकूज कर रही है जबकि मुनशियात की नाजायज तिजारत करने वाले बड़े मुजरिम आजाद घूम रहे हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि मुल्क की बाख्तियारी और सलामती सरहदों की हिफाजत तक ही महदूद नहीं है बल्कि ये मौशरे, माहौलियात और शहरियों की सलामती से भी वाबस्ता है। नई दिल्ली में भारतीय फौज के साथ पहाड़ी इलाकों में बचाव कार्रवाई से मुतालिक मुहिम तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के 10 साल मुकम्मल होने की एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने जोर देकर कहा कि एक बाख्तियार भारत वो है जहां सरहदें महफूज हों, समाजी बिरादरियां पुरएतमाद हों और आफात के वक्त हरेक की जिंदगी की हिफाजत यकीनी हो। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि हिमालय जैसे हसास और दूरदराज खित्तों में तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू महज बचाव कार्रवाई तक महदूद नहीं है बल्कि मुल्क की मुसल्ला अफवाज, मकामी बिरादरियों के भरोसे और कौमी पायदारी के लिए एक मजबूत सुतून की हैसियत रखता है।
3: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है, आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। टीएमआर जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है, आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: हुकूमत ने कहा है कि मुल्क भर में घरेलू एलपीजी की सप्लाई मुस्तहकम है और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की जानिब से एलपीजी का जखीरा खत्म होने की कोई इत्तला नहीं है। नई दिल्ली में एक बैन वजारती मीटिंग में खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि हुकूमत की यह कोशिश है कि घरेलू सार्फीन को गैस की कोई किल्लत न पेश आए और मगरबी एशिया में बदलते हुए हालात के पेश नज़र कीमतें मुस्तहकम रहें। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 दिनों में 87 लाख गैस बुकिंग हुई जिनमें से 57 लाख गैस सिलेंडर सारिफीन तक पहुंचा दिए गए।

ये आकाशवाणी है। भारत और सिंगापुर ने अहम शराकतदारों के तौर पर दहशतगर्दी का मुकाबला करने में बाहमी ताउन की अहमियत पर जोर दिया है। भारत और सिंगापुर के दरमियान दहशतगर्दी और जराइम से मुकाबला करने से मुतालिक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की पांचवीं मीटिंग गुज़िश्ता रोज नई दिल्ली में मुनाक़िद हुई। मुश्तरका वर्किंग ग्रुप ने सरहद पार की दहशतगर्दी समेत हर तरह और हर शक्ल में दहशतगर्दी की मुकम्मल तौर पर और सख्ती के साथ मजम्मत की, नीज दहशतगर्दी के तई सिफर बर्दाश्त के उसूल का एआदा किया। JWG ने दहशतगर्दों और अक़वाम मुत्तहदा सलामती कौंसिल 1267 पाबंदियों की कमेटी के जरिए करार दिए गए दहशतगर्दी के ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करने में तआवुन पर तबादला ख्याल किया। उसने सरहद पार के खतरों का बरवक्त और मौसर तौर पर जवाब देने के लिए कार्रवाई में इजाफा करने की गरज से मालूमात शेयरिंग को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत से भी इत्तेफाक किया। सोमनाथ मंदिर की तामीर नौ की 75वीं सालगिरह मनाने के लिए सोमनाथ अमृत पर्व मनाया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सोमनाथ के प्रभास पतन में इस महीने की 11 तारीख को सोमनाथ अमृत पर्व में शिरकत करेंगे। मीडिया से बात करते हुए गुजरात के वजीर जीतूभाई वाघानी ने कहा कि वजीर आजम त्रिवेणी हेलीपैड से वीर हमीरजी गोहिल के मुजस्मे तक 1 किलोमीटर तवील मेगा रोड शो की क्यादत करेंगे। वजीर आजम मोदी सोमनाथ मंदिर में कुंभ अभिषेक, ध्वज पूजा और महापूजा भी करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इतवार के रोज नई दिल्ली में मुमकिना सैलाब और गर्मी की लहर की सूरत हाल से निमटने के लिए मुल्क की तैयारी से मुतालिक एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे। यह आला सतही जायजा फाल हुकुमरानी, शहरियों पर मरकूज कुदरती आफात का बंदोबस्त और कुदरती आफात से मुकाबला करने वाले भारत की तामीर के तई हुकूमत के मुसम्मम अहद की अक्कासी करता है। मीटिंग के दौरान जनाब शाह मरकजी हुकूमत की एजेंसियों की तैयारी, पेश की वार्निंग निज़ाम, वसाइल की फरोख और बैन एजेंसी तालमेल का जायजा लेंगे ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई जान जाया ना हो और इमलाक को कम से कम नुकसान पहुंचे। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राममोहन नायडू ने इत्तला दी है कि एयर इंडिया की परवाज AL-171 के अलमनाक हादसे की हतमी तहकीकती रिपोर्ट आखिरी मराहिल में है और तवक्को है कि उसे 1 माह के अंदर जारी कर दिया जाएगा। आज गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में एयरक्राफ्ट सीजनिंग और फाइनेंसिंग समिट के मौके पर सहाफियों से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि तैयारा हादसे की तहकीकती एजेंसी मुकम्मल और शफाफ तहकीकत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत जारी की है कि कौमी तहकीकाती एजेंसी के जरिए छानबीन किए जा रहे मामलों से मुतालिक 10 से 15 जेरे इल्तवा मुकदमात को निपटाने के लिए कम से कम एक खसूसी अदालत कायम की जानी चाहिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची पर मुश्तमिल एक बेंच ने कहा कि ये खसूसी अदालतें 1 माह के अंदर कायम की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अजखुद नोटिस लेते हुए एक मुकदमे की समाअत के दौरान हिदायत जारी की कि इन खसूसी अदालतों को कोई और केस नहीं सौंपा जाएगा और मुकदमे की कार्रवाई यौमिया बुनियाद पर की जाएगी। मरकजी वजारत सेहत ने हंटा वायरस के मामलों के कम आलमी खतरे के जायजे के पेश नज़र एहतियाती निगरानी के इकदाम फाल कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक वजारत सेहत क्रूज शिप MV होंडियस पर हंटा वायरस इन्फेक्शन के रिपोर्ट शुदा मामलों से मुतालिक बदलती हुई सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। ये काम अमराज की रोकथाम से मुतालिक कौमी मरकजी NCDC इंटीग्रेटेड डिजीजेस सर्विलांस प्रोग्राम, सेहत की आलमी तंजीम WHO और सेहत के दीगर बैन अलाक़वामी सेहत हुकाम के तआवुन से किया जा रहा है। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में जमीनी वसाइल के महकमे की एक जायजा मीटिंग की सदारत की। डिजिटल इंडिया जमीनों के रिकॉर्ड की जदीदकारी के प्रोग्राम 3.0 की सूरत हाल का जायजा लेते हुए जनाब चौहान ने कहा कि जदीदकारी की काविशों को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि जमीन से मुतालिक खिदमात को शफाफ, मौसर और रुकावटों से पाक बनाकर शहरियों के साथ साथ महसूलाती हुकाम के लिए सहूलत का बाइस हों। उन्होंने वाजे किया कि मुजवजा अराजी की पैमाइश के इकदाम क़िता आराजी की फौरी और दुरुस्त कदर की तशखीस में सहूलत फराहम करेंगे जिससे बैंकों को कर्जों की मंजूरी के अवामिल को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत को महाराष्ट्र के झोंपड़पट्टी वाले इलाकों की बेहतरी, सफाई और बाजाबादकारी के एक्ट 1971 से मुतालिक कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए 4 हफ्ते के अंदर एक आला सतह की माहिरीन की कमेटी तशकील देने की हिदायत जारी की है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक कानून की

0: समिन तो इस हकनी सपनी नातिया कलाम बोजन पनकारस निर्जा मुंशी ते तीन सती
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
0: समीन नातिया कलाम हिंदी सिलसिल था जारी बोजो कला में अब्दुल हादन नदिम फनकार विजय कुमार मल्ला थे तीन सती

0: سمعين تو اسو کیا ناتیا کلام بوزن آخرس پر بوزو تو کلام ساحل کشمیری فنکار اس آرتی تی کو تو تین ساتھی یہ آکاش وانی سری نگر ہے، 11 بجنے والے ہیں، تھوڑی دیر میں ہم آکاش وانی دلی سے خبریں ریلے کریں گے۔
1: نمسکار، آکاش وانی سماچار کے ساتھ میں شکتی سنگھ۔ پشچم بنگال میں بھارتی جنتا پارٹی کے پہلے مکھیہ منتری شبھیندو ادھیکاری کل صبح کولکتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں شپتھ لیں گے۔ کولکتہ میں آج انہیں بھاجپا ودھائک دل کا نیتا چنا گیا۔ شری ادھیکاری راج کے پہلے بھاجپا مکھیہ منتری بنیں گے۔ گرہ منتری امت شاہ کی اپستھتی میں پارٹی ودھائک دل کی بیٹھک میں شری ادھیکاری کو نروروھ چنا گیا۔
2: لگ بھگ 8 پرستاو اور سمرتھن پراپت ہوئے ہیں اور سبھی پرستاو اور سمرتھن ایک ہی نام کے ملے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نام کے لیے بھی سب کو سمے دیا گیا، پریاپت سمے دیا گیا، مگر کوئی دوسرا نام نہیں آیا ہے۔ اس لیے کیندریہ پریویکشک کے روپ میں میں شری شبھیندو ادھیکاری جی کو پشچم بنگال ودھان منڈل دل کے نیتا کے روپ میں نرواچت گھوشت کرتا ہوں۔
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जाँच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जाँच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।

डॉक्टर इमरान नज़ीर के साथ गुफ्तगू होगी। मौजू है तीर नीरस तरावनुस दौरान एहतियात। आलत हज़रत फिल्म अपनी प्रोग्राम शहरबीन में शुरू का अपने मखसूस वक्त पर शाम 7 बजे, रात 8 बजे प्रोग्राम वादी की आवाज़ नशर होगा और ज़िलानामा नशर होगा रात 8:30 पर। इस बार ज़िलानामा में गांदरबल ज़िले से मुतलिक बात होगी। ये हैं हमारे कल नशर होने वाले चंद प्रोग्राम। ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। शब के 11:14:50 हुए हैं। हमारी आज की नशरियात अब बर्खास्त होती हैं। कल की नशरियात में सुबह 6:30 पर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। शब खैर। जय हिंद।

0: ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, ये कहता हुआ एग्जिट मार गया। पैनल पर जो प्रोड्यूसर बैठे थे उन्होंने कि लाइव प्ले चल रहा है, मैं क्या करूंगा। अचानक ही उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि मैंने गलत एग्जिट मार दी है, और जो व्यक्ति माइक्रोफोन पर खड़ा था वो भी सोचने लगा कि अब क्या किया जाएगा, क्योंकि आगे 3-4 पेज लंबा सीन था। अचानक जिन्होंने एग्जिट ली थी वो आए, अरे रामलाल जी वो मेरी कैप यहां रह गई, देखें कहां है। हाँ हाँ ये रखी है, इस कैप के बगैर मैं चल नहीं पाता। हाँ तो मैं कह रहा था कि जिस विषय पर हम बात कर रहे थे उस विषय में ये जोड़कर उन्होंने आगे का सीन शुरू कर दिया। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड हमें बताया भी जाता था, हम देखते भी थे कि आकाशवाणी के स्टूडियोज की कॉरिडोर में ब्रॉडकास्ट शुरू होने से पहले यानी 9 और 9:30 के बीच में कलाकार अपने हाथ में स्क्रिप्ट लेकर और पसीने आ रहे हैं और स्क्रिप्ट से मार्किंग करते करते करते करते चले जा रहे हैं और उसकी तैयारी में लगे रहते थे।
1: रेडियो नाटक की जब हम बात करते हैं तो रेडियो नाटकों में भाषा का खास ख्याल रखना पड़ता है, ताकि जो चीज श्रोता देख नहीं सकता कानों के माध्यम से एक चित्र की तरह वो उस चीज को देख सके। शब्दों से ही चित्रों का निर्माण करना होता है, रंग रूप की झांकी भी प्रस्तुत की जा सकती है। रेडियो नाटकों की भाषा ऐसी होती है जिससे लगे कि शब्द बोल रहे हैं, चित्रों का निर्माण कर रहे हैं।
0: रेडियो नाटक बहुत ही दिलचस्प विधा है, समझ में आ जाए तो बात क्या बात है, बहुत मजा रहता है। असल में इस वक्त तो रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन एक समय था कि जब रेडियो नाटक लाइव होते थे, लाइव ब्रॉडकास्ट होता था। 70s और 80s की बात है कि जब रात को 9:30 नाटक ब्रॉडकास्ट होते थे, तो आमतौर पे घरों में हम लोग क्या करते थे कि घर की लाइट ऑफ कर दी और नाटक सुनने लगे। तो नाटक सुनते हुए ऐसा लगता था जैसे आपके सामने शब्द चित्र बन गया। यही रेडियो नाटक है कि जब आप बोलें तो सुनने वालों को शब्द चित्र बन जाए, चलचित्र की भांति उनके सामने सब उनको दिखाई देने लगे।
1: जब रेडियो

0: नाटक लिखे जाते हैं तो संवादों को कैसे लिखना है इस बात का खास ख्याल रखना होता है। नाटक के पात्र शब्दों के माध्यम से जो बातचीत करते हैं उसे संवाद कहा जाता है।
1: आइए सुनते हैं सादत हसन मंटो के लिखे नाटक तीन खामोश औरतें का एक अंश।
2: क्यों बहन, सुनी थी आपने इस खामोश औरत की बातें? माफ करना बहन, मैंने वाकफियत के बगैर ही आपसे गुफ्तगू शुरू कर दी। दरअसल उस औरत की बातों ने मुझे बेहद परेशान कर दिया था।
3: नहीं भिन्नो, इसमें माफी की क्या बात है?
2: मैं पूछ सकती हूँ कि आप कहाँ तशरीफ ले जाएंगी?
3: खंडवा।
2: खंडवा? तो आप खंडवा जाएंगी? ये खंडवा कहाँ हुआ?
3: झांसी के पास।
2: झांसी के पास, अच्छा। आपके साथ कौन है?
3: मेरा भाई।
2: ओह, तो वो स्टेशन पर आपके भाई थे? बड़े कि छोटे?
3: बड़े भाई।
2: कै बरस बड़े होंगे आपसे?
3: 2 बरस।
2: ओह, और आपका नाम?
3: महमूदा।
2: मेरा नाम शमशाद है।
3: जी अच्छा।
2: आपके भाई साहब का नाम?
3: खान महमूद उमर खान।
2: खान महमूद उमर खान।
3: जी।
2: मेरे भी 2 भाई हैं।
3: अच्छा।
2: एक मुझसे बड़ा, एक छोटा।
0: मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन रंगमंच के लिए लिखा गया था, लेकिन रेडियो के लिए भी मोहन राकेश ने ही उसका रूपांतरण किया।
4: माँ, माँ, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा, माँ, ऐसी वर्षा, दूर दूर तक की घाटियां भीग गई और मैं भी तो देखो ना माँ कैसे भीग गई हूँ। गई थी दक्षिण से उड़कर आती हुई बकुल पंक्तियों को देखूंगी और देखो सब वस्त्र भिगोकर आ गई हूँ।
0: इस पूरे संवाद में एक तस्वीर सी उभर कर सामने आई है श्रोताओं के सामने। संवाद जब लिखे जाते हैं तो पात्रों के मुताबिक ही लिखे जाते हैं। आकाशवाणी के रेडियो नाटकों से जुड़ी हुई जानी मानी कलाकार माला कुमार अपने यादों को साझा करते हुए।
2: रेडियो नाटक एक इतना सुंदर गहरा माध्यम है जहां आप अपने तन मन धन से और अपने पूरे आपकी जो अंतरात्मा है उसमें आप लीन होकर अपने संवाद बोलते हैं एक माइक के थ्रू और अपने सह कलाकारों के साथ, जिसमें एक स्टूडियो है और उसके जरिए आप तक सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है, एक पूरा नाटक तैयार होता है और एक ये बहुत ही अद्भुत बहुत ही खूबसूरत मीडियम है। और मैं इससे जुड़ने का मुझे जो एहसास है जो एक्सपीरियंस है वो सर आंखों पर और इससे सुंदर मीडियम मुझे कहीं नहीं लगता। सबसे ज़्यादा जो मुझे सेटिस्फैक्शन होता है, इनर सेटिस्फैक्शन, वो एक रेडियो नाटक के माध्यम से ही होता है। और बहुत से नाटकों में किया है, इसमें तरह तरह के भावनाएं तरह तरह के इमोशंस को अपनी आवाज़ के ज़रिए अपनी सांसों के ज़रिए जो करने को मिलता है वो मुझे लगता है कि कैमरा में भी बहुत कुछ होता है इस तरह से, लेकिन उसमें आपके चेहरे से आपको वो समझते हैं दर्शक कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। पर रेडियो नाटकों में आपका कोई चेहरा नहीं देखता है, आप कितने भी उम्र के हो एक जवान रोल आप कर लेते हैं। आप 50 साल की हैं, आप 20 साल की नायिका का रोल कर सकती हैं, आप 20 साल की हैं 60 साल की नायिका का रोल कर सकती हैं, एक वृद्धा का रोल कर सकते हैं, ये सब आपकी आवाज का खेल है।
0: रेडियो नाटक में कई बार नरेशन है। नरेशन का तात्पर्य उस अंश से है जिसमें पात्र वही कार्य संपन्न करता है जो कहानीकार करता है। ये पात्रों का आपस में संवाद नहीं होता बल्कि एक पात्र का ही वक्तव्य होता है। इसके जरिए देश काल का परिचय दिया जाता है, जरूरी सूचनाएं दी जाती हैं, विवरण दिए जाते हैं, घटनाओं की श्रृंखला को जोड़ा जाता है। नरेटर यानी सूत्रधार, जो बातें संवादों में नहीं आती और जिनका नाटक में आना जरूरी है उन्हें नरेशन में रखा जाता है और सूत्रधार के जरिए वो बोला जाता है। उदाहरण के तौर पर सूफी कवित्री लल्लेश्री पर लिखे गए नाटक प्रेम का सुर आस्था का संगीत, इस नाटक में जेहलम और चिनार को नरेटर बनाया गया। जेहलम और चिनार सूफी कवित्री लल्लेश्वरी की कहानी के लिए पृष्ठभूमि बनाते।

0: हैं, कहानी शुरू करते हैं, फिर बीच बीच में आकर कहानी की कड़ियां जोड़ते हैं और घटनाओं पर टिप्पणी करते हैं। ललितदत्त यानी लल्लेश्वरी हमारी सूफियाना विरासत और भक्ति परंपरा की महान कवित्री, हमारे देश में अनेकता में एकता की कड़ी है लल्लेश्वरी। लल ने अपना फलसफा कश्मीरी भाषा में लोगों तक पहुंचाया। उनके वाक्यों में सूफी, सनातन पंथ, इस्लामी सिद्धांत और शैवनाद सभी मौजूद थे। लल के लिए प्यार ही खुदा था और आपसी भाईचारा बंदगी। लल ने बंधुओं से बंदगी, आपसी भेदभाव मिटाकर धर्मों की समानता पर बल दिया।
1: मैं समय की धारा के साथ आज आ पहुंचा हूं धरती के इस स्वर्ग कश्मीर की वादी में। आज इसी वादी में घूमते घूमते मैंने सदियों से बह रही झेलम को देखा तो मन में आया कि जैसे दादी नानी की कहानियां पुरखों से चली आ रही हैं, उसी तरह इस प्राचीन नदी ने भी तो अनेक राजाओं का शासन देखा होगा, अनेक साम्राज्यों का पतन देखा होगा। कितनी महान हस्तियों को कभी शिकारे से इस पार, कभी उस पार पहुंचाया होगा। इसमें चल रहे चप्पुओं की मधुर आवाज ने कितने संगीतज्ञों को उद्वेलित किया होगा, प्रेरणा दी होगी। सदियों से इसके किनारे खड़े वादी की धरोहर, हर मौसम में रंग बदलते चिनार खुद झेलम के हर रंग से परिचित हैं। साक्षी हैं ये दोनों हमारी वादी की सभ्यता के, इसकी संस्कृति के। इन दोनों का एक अटूट रिश्ता है।
0: अगर रंगमंच या फिल्मों की हम बात करें तो यहाँ पर मूक अभिनय भी हो सकता है, लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं है। संवाद ही रेडियो नाटक है। संवाद रहित रेडियो नाटक की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस लिहाज से रेडियो नाटक की कला संवाद लेखन की कला है। रेडियो नाटकों से जुड़े अपनी यादों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आकाशवाणी के जाने माने नाट्य कलाकार नीरज शर्मा।
2: मुझे एक प्ले की बात याद है, पंडित दीनानाथ जोशी बहुत सीनियर कलाकार थे, हम तो बहुत छोटे थे उस वक्त, और वो अपनी स्क्रिप्ट पे ऐसे मार्किंग करते थे कि दूर से भी उनकी स्क्रिप्ट नजर आ जाती थी कि इसमें क्या लिखा है, पेन से गढ़ा कर देते थे। अच्छा, खास बात थी वो उर्दू में लिखा करते थे और उर्दू में पढ़ते थे। तो एक प्ले की रिहर्सल चल रही थी, जगदीश चंद्र माथुर का उपन्यास था धरती धन्ना अपना, मैं था उसमें, सुचित्रा जी थी, वीना जी थी। तो एक कुछ रोमांटिक सीन था, तो मैं और वीना जी हम लोग उस रोमांटिक सीन के रिहर्सल कर रहे थे, तो जरा आवाजें हल्की हल्की हमारे मुंह से निकल रही थी। मैं भी उन दिनों बहुत नया था तो बहुत जोर से नहीं बोल रहा था, और वीना जी भी मेरे साथ साथ हल्के हल्के बोल रही थी। पंडित दीनानाथ जोशी दूर बैठे थे, बोले अरे भाई जोर से तो बोलो, हमें भी तो सुनाई दे, स्क्रिप्ट में कहाँ है। तो डायरेक्टर महोदय बोले, पंडित जी ये सीन आपके सुनने के लिए नहीं है। ये बोला सब मिठाका गूंज गया। एक दफा की बात है कि एक प्ले रिकॉर्ड हो रहा था, कल नहीं लौटेगा, दीनानाथ जी उसका निर्देशन कर रहे थे, और वो एक भाई बहन की कहानी थी। भाई ने तीज पर बहन को धानी चुनरिया ला के दी और झूला झूलते हुए बहन धानी चुनरिया के गीत गाती है, भाई उसको रिकॉर्ड कर लेता है। होता यह है कि शादी के बाद वो उसको लड़की को मार देते हैं। तो सीन ये था कि भाई उसकी रिकॉर्डिंग सुन सुनकर रो रहा है और माँ आकर उसे चुप कराती है। तो दीनानाथ जी बोले, भाई नीरज ये सीन हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे जब सिर्फ तुम दोनों हो गए, यानी माँ और बेटा। तो एक खास दिन हमको बुलाया गया, वो रिकॉर्डिंग रख दी गई एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसको प्ले किया गया, रिकॉर्डिंग शुरू हुई। गोपाल सक्सेना जो थे वो असिस्ट कर रहे थे दीनानाथ जी को, रिकॉर्डिंग शुरू हुई, इशारा मिला और हमने उसको सुनना शुरू किया और धीरे धीरे उस पर रिएक्ट करना शुरू किया। रिएक्शन करते करते, रिएक्शन देते देते सच में रोना आ गया और वाकई में रो पड़ा उसके अंदर। माला जी आई जो माँ का रोल कर रही थी, माला गुप्ता, उन्होंने मुझे चिपका लिया सीने से अपने और कहा, नहीं बेटा ये वो तेरी सब कुछ नहीं थी, वो मेरी भी बेटी थी, ये डायलॉग था, ये कह के मुझे चुप कराया। सीन वाइंड अप करके जैसे हमने ग्लास के उधर कंट्रोल रूम में देखा तो दीनानाथ जी सर पे हाथ धर के बैठे हुए थे और गोपाल जी अवाक, आंखें बाहर मुंह खुला ऐसे बैठे थे। अब समझ में नहीं आया कि रिकॉर्डिंग हो गई नहीं हो गई। तो मैं कंट्रोल रूम में गया और जाके मैंने पूछा जी रिकॉर्डिंग हो गई, कोई जवाब नहीं। मैंने पूछा जी रिकॉर्डिंग हो गई, ठीक हो गया? तो दीनानाथ जी बहुत ही दुखी मन से मेरी तरफ

0: देखकर बोले, बेटा दोबारा करना पड़ेगा। मैंने कहा, जी क्यों, क्या हुआ? कल टेप खत्म हो गया। गोपाल जी की तरफ इशारा करके बोले, मैंने इसे कहा था कि बड़ा टेप ले, टेप खत्म हो गया, अब दोबारा करना पड़ेगा। अब ये मानिए कि घड़ों पानी पड़ गया ऊपर से नीचे तक, कि इतना इमोशनल सीन एक बार जो हो गया वो दोबारा होना बहुत मुश्किल था। फिर भी हमने कोशिश की, सीन को किया। सीन करने के बाद जब सुनने लगे जाके, तो गोपाल जी एकदम से अपनी कुर्सी से उछल पड़े, कहते मैं जोड़ दूंगा, लास्ट की जो सिसकियां थी मैं उनको जोड़ दूंगा। और गोपाल जी ने वाकई उस सीन को जोड़ दिया। किसी को पता नहीं चला कि ये सीन दो पार्ट्स में रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन वो किस्सा आज भी जब मुझे याद आता है तो मैं सोचता हूँ कि क्या जमाना था। अगर वो नहीं जुड़ पाता तो शायद वो सीन नहीं हो पाता उस तरीके से।
1: रेडियो नाटक और उसके लेखन का सारा दायित्व उसके डायलॉग्स पर ही है, उसके संवादों पर ही होता है। संवादों के माध्यम से कहानी कही जाती है, पात्रों का परिचय दिया जाता है, जरूरत के मुताबिक उनकी रूपरेखा, वेशभूषा

0: रेडियो नाटक और उसके लेखन का सारा दायित्व उसके डायलॉग्स पर ही है, उसके संवादों पर ही होता है। संवादों के माध्यम से कहानी कही जाती है, पात्रों का परिचय दिया जाता है, जरूरत के मुताबिक उनकी रूपरेखा, वेशभूषा, उनका काम जैसी बातों से श्रोताओं को परिचित करवाया जाता है। आसपास के वातावरण का चित्र प्रस्तुत किया जाता है, पात्रों के भाव और विचारों को बताया जाता है और उनके आपसी संबंधों पर रोशनी डाली जाती है।
1: रेडियो नाटक सब विधाओं से बिल्कुल अलग है, इसलिए क्योंकि ये सिर्फ आवाज पे बेस्ड है और ये किसी भी एक्टर की ट्रेनिंग के लिए भी मुझे लगता है कि काफी फायदेमंद है, क्योंकि जब आप सिर्फ अपनी आवाज से खेलकर अपने सारे एक्सप्रेशंस को कन्वे करते हैं तो आपको उसकी वैल्यू भी पता चलती है और आपको ये भी पता चलता है कि उसको कंट्रोल कैसे करना है, और ये आपका बाकी विधाओं में भी काम आता है, चाहे आप फिर आप स्टेज पे जाएं, चाहे आप कैमरा के आगे जाएं। और मतलब जैसे खुद का अगर मैं जिक्र करूं तो मुझे आज तक किसी ऑडियो के आदमी को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि आप अपनी आवाज को थोड़ा सा उठाइए, मैं कैमरा की बात कर रहा हूं। तो ये इसलिए क्योंकि मैं आप आवाज के जरिए अगर आप कन्वे कर पाते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होती।
0: रेडियो नाटकों के अलग अलग रूप हैं, पारिवारिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, चारित्रिक, मनोवैज्ञानिक वगैरह। मोनोलॉग या स्वगत नाटक। मोनोलॉग का अर्थ है वो नाटक जिसमें एक ही पात्र बोलता है, इसे स्वगत नाटक और एक पात्रीय नाटक भी कहते हैं। इसमें केवल एक पात्र रहता है। आइए सुनते हैं एक पात्रीय नाटक पन्ना धाय का एक अंश।
2: सांझ पड़े नकरे छड़ी।
3: पन्ना वो देख कहाँ है? हाँ,
4: तुम यहाँ क्या करने आए हो?
3: क्या करने आया हूँ? मैं उस बीज को नष्ट कर दूंगा, उससे पहले पेड़ बन के वो मेरे रास्ते का रोड़ा बने, मैं उसे समाप्त कर दूंगा।
4: तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम उसकी हत्या नहीं कर सकते, तुम तो उसके संरक्षक हो। नहीं, मैं उसकी शैया के पास से नहीं हटूंगी।
0: रेडियो से प्रसारित होने वाले नाटकों में पद्य नाटक का भी बहुत अहम रोल होता है, इसे काव्य नाटक या गीति नाटक भी कहते हैं। पद्य नाटक की विशेषता को समझने के लिए गद्य नाटकों और पद्य नाटकों के अंतर पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। गद्य नाटकों की अगर हम बात करें, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने का माध्यम है, हमारे चिंतन और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। आइए सुनते हैं पद्य नाटक ब्लैक होल का एक अंश।
5: मैं काल हूं, पता नहीं कब जन्मा मैं, ये भी नहीं जानता कि रहूंगा कब तक। मेरे भीतर छुपे हैं अनंत ब्रह्मांड और उनके असंख्य रहस्य।
6: नहीं पहचाना? अरे, इतने संकेतों के बाद भी आप जान न सके कि मेरा नाम कल्पना है और मैं आपके विचारों को पंख देने आपके पास उड़कर आ गई हूं, इसी अनंत शून्य के अंधकार से। कल्पना तो ईश्वर भी करता होगा और हमारे आपके जैसे साधारण जन भी, मगर ईश्वर की कल्पना थोड़ी विचित्र होगी, है ना? कुछ से कहीं अधिक असाधारण, कहीं ईश्वर ही तो कल्पना नहीं, अर्थात कल्पना का ईश्वर, मेरा ईश्वर।
0: जाने माने कलाकार और रेडियो नाटकों से जुड़े हुए श्री योगेंद्र टिक्को अपनी यादों को बांटते हुए।
7: मैं काफी सालों से आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ हूं और कुछ ऐसा भी है कि मैंने बाकी सारे माध्यम में भी बहुत काम किया है, अलग अलग विभिन्न माध्यमों में, टीवी हो, फिल्म्स हो या थिएटर हो, सबसे जुड़ा हूं मैं। मगर जितना सुकून और सुख मुझे आकाशवाणी पे ड्रामा करके मिलता है वो मुझे और कहीं शायद उतना नहीं मिलता, क्योंकि ये एक बहुत ही सशक्त माध्यम है और आसान नहीं है। ये एक तरह से आपकी कलाकारी को मांझता है, आपको परिपक्व करता है, ताकि आप जब आपकी वॉइस एकदम स्ट्रांग होती है, आपकी डायलॉग

0: डिलीवरी बहुत अच्छी होती है, तो आप किसी भी माध्यम में जाके, चाहे वो फिल्म्स हो, टीवी हो, थिएटर हो, कहीं पे भी जाके आप अपनी कला को और निखार सकते हैं। तो मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली कहूंगा कि मुझे अच्छे प्लेस करने का मौका मिला है।
1: इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए केदारनाथ,
2: वैसे तो बहुत सी विधाएं हैं जहां से हम तकरीबन आर्टिस्ट गुजरे हैं, लेकिन इससे गुजरने पर एक ये एहसास हुआ कि सिर्फ आवाज के माध्यम से और एक ध्वनि का जो एक अलग अपना एक इफेक्ट होता है, उसके थ्रू एक कंप्लीट एक दृश्य को पूरे जहन के अंदर उतार के रख देना, मतलब ऐसा लगता है कि जिस तरह से हम लोग थिएटर में बैठ करके थिएटर देख रहे होते हैं, तो बिल्कुल उस तरह का एक मंचन और उस तरह का दृश्य प्रारूप जो है वो मन में और दिमाग में उतरता चला जाता है। हालांकि ये विधा मुझे बाकी विधाओं से थोड़ी सी कठिन सी प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें जो एक सुकून और एकाग्रता एक का जो संगम नजर आता है वो अलग तरह का है।
1: कई नाटक संगीतमय नाटक होते हैं जिनमें कहानी के साथ साथ नाटक के साथ साथ संगीत और गीतों का भी मिश्रण होता है, जो सुनने में श्रोताओं का मन और ज्यादा लुभाते हैं। आइए अब सुनते हैं संगीतमय नाटक मिर्जा साहिबा का एक अंश।
3: साहिबा से मुझे मिलवा।
4: तो ये बात है, जानती थी, तब से जानती हूँ, जब तू मस्जिद से घर लौटता हुआ मासी के घर साहिबा को मिलता था। मैंने तो अल्लाह से कई बार दुआ मांगी कि तुम्हारी जोड़ी बनी रहे। शायद अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की। चल चल मेरे साथ चल।
3: चल मासी चल चल।

ये था यादों का कभी खत्म न होने वाला सिलसिला। आज रेडियो नाटक कितनी सीढ़ियां पार करके यहाँ तक पहुंचा है और श्रोताओं के दिलों में अपनी जगह बरकरार रखे हुए है।

आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में अभी आप सुन रहे थे रूपक आवाजों का सुनहरा सफर रेडियो नाटक। शोध आलेख स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी।

101.1 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। गीत मेरे मन मीत लेकर स्टूडियो से एक बार फिर साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त रोहिणी। वो कहते हैं ना, यूं सजा चांद की झलका तेरे अंदाज का रंग, यूं फजा महकी की बदला मेरे हमराज का रंग। गीत मेरे मन मीत का आगाज इस प्यारे से अंदाज के साथ, जो कि है दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म से ये गीत है। इस गीत को अल्फाज दिए शैलेंद्र साहब ने और संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन जी ने। जी हाँ, इस गीत को आवाज दी लता जी ने।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरी मनमीत का ये प्यारा अंदाज आप तक पहुंच रहा है श्रोताओं। कहते हैं कि छुपाता है बहुत मुझको मेरा साया, मगर फिर भी मैं खुद को रोशनी से दूर जाकर देख लेता हूं। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये गहरा एहसास आप तक पहुंच रहा है गीत मेरी मनमीत के साथ। आइए अगला गीत सुनते हैं, चलती का नाम गाड़ी फिल्म से किशोर जी की आवाज में इस गीत को अल्फाज दिए मजरू सुल्तानपुरी साहब ने और श्रोताओं संगीत बद किया एस डी बहमन जी ने। तो आइए सुनिए प्यारा अंदाज।

101.1 MHz पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन मीत। कहते हैं कि मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है। कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता, ये वो एहसास है जो दिलों को धड़काता है। ये अगला गीत, आइए आपकी नजर करते हैं तेरे घर के सामने फिल्म से, रफी साहब की बेहद प्यारी सुरीली आवाज। और इस गीत को अल्फाज दिए हसरत जयपुरी साहब ने और संगीत से सजाया SD बर्मन जी ने। तो आइए 100.1 MHz पर सुनते हैं ये प्यारा गीत का अंदाज।

101.1 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। बड़े ही खूबसूरत ख्याल है कि कई बार नापसंद जिंदगी में कुछ मनपसंद लोग, या ये कहूं कि कुछ मनपसंद जिंदगी का हिस्सा होते हैं जो आपको उम्र

याद रह जाते हैं। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि दिल से दिल की दूरी नहीं होती, काश कोई मजबूरी नहीं होती। तुमसे मिलने की तमन्ना बहुत है, लेकिन सुना है हर तमन्ना पूरी नहीं होती। तो श्रोताओं, फिलहाल अगर आपकी ये तमन्ना है कि गीत मेरे मन में तो यूं ही अपना सफर तय करता रहे, तो जी हाँ, सफर जरूर तय करेंगे, लेकिन फिलहाल आज के लिए, आज के गीत मेरे मन मीत को यहीं समेटती हूँ। दीजिए इजाजत मुझे यानी रोहिणी को, और फिलहाल सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। श्रोताओं, ये अगला गीत जो कि आप सुनेंगे चोरी चोरी फिल्म से, और इस गीत को आवाज दी है लता जी और मनाडे साहब ने। साथ ही इस गीत को आपको बता दें कि लिखा है शैलेंद्र जी ने और संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन जी ने। तो आइए सुनते हैं, और फिलहाल मुझे रोहिणी को दीजिए इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में कल उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आदिलकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापड्डी के पलानास्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मुन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी है कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच के आदेश दिए। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पेरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराध में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पेरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार से सिफारिशें करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। फिन एलन को कोलकाता के लिए 47 गेंदों में नाबाद 100 रन की पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन में आज भारतीय टीम ने ग्रुप बी के अपने आखिरी मैच में लेबनान पर 4-0 से शानदार जीत दर्ज की। भारत ने 2005 के बाद इस प्रतियोगिता में अपनी पहली जीत दर्ज की। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरनजीत के सामने सेमीफाइनल में

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 59 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर निशिगंधा, मैं हूँ राखी आपके साथ।

तराना फिल्म से आपने ये गीत सुना शैलेंद्र सिंह की आवाज में। इसे लिखा तिलकराज थापर ने और संगीत दिया राम लक्ष्मण ने। एक बार फिर शनिवार की रात है, आपका हमारा और प्यारे प्यारे गीतों का साथ है। रात की खामोशी में सुरों की महफिल सज चुकी है और हर धुन जैसे दिल के किसी कोने को धीरे से छू रही है।

टूटे खिलौने फिल्म से आपने ये गाना सुना येसुदास की आवाज में। इसे लिखा कैफी आजमी ने और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने। माना हो तुम बेहद हंसी हो, लेकिन ये भी सच है कुछ लोग अपनी सादगी से ही दिलों पर राज कर जाते हैं। चेहरे की चमक पल भर को भा सकती है, मगर दिल की खूबसूरती उम्र भर याद रहती है।

दादा फिल्म का गाना आपने सुना येसुदास की आवाज में। रविंद्र जैन ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया उषा खन्ना ने। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराकर चल दिए। कितनी आसानी से लोग अपने हिस्से की मोहब्बत निभाकर किसी और की दुनिया वीरान कर जाते हैं। कुछ दर्द आवाज नहीं करते, बस रातों की खामोशी में धीरे धीरे दिल को सुनाई देते रहते हैं।

त्रिशूल फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार, लता मंगेशकर और येसुदास की आवाज में। साहिर ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया खयाम ने। दर्द हो, जुदाई हो, तन्हाई हो, फिर भी मोहब्बत

त्रिशूल फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार, लता मंगेशकर और येसुदास की आवाज में। साहिर ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया खयाम ने। दर्द हो, जुदाई हो, तन्हाई हो, फिर भी मोहब्बत बड़े काम की चीज है। ये वो एहसास है जो टूटे हुए इंसान को भी जीने की वजह दे देता है। मोहब्बत हर बार मुकम्मल हो जरूरी तो नहीं। कभी किसी की यादों के सहारे पूरी उम्र ही कट जाती है, कभी ये आंखों में चमक बनती है, कभी धीमी सी कसक। मगर दिल से पूछिए तो हर धड़कन यही कहती है, मोहब्बत के बिना जिंदगी में वो बात कहां।

वक्त हुआ है 12:31 और ठीक 58 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

कभी कभी फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया खय्याम ने। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, क्योंकि कुछ चेहरे सिर्फ खूबसूरत नहीं होते, उनमें एक अपनापन और सुकून होता है। उन्हें देखते हुए ऐसा लगता है जैसे बाकी सब कुछ कुछ देर के लिए रुक सा गया हो।

धर्मात्मा फिल्म का गाना आपने सुना कंचन और मुकेश की आवाज में। इंदिवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। तुमने कभी किसी से प्यार किया है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, एक एहसास है, क्योंकि प्यार होने पर इंसान बदलने लगता है। किसी की छोटी छोटी बातें अच्छी लगने लगती हैं, उसकी आवाज, उसकी मुस्कान, यहां तक कि उसकी खामोशी भी, और कभी कभी उसके सितम भी।

सनम तेरी कसम फिल्म से आपने गाना सुना आशा भोसले की आवाज में। इसे लिखा गुलशन बावरा ने और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। कुछ मोहब्बतें ऐसी ही होती हैं, उनमें शिकायतें भी होती हैं, दर्द भी, इंतजार भी, फिर भी दिल उसी इंसान से जुड़ा रहता है। प्यार अगर सच्चा हो तो वो सिर्फ अच्छे वक्त में साथ नहीं रहता, बल्कि तकलीफों के बीच भी दिल से कभी कब नहीं होता। कभी कभी इंसान टूटता बहुत है, लेकिन मोहब्बत फिर भी दिल के किसी कोने में वैसी ही रहती है, धीमी, खामोश, मगर बेहद गहरी।

एक दूजे के लिए फिल्म से आपने गाना सुना। लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज में आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। वक्त हुआ है 12:53 और ठीक 52 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में कल उन्हें भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएमके प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएमके महासचिव एडापड्डी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मुन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनल ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच करने की शिकायत की। इस बीच डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आदिरकर से राज्य में नई सरकार के गठन के लिए संवैधानिक प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का आग्रह किया है। श्री स्टालिन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं और निर्वाचित विधायकों की सूची जारी कर दी गई है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने गुयाना के स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की और भारत गुयाना के स्वास्थ्य संबंधों की प्रगति पर चर्चा की। कैरेबियन देशों की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान डॉ. जयशंकर ने गुयाना के जॉर्ज टाउन में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. फ्रैंक एंथोनी से मुलाकात की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के नेताओं ने 3 दिन के युद्ध विराम और कैदियों की अदला बदली के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी युद्ध के अंत की शुरुआत हो सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि युद्ध विराम आज से सोमवार तक रहेगा। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। फिन एलन ने कोलकाता के लिए 47 गेंदों में 100 रन की पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन के सूजो में आज भारतीय टीम ने ग्रुप बी के अपने आखिरी मैच में लेबनान पर 4-0 से शानदार जीत दर्ज की। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 58 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत सुहाने, मैं हूँ राखी आपके साथ।

धर्मपुत्र फिल्म का गाना आपने सुना महेंद्र कपूर की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया एन दत्ता ने। दूर से कोई सुहाना गीत कानों में उतरने लगे तो दिल अपने आप यादों की गलियों में भटकने लगता है। कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। जैसे रात की खामोशी में कोई दिल की बात धीरे से कह रहा हो।

शोला और शबनम फिल्म से आपने गीत सुना रफी की आवाज में, कैफी आजमी ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। कुछ पंक्तियां सिर्फ गीत नहीं होती, दिल की अनकही तलाश बन जाती हैं। इस एक एहसास में इंतजार भी है, अपनापन भी, और वो हल्की सी उदासी भी, जो रात के सन्नाटे में और गहरी लगने लगती है। कभी कभी सामने वाला हमारे भीतर वही ढूंढता रहता है जिसे हम खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पाते।

उस्तादों के उस्ताद फिल्म से ये गीत आपने सुना रफी की आवाज में। सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार फना होंगे, ये सिर्फ मोहब्बत का इजहार नहीं, एक ऐसी चाहत का एहसास है जो वक्त और फासलों से भी बड़ी लगती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हर दौर में, हर हाल में दिल के करीब ही रहते हैं। पुराने गीतों की यही खूबी है, कम शब्दों में गहरे जज्बात उतार देते हैं और सुनने वाला चुपचाप उन एहसासों में खो जाता है।

नागिन फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। जी हाँ, इस पुकार में इंतजार की बेचैनी भी है और मिलन की मीठी उम्मीद भी। रात जितनी गहरी होती जाती है, दिल की आवाज उतनी ही साफ सुनाई देने लगती है। पुराने सुरों की यही बात दिल को छू जाती है। वो सीधे एहसासों से बात करते हैं बिना किसी दिखावे के।

वक्त हुआ है 1:31 और ठीक 24 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

पतंगा फिल्म का गाना आपने सुना। में राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया सी रामचंद्र ने। कितनी अजीब बात है ना, कभी कभी भूल जाने की बातें भी यादों को और गहरा कर देती हैं। इस एहसास में शिकायत कम, सच्ची मोहब्बत ज्यादा महसूस होती है। कुछ रिश्ते साथ रहें या ना रहें, लेकिन दिल के किसी कोने में हमेशा अपनी जगह बनाए रखते हैं।

आखिरी दाव फिल्म का गीत आपने सुना रफी की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। ये वो एहसास है जब शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। सामने किसी की आंखें हों, चेहरे की खामोशी हो और दिल पहले ही सब समझ चुका हो। पुराने गीत बड़ी सादगी से वो बातें कह जाते हैं जिन्हें अक्सर लोग उम्र भर कह नहीं पाते।

परदेसी फिल्म का गाना आपने सुना मीना कपूर की आवाज में, प्रेम धवन ने इसे लिखा और संगीत दिया अनिल बिस्वास ने। इन शब्दों में एक मीठी सी तड़प भी है और अपनापन भी, जैसे कोई एहसास धीरे धीरे दिल में उतरकर वहीं बस गया हो। कुछ धुने सुनते ही मन हल्का सा झूम उठता है और रात का सन्नाटा भी सरों से भर जाता है।

यास्मीन फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। जानिसार अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया सी रामचंद्र ने। आंखों में समा जाओ इस दिल में रहा करना, ये सिर्फ किसी को पास बुलाने की बात नहीं बल्कि उसे अपनी दुनिया बना लेने का एहसास है। कुछ लोग इतने करीब महसूस होते हैं कि उनकी मौजूदगी आंखों की चमक और दिल की धड़कन दोनों में बस जाती है। ऐसे पुराने गीत मोहब्बत को बड़े नर्म और खूबसूरत अंदाज में छू जाते हैं।

आकाशदीप फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया चित्रगुप्त ने। कभी कोई अनजाने में दिल में ऐसी जगह बना जाता है कि उसके जाने के बाद भी उसकी मौजूदगी महसूस होती रहती है। पुराने गीतों की यही जादूगरी है, वो अधूरी बातों और अनकहे जज्बातों को भी सुरों में ढाल देते हैं।

सोने की चिड़िया फिल्म से आपने गीत सुना तलत महमूद और आशा भोसले की आवाज़ में। साहिर ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने।

वक्त हुआ है 1:56 और ठीक 15 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में कल उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री होंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित

0: करता।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
0: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये हम सब के लिए बहुत आनंद है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएमके प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएमके महासचिव एड्डापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मुन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच की शिकायत की है। इस बीच मुन्नारगुड़ी से अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के विधायक एस कामराज के लापता होने और उनके वापस चेन्नई लौटने की खबरों से सियासी सरगर्मी तेज है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि टीवीके को बिना शर्त समर्थन देने वाला पत्र फर्जी था। उन्होंने यह भी कहा कि एकमात्र विधायक कामराज ने पहले जिस पत्र पर हस्ताक्षर किए थे वे एड्डापाडी पलानीसामी को मुख्यमंत्री बनाने के समर्थन में था। उन्होंने कहा कि कामराज जाली पत्र को आगे की जांच के लिए पुलिस को सौंप देंगे। उधर केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं तेज हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पेरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के नेताओं ने 3 दिन के युद्ध विराम और कैदियों की अदला बदली के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि यह कदम दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी युद्ध के अंत की शुरुआत हो सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि युद्धविराम आज से सोमवार तक जारी रहेगा। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि इसराइल और लेबनान 14 और 15 मई को अमेरिका की मध्यस्थता में बातचीत फिर से शुरू करेंगे। विदेश विभाग के अनुसार दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते पर पहुंचने के लिए बातचीत करेंगे। चर्चा में सीमाओं का निर्धारण, मानवीय राहत और पुनर्निर्माण के लिए ठोस मार्ग तथा लेबनान की संप्रभुता जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श होने की उम्मीद है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने निर्धारित 20 ओवर में 142 रन बनाए, जवाब में कोलकाता ने 15वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Senior BJP leader Shubhendu Adhikari will be the new Chief Minister of West Bengal. BJP Legislature Party in the state elected him the leader in a meeting held in Kolkata yesterday, paving the way for him to become the first BJP Chief Minister of the state. Addressing the media, Union Home Minister Amit Shah said, Mr. Adhikari's name was proposed at the meeting and since no other nomination was received, his name was finalized.
3: अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव की
4: द इलेक्शन प्रोसेस वॉज कम्प्लीटेड जस्ट अ फ्यू डेज अगो। अराउंड 8 प्रपोजल्स एंड सपोर्टिंग नॉमिनेशंस वर रिसीव्ड एंड ऑल ऑफ देम वर इन फेवर ऑफ द सेम नेम। सफिशिएंट टाइम वॉज ऑल्सो गिवन फॉर एनी अदर नॉमिनेशन बट नो सेकेंड नेम वॉज प्रपोज्ड। देयरफॉर एज द सेंट्रल ऑब्जर्वर

आवाज में एसएच बिहारी ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। क्या खूबसूरत एहसास था इन पंक्तियों में। मोहब्बत इंसान को बदल देती है, फिर छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी लगने लगती हैं, और किसी एक शख्स की मुस्कान पूरी दुनिया से ज्यादा कीमती हो जाती है। जिसे सच्चा प्यार मिल जाए उसे जैसे हर तरफ रोशनी दिखाई देती है, दिल में उम्मीद रहती है, बातों में नरमी आ जाती है और जिंदगी सिर्फ गुजरती नहीं, महसूस होने लगती है।

शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। दो लोग जब सच में एक दूसरे के हो जाते हैं तो फिर सपने अलग नहीं रहते, खुशियां, उम्मीदें, मंजिलें सब साझा हो जाती हैं। जिंदगी की राहें आसान हों या मुश्किल, अगर कोई अपना साथ चल रहा हो तो सफर डरावना नहीं लगता।

सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत आपने सुना मुकेश की आवाज में। इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। कभी कभी किसी की याद, किसी का असर इतना गहरा हो जाता है कि इंसान अपने ही एहसासों में खोने लगता है। दुनिया उसे दीवानापन कहती है, लेकिन दिल जानता है कि ये किसी के लिए टूटकर महसूस करने की हालत है। जब हर बात में वही चेहरा दिखाई दे, हर धड़कन उसी का नाम लेने लगे, तो फिर इंसान कहाँ अपने बस में रह जाता है।

वक्त हुआ है 2:29 और ठीक 47 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

आदमी फिल्म का गाना सुना आपने, रफी और तलत महमूद की आवाज में। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया नौशाद ने। क्या दिलकश एहसास था इन पंक्तियों में, रात की ठंडी खामोशी, मौसम की नरमी और साथ में किसी अपने की मौजूदगी। बस वही पल जिंदगी को खूबसूरत बना देते हैं।

दिलीप मंदिर फिल्म से आपने गाना सुना। लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। रात की चांदनी, पास बैठा कोई अपना, और दिल में बस यही दुआ कि ये साथ, ये बातें, ये एहसास कभी खत्म न हो। शायद मोहब्बत का सबसे सुंदर रूप वही होता है जब इंसान भी थोड़ी मोहलत मांगने लगे।

ये रात फिर ना आएगी। इस फिल्म से आपने गाना सुना आशा और रफी की आवाज में। एस एच बिहारी ने ये गीत लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। इन शब्दों में बिछड़ने का दर्द भी है और दोबारा मिलने की उम्मीद भी। कभी कभी मुलाकात खत्म होने लगती है लेकिन दिल उसे खत्म मानने को तैयार नहीं होता। तब इंसान किसी वादे का सहारा ढूंढता है, एक छोटी सी उम्मीद कि ये साथ पूरी तरह खोया नहीं है।

फूल बने अंगारे फिल्म से आपने गाना सुना। लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। कभी कभी दिल भी कितना बेचैन हो उठता है, न मंजिल की खबर न रास्तों का होश, बस किसी एहसास के पीछे भागता चला जाता है। ऐसे में खुद को समझाना पड़ता है कि हर धड़कन का जवाब तुरंत नहीं मिलता, कुछ रिश्ते कुछ ख्वाब वक्त के साथ ही अपना मतलब बताते हैं।

मोहब्बत इसको कहते हैं। इस फिल्म से आपने गाना सुना, रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। कभी किसी का यूं सामने होना सिर्फ मुलाकात नहीं होता, वो एक पूरा एहसास बन जाता है। नजरें ठहर जाती हैं, वक्त धीमा पड़ जाता है और दिल चाहता है कि वो पल थोड़ा और ठहर जाए। शायद इसीलिए दिल कह उठता है, अभी मत जाइए, पहले इस धड़कन को यकीन तो हो लेने दीजिए कि ये सपना नहीं हकीकत है।

दिल अपना और प्रीत पर आई फिल्म से आपने गाना सुना। लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। वक्त हुआ है 2:57 और ठीक 33 सेकंड। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही मीना गंधर्व के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में कल उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले, श्यामा प्रसाद

0: अकबर जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एड्डापाडी के पलानास्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानी स्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने ये खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच करने की शिकायत की है। इस बीच मन्नारगुड़ी से अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के विधायक एस कामराज के लापता होने और उनके वापस चेन्नई लौटने की खबरों से सियासी गर्मी तेज है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि टीवीके को बिना समर्थन शर्त समर्थन देने वाला पत्र फर्जी था। उन्होंने यह बात भी कही कि एकमात्र विधायक कामराज ने पहले जिस पत्र पर हस्ताक्षर किए थे वे एड्डापाडी पलानीस्वामी को मुख्यमंत्री बनाने के समर्थन में था। उन्होंने कहा कि कामराज जाली पत्र को आगे की जांच के लिए पुलिस को सौंप देंगे। उधर केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थ के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पेरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पेरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच के दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन की महानिदेशक एमी पोप से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि बैठक में नियमित प्रवासन मार्गों के विस्तार और विविधीकरण तथा भारत में प्रवासन संबंधी वैश्विक समझौतों के कार्यान्वयन की प्रति भारत की सक्रिय दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 142 रन बनाए, जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। फिन एलन को कोलकाता के लिए 47 गेंदों में नाबाद 100 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी एब्राहम। Senior BJP leader Suvendu Adhikari will be the new chief minister of West Bengal. BJP legislature party in the state elected him the leader in a meeting held in Kolkata yesterday, paving the way for him to become the first BJP chief minister of the state. Addressing the media, Union Home Minister Amit Shah said, Mr. Adhikari's name was proposed at the meeting and since no other nomination was received, his name was finalized.
3: अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव की
4: The election process was completed just a few days ago. Around 8 proposals and supporting nominations were received and all of them were in favor of the same name. Sufficient time was also given for any other nomination but no second name was proposed. Therefore, as the central observer, I declare Suvendu Adhikari as the elected leader of the West Bengal Legislative Party.
3: विधान मंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
2: Mr. Shah expressed gratitude to people for giving a strong verdict to the BJP despite numerous instances of violence and brutality. Mr. Shah further said that the expectations the people of Bengal have placed on them and the mandate they

दोस्तों, रात की तन्हाई में अक्सर वो लोग सबसे ज्यादा याद आते हैं जो कभी हमारी धड़कनों के बहुत करीब हुआ करते थे। परदेश जाने वाले तो चले जाते हैं, मगर पीछे छोड़ जाते हैं इंतजार, यादें और ढेर सारी दुआएं। चलिए इसी एहसास को सुनते हैं कार्यक्रम के अगले गीत में।

रात की खामोशी में अक्सर कुछ आवाजें दिल के बहुत करीब आ जाती हैं। किसी की याद, किसी का ख्याल और वो मीठा सा इंतजार जो आंखों को सोने नहीं देता। मोहब्बत अगर दिल से हो तो दूरियां भी उसे कम नहीं कर पाती। फिर हर पल बस एक ही दुआ निकलती है कि वो जिसे हम चाहते हैं हमेशा सलामत रहे।

दोस्तों, वक्त हमेशा एक जैसा कभी नहीं रहता। कभी खुशियां आती हैं तो कभी गम भी दस्तक देते हैं, लेकिन जो रिश्ते प्यार से जुड़े होते हैं ना, वो हर हाल में साथ निभा जाते हैं। इसलिए जिंदगी की शिकायतों को छोड़िए और मोहब्बत में जीवन बिताइए, क्योंकि यही पल बाद में सबसे खूबसूरत याद बन जाते हैं।

साथियों, कुछ गीत सिर्फ मनोरंजन नहीं होते बल्कि वो सीधे दिल की गहराइयों में उतर जाते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, ये गीत तो आपने सुना ही होगा। ये एक ऐसा गीत है जो हमें अपने वतन, अपने लोगों और उन रिश्तों की याद दिलाता है जिनसे दूर होकर भी दिल कभी दूर नहीं होता। एक चिट्ठी में सिर्फ शब्द नहीं होते, उसमें माँ की ममता, अपनों का प्यार और घर की मिट्टी की खुशबू छुपी होती है। और जब बरसों बाद कोई पैगाम अपने देश से आता है ना, तो आंखें भीग जाना बिल्कुल स्वाभाविक होता है।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही मीना चौहान को हमराही कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार। 4:10 पर आपके साथ रहूंगी कार्यक्रम अरुणिमा में। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इससे पहले कल कोलकाता में उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएमके प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएमके महासचिव एड्डापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का

0: समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने ये खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच करने की शिकायत की है। उधर केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में रात भर ईरानी सेना के साथ हुई गोलीबारी के बाद अमरीकी सेना ने दो ईरानी तेल टैंकरों को नष्ट कर दिया। इन हमलों में उस युद्ध विराम का सवाल खड़ा कर दिया है, जिसके बारे में अमरीका अब भी प्रभावी होने का दावा करता रहा है। अमरीका युद्ध समाप्त करने, जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और ईरान की विवादित परमाणु कार्यक्रम को वापस लेने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने निर्धारित 20 ओवर में 142 रन बनाए, जवाब में कोलकाता ने 15वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। फिन एलन ने कोलकाता के लिए 47 गेंदों में 100 रन की नाबाद पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। जयपुर में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Senior BJP leader Subhendu Adhikari will be the new Chief Minister of West Bengal. BJP legislature party in the state elected him the leader in a meeting held in Kolkata yesterday, paving the way for him to become the first BJP Chief Minister of the state. Addressing the media, Union Home Minister Amit Shah said, Mr. Adhikari's name was proposed at the meeting and since no other nomination was received, his name was finalized.
2: अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव की
3: The election process was completed just a few days ago. Around 8 proposals and supporting nominations were received and all of them were in favor of the same name. Sufficient time was also given for any other nomination but no second name was proposed. Therefore, as the central observer, I declare Subhendu Adhikari as the elected leader of the West Bengal Legislative Party.
2: विधान मंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: Mr. Shah expressed gratitude to people for giving a strong verdict to the BJP despite numerous instances of violence and brutality. Mr. Shah further said that the expectations the people of Bengal have placed on them and the mandate they have given with hope and trust, they will make every effort to ensure that their faith is not broken in any way. Addressing the meeting, the Chief Minister-designate Subhendu Adhikari said, Whatever guarantees have been announced by PM Modi, the BJP government in the state will fulfill all responsibilities. Today morning, the oath-taking ceremony of the government will be held at the Brigade Parade Ground. In Tamil Nadu, the uncertainty over formation of government under TVK Chief C. Joseph Vijay continues. The new twist came as IUML has rejected the reports of its support to TVK to form the government. In another development, reports are also coming that the swearing-in ceremony, which was to take place

दोस्तों, जब हुस्न मुस्कुराता है ना, तो बहारें खुद ब खुद सज जाती है। किसी की मासूम हंसी, किसी की झुकी नजर दिल पर ऐसा असर कर जाती है कि हर तरफ बस वही चेहरा नजर आने लगता है। तो चलिए सुनते हैं इसी एहसास को इस गीत के साथ।

दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका साथ होना ही बहुत सुकून देता है। ना कोई बड़ी ख्वाहिश रहती है और ना ही किसी और चीज की तलाश। बस एक अपने का साथ हो तो जिंदगी खुद ब खुद खूबसूरत लगने लगती है। और ऐसे ही एहसास को बड़े प्यार से ब्याह करता है ये गीत।

दोस्तों, समय की धारा कभी रुकती नहीं है। लम्हे आते हैं, गुजर जाते हैं, लेकिन कुछ गीत हमेशा दिल में बस जाते हैं। एक प्यार का नगमा है, सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि जिंदगी का आईना है जो हमें सिखाता है कि रिश्ते प्यार और साथ ही असली दौलत है। यानी कि ये हमें सिखाता है कि प्यार ही असली दौलत है रिश्तों की। तो आइए सुनते हैं इस मधुर और भावुक गीत को।

जब दिल में प्यार हो ना तो इंसान अकेला कहाँ रहता है, उसके साथ चलती हैं यादें, सपने और हवाएं भी। कभी किसी की हंसी हवा के झोंकों में सुनाई देती है तो कभी किसी का एहसास मन को चुपके से छू जाता है और फिर दिल ये कह उठता है।

दोस्तों, जिंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन जिंदगी कभी रुकती नहीं है। ये हर दिन एक नया सफर लेकर आती है और जो मुस्कुराकर चलना सीख ले उसे हर रास्ता सुहाना लगने लगता है। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता, इसलिए आज की हंसी, आज की महफिल, आज के अपने, यही तो जिंदगी की असली दौलत है।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही अपने दोस्त मीना चौहान को अरुणिमा कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार। 5:10 पर आपके साथ रहूंगी कार्यक्रम भोर सुहाने में। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इससे पहले कल कोलकाता में श्री भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में उन्हें निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: भाजपा विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों को खारिज कर दिया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और एआईएडीएमके महासचिव एडापड्डी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बातचीत

0: में उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने ये खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता ने 15वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। मौसम विभाग ने कल से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Suvendu Adhikari will take oath as first BJP Chief Minister of West Bengal today. The oath-taking ceremony will be held at the Brigade Parade Ground in Kolkata. PM Modi, Home Minister Amit Shah, BJP President Nitin Naveen, Union Ministers and Chief Ministers of all NDA-ruled states are expected to attend the swearing-in ceremony. Earlier yesterday, Mr. Adhikari was elected the leader of the state BJP Legislature Party. The legislature party meeting was held in Kolkata in the presence of Home Minister Amit Shah. Mr. Shah, who presided over the meeting, said that all the proposals were received in favour of Suvendu Adhikari. Following his election as BJP legislature party leader, Mr. Adhikari met West Bengal Governor R. N. Ravi and staked claim to form the first BJP-led government in the state. The BJP registered a historic victory in assembly elections, ending TMC's 15-year rule. In Puducherry, the National Democratic Alliance Chief Ministerial Candidate N. Rangasamy met Lieutenant Governor K. Kailashnathan and staked claim to form the next government. Mr. Rangasamy handed over letters of support from the majority of MLAs to the Lieutenant Governor. The Defence Research and Development Organisation and the Indian Air Force have successfully conducted the maiden flight trial of the Tactical Advanced Range Augmentation (TARA) weapon off the coast of Odisha on Thursday. TARA is India's first indigenous glide weapon system that converts unguided warheads into precision-guided weapons. Consulate General of India in Dubai has expressed grief at the death of an Indian crew of a ship who died at sea. In a social media post, the Consulate General termed the incidents as unfortunate, saying it is in touch with the owner of the ship and is ascertaining further details. The Consulate assured that it will render all possible assistance in this matter on priority. The maritime confrontation in the Gulf intensified yesterday as Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps claimed to have captured an oil tanker in a special operation in the Gulf of Oman, even as U.S. Central Command said its forces disabled two Iranian-flagged tankers attempting to enter Iranian ports in violation of the ongoing American naval blockade. CENTCOM Commander Admiral Bradley Cooper said U.S. forces remain committed to full enforcement of the blockade of vessels entering or leaving Iran. The escalation came on the same day the UAE Minister

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है 5:11 और 6 सेकंड। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भोर सुहाने। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, वक्त चाहे कितना भी तेज क्यों ना भागे, लेकिन प्यार के कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो उम्र भर दिल में महकते रहते हैं। तो आइए इसी एहसास को महसूस करते हैं, जहां मोहब्बत कहती है कि लंबी जिंदगी से ज्यादा कीमती होते हैं वो पल जो किसी अपने के साथ दिल से जिए जाएं।

दोस्तों, हमारी जिंदगी भी किसी किताब की तरह होती है जिसका हर पन्ना नया रंग दिखाता है। कभी खुशियों की रोशनी, कभी संघर्ष की धूल, लेकिन सफर फिर भी चलता रहता है। इंसान अक्सर मंजिल की तलाश में निकलता है, मगर कई बार रास्ते ही उसे जीना सिखा देते हैं। गिरना, संभलना, फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ना, यही तो असली कहानी है जीवन की।

दोस्तों, इस दुनिया में अक्सर लोग चेहरों पर भरोसा कर लेते हैं। एक मुस्कान देखते हैं हम लोग, एक खूबसूरत शक्ल देखते हैं और हम समझ बैठते हैं कि सामने वाला बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा दिखाई देता है। लेकिन सच तो ये है कि चेहरों पर कई नकाब होते हैं और दिल तो कभी झूठ नहीं बोलता है। किसी इंसान की असली पहचान उसकी सूरत नहीं बल्कि उसकी सीरत होती है। चेहरा तो वक्त के साथ बदल जाता है लेकिन दिल की सच्चाई हमेशा साथ रहती है।